ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के अश्विन मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 6 अक्टूबर सन 2026 सुबह के 5:53 और 39 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

और लीजिए श्रोताओं, आइए अब एक नज़र डालते हैं हमारे आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे 6:02 पर कार्यक्रम सुप्रभात। कार्यक्रम में आपके साथ रहेंगी रेणु भट्ट।

श्रोता सुन सकते हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर शालिनी सिंह के साथ 7:02 पर। इसके बाद होगा कार्यक्रम दिल के तराने गाने नए पुराने 9:02 पर।

हिमानी दत्ता आपके लिए लेकर आएंगी 10:02 पर वेस्टर्न म्यूजिक मैचलेस म्यूजिक कार, और 11:02 पर आप सुन सकते हैं बबीता त्रिपाठी के साथ बॉलीवुड ट्रेल्स। उसके बाद होगा वेस्टर्न म्यूजिक, 12:02 पर रेनबो हेल्पलाइन आप सुन सकते हैं 1:02 पर।

हमारे श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम आशियाना 2:02 पर प्रियंका के साथ। इसके बाद आप सुन सकते हैं 3 बजे रेडियो डॉक्टर गीतांजलि सोनी आपके साथ होंगी। श्रोता सुनेंगे अल्फा जैन कार्यक्रम 4:02 पर और इसके बाद होगा सिटी लाइट कार्यक्रम 5:02 पर। 6:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मैसेज मसाला मिक्स। गीता आपके साथ रहेंगी और लिपिका दास लेकर आएंगी वेस्टर्न म्यूजिक 7:02 पर। उसके बाद श्रोता सुनेंगे आपकी याद आती रही 9:02 पर। वेस्टर्न म्यूजिक का कार्यक्रम रहेगा 10:02 पर और इसके बाद 11:02 पर श्रोता आनंद लेंगे कार्यक्रम रंगे महफिल का खुर्शीद आलम के साथ। तो श्रोताओं, ये थी एक छोटी सी जानकारी हमारे आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के विषय में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6 बजे आप सुनेंगे समाचार। बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो पर।

छह बज चुके हैं, अब सुनिए एफएम रेनबो पर मुख्य समाचार। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकी, अवसंरचना और गतिशीलता में सहयोग को मजबूत करने, रक्षा सहयोग के नए रास्ते तलाशने और परमाणु ऊर्जा में सहयोग को गहरा करने के लिए 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज मतदान होगा। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के हिमाचल प्रदेश दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे बिलासपुर स्थित एम्स के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज विशाखापत्तनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का शुभारंभ करेंगे और फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की आधारशिला रखेंगे। निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी रूप से एक तरफा बदलाव किए हैं। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 3 हफ्ते के लिए टाल दी है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से त्योहारों के दौरान मिलावटी भोजन के खिलाफ विशेष अभियान चलाने को कहा है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपना समर्थन दोहराया है। संयुक्त अरब अमीरात के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने कहा है कि फ्लाई दुबई की 37 उड़ानों में से 2 से 5 अक्टूबर के बीच 7479 यात्रियों को तेल अवीव भेजने का काम पूरा हो गया है। जर्मनी और अमेरिका के वैज्ञानिकों को मस्तिष्क के गतिविधियों को नियंत्रित करने वाली नई तकनीक विकसित करने के लिए चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और भारत और वेस्टइंडीज की 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ये थे इस घंटे के FM रेनबो मुख्य समाचार।

अब जब इतने प्यार से अभिजीत बोल रहे हैं कि सुनो ना, तो सुन लो ना, आप भी सुन लीजिए कि एक और नया दिन मिला है आपको, और इस नए दिन की फ्रेश शुरुआत करने के लिए मुझे पता है आप सब तैयार हैं। जब हमें नई चीज़ें मिलती हैं ना, तो हमें बहुत बहुत अच्छा लगता है। हमें लगता है कि वाह, ये चीज़ तो हमारे लिए थी, हमें थोड़ा लेट मिली है, लेकिन हमें मिली तो है। अब उसका आपकी लाइफ में आने का समय जो है वही निर्धारित था, वो था कि उसी समय पर उसी जगह या उस चीज़ को आपको मिलना था तो आपको मिली। पर हाँ, हमें ये ज़रूर लग सकता है कि वो हमें जल्दी मिली या फिर हमें लेट मिली। अब जब चीज़ मिली है तो उसको बहुत अच्छे से आपको सहेज कर रखना भी है, एंजॉय करना है, उसका पूरा पूरा आपको फ़ायदा भी लेना है। कितने अच्छे से उसके यूटिलाइज़ कर सकते हैं ये भी हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। जब सब कुछ हमारे ऊपर निर्भर करता है ना, तो हमें बहुत ज़्यादा लूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक आध दिन ठीक है, थोड़ा चीट डे चलता है, लेकिन हम जब अपने मकसद के लिए, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए दिन की शुरुआत करते हैं, तो उसे फिर पूरा भी करना चाहिए और पूरे प्रयास करने चाहिए कि आपके जो लक्ष्य है, आपके जो ड्रीम है, आपकी जो चीज़ें हैं जिसे आप अचीव करना चाहते हैं, वो पूरी हों। अब ऐसे में ना कई समस्या भी बीच में आती हैं, और उन समस्याओं को पार पाने के लिए हम पूरी पूरी कोशिश करते हैं, और उन कोशिशों में कई बार होता है कि हम थक भी जाते हैं, और इसमें हम बात जरूर करेंगे। लेकिन एक और म्यूजिकल ब्रेक पे जा रहे हैं, शाहिद मालिया की आवाज़ में आप सभी के लिए बेहद खूबसूरत ट्रैक। आप सुन रहे हैं सुप्रभात आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल पर। इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, ढेर सारी बातें करेंगे इस गाने के बाद।

समस्या एक ऐसी चीज़ है जो लाइफ में कभी ख़त्म नहीं होती, अगर आप देखें ना तो हमेशा बढ़ती जाती है। हम चाहें तो उसे ख़त्म कर सकते हैं, हमारा नज़रिया उसे बढ़ा भी सकता है। इट्स ऑल डिपेंड्स, अगर देखें तो टोटली सारी चीज़ें अगर हम पे डिपेंड करती हैं तो इस हिसाब से तो हमारी चीज़ें बहुत अच्छी होनी चाहिए थी, आप ये भी सोच सकते हैं, ये दिमाग में आ सकता है। लेकिन कई बार जो परिस्थितियाँ होती हैं ना वो हम इंसानों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर देती हैं, वो ऐसी चीज़ें क्रिएट कर देती हैं, ऐसी परिस्थितियों में हमें लाकर खड़ा कर देती है जहाँ पर हमारा दिमाग, हम ये कह सकते हैं कि उस कई बार साफ नहीं देख पाते, हमें नहीं पता चल पाता कि आगे चीज़ें कैसी कैसी आ रही हैं या हमें इस समय पे क्या करना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति बाहर से उस चीज़ें नहीं पता है वो हो सकता है ज़्यादा क्लैरिटी के साथ चीज़ों को देख रहा हो। तो हम बात कर रहे थे कि समस्या आती हैं, कई तरह की समस्या आती हैं, और उन समस्याओं को हम सुलझाने के लिए जो रास्ते लेते हैं कई बार वो रास्ते सही नहीं होते हैं, उन रास्तों को बदलना पड़ता है। तो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर पाएं, इस प्रॉब्लम से हम पार पा पाएं, इस समस्या को हम हटा दें, मिटा दें अपनी लाइफ से, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि हमारे प्रयास पूरे नहीं हो पा रहे। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है और होना भी चाहिए कि जो चीज़ें हम अपना रहे हैं उस समस्या को पार पाने के लिए, उस चीज़ को हम बदलें, उन तरीकों को बदलें। हो सकता है उन तरीकों में कोई त्रुटि हो या कमी हो जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हो पा रही है। अब ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस बात पर ध्यान देना कि वो तरीके में गलती क्या है, कमी क्या है। जब इंसान इन चीज़ों को बहुत जल्दी पहचान जाता है ना तो वो उन समस्याओं से भी पार पा जाता है। यदि आपकी कोई भी समस्या है जो आपके पास बहुत समय से है लेकिन आप उसे पार नहीं पा पा रहे, तो जो तरीका आपने अपनाया ना उस तरीके को बदल के देखिए, देखिए काफ़ी चीज़ें बदल जाती हैं।

तो हुआ क्या कि गांव के किनारे एक किसान का खेत था और खेत के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। उसी से उसकी फसलों की सिंचाई होती थी। और एक बार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी तो किसान का कुआं सूख गया। किसान ने वहाँ पर झांका, वहाँ पर देखा तो सिर्फ मिट्टी ही पड़ी हुई थी। उसके पड़ोसी उसे कहने लगे कि अब तुम कोई दूसरा खेत ढूंढ लो। किसान ने उनकी बात नहीं मानी। उसने कुएं के आसपास की ज़मीन को ध्यान से देखना शुरू किया। उसने देखा कि बारिश का पानी पास की पहाड़ी से बहकर गांव के बाहर चला जाता है। उसने एक योजना बनाई। अगले दिन उसने छोटी छोटी नालियों को खोदना शुरू कर दिया। काम बहुत कठिन था और लोग देखकर हंसते भी थे और उसे ताना भी देते थे कि सूखे कुएं में पानी लाने चला है, बहुत बड़ा काम करने वाला है। और किसान

चुपचाप अपना काम करता रहता था, सबकी बातें सबके ताने सुनता रहता था। कुछ दिनों बाद बारिश हुई। पहाड़ी से बहता पानी उन्हीं नालियों से होकर कुएं के पास की जमीन तक पहुंचने लगा। पहली बारिश में उसका कुआं नहीं भरता। किसान ने उन नालियों को और ज्यादा गहरा कर दिया। कुछ महीने बाद कुएं के तल में पानी दिखाई देने लगा। किसान का बेटा बहुत ज्यादा खुश हो गया और उसने अपने पिता से कहा कि आपने सूखे कुएं को फिर से जिंदा कर दिया। इस बात पर किसान कहता है कि कुआं सूखा नहीं था, कुआं सूखा था, रास्ता सूखा नहीं था। मुझे पानी पैदा नहीं करना था, बस उन रास्तों को खोजना था। इस बात को सुनकर उसका बेटा समझ जाता है कि हर बंद रास्ता अंत नहीं होता। कई बार जितनी भी हमारी समस्याएं हमारे सामने होती है ना, तो समस्या को बदलने के बजाय समाधान तक पहुंचने का तरीका बदलना पड़ता है। तो ये प्रयास आपको करना पड़ेगा। यदि आपके प्रयासों का कोई उचित हल आपको नहीं मिल रहा है बॉस, तो आपको यहाँ पर सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि क्या चीज़ है जो आपको बदलनी है और अपने तरीकों में किस तरह का बदलाव करना है, या फिर कोई दूसरा तरीका आपको अपनाना है और दूसरे तरीके के पास जाने का समय आ चला है। आप सुन रहे सुप्रभात, रेणु भट्ट के साथ आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल पर।

0: सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं सुप्रभात आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर। मैं हूं आपके साथ रेणु भट्ट। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, आप सभी का वेलकम। आप फ्रीक्वेंसीज के द्वारा तो हमसे जुड़े ही हुए हैं, इसके साथ साथ कई सारे चैनल्स हैं, कई सारे मीडियम्स हैं जिनके द्वारा आप हमसे जुड़े रहते हैं और अपनी बातें आप हमें बताते रहते हैं। आप हमें ऑनलाइन भी सुन पा रहे हैं, आप हमें ऐप के थ्रू भी सुन पा रहे हैं। बहुत सारे तरीके हैं फ्रीक्वेंसीज के माध्यम से तो आप सुनते ही हैं, तो आप हमसे जुड़े रहते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। आप अपना फीडबैक हम तक पहुँचाएँगे ईमेल के थ्रू तो हमें और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्या करना है आपको? आपको हमें मेल करना है feedback@fmrainbow.com पर। feedback@fmrainbow.com पर आपको मेल करना है और बताना है कि क्या बात है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। हम फटाफट कुछ नाम आपके साथ लेना चाहेंगे। हितेंद्र दास असम से हमें मैसेज कर रहे हैं और गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। गुड मॉर्निंग और नमस्कार हमें एक और लिसनर ने भेजा है, लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं भेजा है। और राजकुमार के संतानी अकोला महाराष्ट्र से भी हमें सुप्रभात कह रहे हैं और उन्हें जो कहानी है उसके बारे में भी वो बात कर रहे हैं कि प्रॉब्लम कभी ख़त्म नहीं होंगे और ये सच है कि उलझने आती ही रहती हैं। छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करें और कार्य करते हुए आगे बढ़ें। और यहाँ पर डॉली भी हमें मैसेज कर रही है कि कहानी अच्छी थी, गाने खूबसूरत बज रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ पंकज हैं अमरावती महाराष्ट्र से, उन्होंने दो गाने लिखे हैं कि उन्हें बहुत पसंद आए हैं, सुनोना सुनोना, चलते चलते से और मौसम का कोई दिल पर काबू करके। तो और इन्हें कहानी भी बहुत अच्छी लगी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। आप यूं ही हमारे साथ बने रहें, हमें सुनते रहें, हम यही चाहते हैं। मोनू पराशर हैं अलीपुर दिल्ली से हमें मैसेज करते हैं, आप अपने मैसेजेस हमें भेजते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो वेरी मच। मेल भी करेंगे तो भी हमें बहुत अच्छा लगेगा, मेल करके भी हमें बताएं कि आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं। फिलहाल मोनाली ठाकुर की आवाज़ में बेहद खूबसूरत ट्रैक सुप्रभा।

तो आपकी कहानी सुनकर तो आपको पता चल ही गया कि ऐसा हो सकता है। कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, वो हमारी बातों को भी रिफ्लेक्ट करती हैं। अब देखिए ना, आप भी इस बात को मानते हैं और आपके मैसेजेस के थ्रू हमें पता चल रहा है कि हाँ, आपको भी लगता है कि हाँ, चीज़ें जो है अगर सही नहीं हो रही है तो उसमें चेंज करने की ज़रूरत है। जो तरीके हम अपना रहे हैं उसमें जब तक हम चेंज नहीं करेंगे तो बताइए हम कैसे आगे बढ़ेंगे। कोई प्रॉब्लम है वो तो फिर सालों साल हमारे साथ रहेगी। कई बार होता है हमें पता होता है कि सोल्यूशन क्या है, लेकिन हम उस सोल्यूशन की ओर नहीं जाते। हम सोचते हैं कि इस तरफ से घूम जाए प्रॉब्लम के उस तरफ से घूम जाए, लेकिन जो एक्चुअल सोल्यूशन होता है ना, हम वो अपनाते नहीं हैं। इस बात पे ना हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जो जिस चीज़ का सोल्यूशन है उसको सही समय पर सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही समय पर चीज़ें कर लेंगे तो हो सकता है कि चीज़ सही समय पर रुक भी जाए। तो ये बात समझें।

और तरीकों की इम्पोर्टेंस समझें। अगर आपको लगता है कि पहले आप प्लान ए अपना रहे हैं और वो फलीभूत नहीं हो रहा है, तो आप स्विच कर जाएं प्लान बी पर या दूसरे तरीकों पर। अगर वो भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, या उस परिस्थिति में जिससे आप बाहर निकलना चाहते हैं वो परिस्थिति सॉल्व नहीं हो पा रही है, तो आप कोई तीसरा तरीका अपनाएं, चौथा अपनाएं, पांचवा, दसवां,

इसके ठीक एक घंटे बाद यानी कि 8 बजे 8:02 पर आपसे मिलने आऊँगी मैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर के दूसरे घंटे में, और दिल के तराने गाने नए पुराने लेकर शालिनी फिर से आपसे मिलने आएंगी सुबह 9:02 पर, और कार्यक्रमों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे 10:02 पर आप सुनेंगे वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम मैच प्लस म्यूजिक आर पर। हिमानी दत्ता रहेंगे आपके साथ। बबीता त्रिपाठी 11:02 पर लेकर आएंगे बॉलीवुड ट्रेल्स यानी कि बॉलीवुड की सभी ताज़ा तरीन हलचल। हिमानी दोबारा मिलने आएंगे आपसे वेस्टर्न म्यूजिक के ही प्रोग्राम प्ले इट कूल में 12:02 पर। बबीता त्रिपाठी के साथ आप सुनेंगे रेनबो हेल्पलाइन 1:02 पर। हम आपको बता दें कि पूर्व प्रसारित कार्यक्रम है जिसमें बात की जाएगी एंगर मैनेजमेंट पर यानी कि अपने गुस्से को किस तरह से कंट्रोल करें, उसका कैसे प्रबंधन हो सकता है, आपको बताएंगी डॉक्टर अरुणा ब्रूटा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। और हम आगे बढ़ेंगे कार्यक्रमों में आशियाना की ओर जाएंगे, प्रियंका मामगेन लेकर आएंगे ये कार्यक्रम 2:02 पर, और 3 बजे का समय है रेडियो डॉक्टर का। आज का हमारा टॉपिक है वायरल एंड अदर सीजनल इन्फेक्शंस। तो जितने भी सीजनल इन्फेक्शन्स होते हैं वायरल होते हैं इससे जुड़ी अगर कोई भी आपकी क्वेरी है कोई प्रश्न है तो आप हमें ज़रूर बताएं। हमारे एक्सपर्ट रहने वाले हैं डॉक्टर घनश्याम पंगते, आप प्रोफेसर एंड हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन LHMC से। 4:02 का समय है अल्फा जेन का, और आज हम जानने वाले हैं कि किस तरह से ऑथर लेखक बना जा सकता है, हाउ टू बी एन ऑथर। हमारे एक्सपर्ट रहेंगे कनिका शर्मा, आप ऑथर हैं, आप ज़रूर इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करें। और प्रियंका मंगेन रहेंगे आपके साथ, सिटी लाइट्स में गीतांजलि सोनी रहेंगे आपके साथ 5:02 पर, और गीता चौधरी आपके साथ रहेंगी मैसेज मसाला मिक्स में 6:02 पर। वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम लिपिका दास लेकर आएंगी यू आस्क फॉर इट 7:02 पर। म्यूजिक मस्ती में गीता रहेंगी आपके साथ 8:02 पर, और आपकी याद आती रही में खुर्शीद रहेंगे आपके साथ 9:02 पर, और खुर्शीद रहेंगे आपके साथ 11:02 पर रंगे महफिल में। तो आप इन तमाम कार्यक्रमों में हमारे साथ बने रहें, आप अपनी बातें हमसे शेयर करते रहें, अपनी बातें अपने मैसेजेस और मेल्स हम तक पहुंचाते रहें। फिलहाल इंजॉय करें बेहद खूबसूरत ट्रैक श्रेया घोषाल और सोनू निगम की आवाज़ में आकाशवाणी के FM 91 चैनल पर।

तो हम आपको बता दें कि आप सुनेंगे थोड़ी देर बाद गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, 7:02 के समय है, शालिनी सिंह के साथ आप सुनेंगे और

मन को हम कुछ भी कह देते हैं लेकिन मन हमें ना कुछ नहीं कहता, वो पलट के कुछ जवाब नहीं देता, लेकिन हम ही है जो मन को कहते हैं कि वो स्टूपिड है, वो पागल है, वो बावरा है, वो ये है, वो है, लेकिन हमें पता है हमें करना उसी के मन की है। तो अपने मन की आप करते रहें, लेकिन हाँ अगर कोई भी समस्या ऐसी आती है जिसे आप पार नहीं पा रहे हैं तो ज़रूर इस बात पर सोचें कि जो आप प्रयास कर रहे हैं वो गलत दिशा में जा रहे हैं, उसे सुधारने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपने आप प्रयासों को थोड़ी दूसरी गति दें, दूसरी तरफ दिशा दें और देखें कि तरीका बदल करके क्या क्या चीज़ें बदल सकती हैं। और मैं कुछ नाम आपके साथ साझा करना चाहूँगी। देहरादून से आलोक पंवार और मिनी का मैसेज आया है, वो कह रहे हैं कि हम रोज़ योग करते हुए एफएम रेडियो सुनते हैं, आज सुबह से यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, कहानी काफ़ी प्रेरणादायक थी, गाने ने बहुत अच्छे लग रहे, थैंक यू सो वेरी मच। और हम इनके बाद अब मैसेज लेना चाहेंगे, दूसरा भी मैसेज हम ले लेंगे फटाफट से। इन्होंने कहा है मीरा सिंह ने सिलचर असम से कि इनको गाना मोहम्मो के धागे जो है इनका फेवरेट गाना है, इनको बहुत अच्छा लगता है और ये दिन रात एफएम रेनबो से उलझे रहते हैं, माइंड फ्रेश हो जाता है, एनर्जी आती है। अनिल शर्मा अंकल हैं सरिता विहार से मैसेज करते हैं और वो भी मुसीबतों को ख़त्म करने के तरीके बताते हैं कि वो भी बदलने चाहिए। और यहाँ पर हम एक और मैसेज लेंगे, हमारा लास्ट मैसेज है अमित शर्मा का यमुनानगर हरियाणा से और उन्होंने कहा है कि एफएम रेनबो से उनको मोह आज भी और हमेशा रहेगा। और इसके साथ ही अब मैं आप सभी से इजाज़त ले लूं, मैं ठीक एक घंटे बाद दोबारा मिलने आऊँगी। शालिनी आ चुकी हैं स्टूडियो में, आप उनके प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट करें, सुनते रहें और बातें शेयर करते रहें हमसे, क्योंकि आपकी बातें पढ़ना और अपनी आपकी बातें जानना हमें बहुत बहुत अच्छा लगता है। फिलहाल गुड बाय एंड टेक केयर, ठीक एक घंटे बाद गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर के दूसरे घंटे में दोबारा मिलूंगी आपसे।

ये आकाशवाणी का रेनबो चैनल है। मुख्य समाचारों के साथ मैं शालिनी। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकी अवसंरचना और गतिशीलता में सहयोग को मजबूत करने, रक्षा सहयोग के नए रास्ते तलाशने तथा परमाणु ऊर्जा में सहयोग को गहरा करने के लिए 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल के 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने SIR के फॉर्म 6 में गैरकानूनी रूप से एक तरफा बदलाव किए हैं। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 3 हफ्ते के लिए टाल दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे बिलासपुर स्थित एम्स के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज विशाखापत्तनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का शुभारंभ करेंगे और फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की आधारशिला रखेंगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से त्योहारों के दौरान मिलावटी खाद्य सामग्री के खिलाफ विशेष अभियान चलाने को कहा है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपना समर्थन दोहराया है। 2026 का नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में कार्ल डाइसेरोथ, पीटर हेगेमैन और जॉर्ज नागेल को दिया गया है। तीनों वैज्ञानिकों को ऑप्टोजेनेटिक्स से जुड़ी खोजों के लिए यह सम्मान मिला है। और भारत और वेस्टइंडीज की 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

नमक, लौंग, पुदीना, तोमर, तुलसी, इलायची, अगर ये वाला टूथपेस्ट करके आपका हो गया हो तो मैं तो कह रही हूँ आज ना सब्जी भाजी लाना छोड़ दीजिए, क्योंकि जब इतना सारा पोषण आपको टूथपेस्ट में मिल जाए तो फिर सब्जी भाजी की क्या ही ज़रूरत है, हैं? क्या कह रहे हैं, रोज पेस्ट करते करते थोड़ा बहुत खा ही लेते हैं? तो है ना, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अधिकता किसी चीज़ के ना नुकसान करती है। ऐसा ना हो कि दांत चमकाने के चक्कर में पेट से भी हाथ धोना पड़े। मैं क्या जी सोने मगड़ो, की हाल चाल है? आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर शालिनी की आवाज़ सुन रहे हैं आप, और शो शुरू हो चुका है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। ये तो आप जानते हैं, और जो आप नहीं जानते हैं वो मैं आपको बता दूंगी थोड़ी देर में। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, लेकिन उससे पहले ये बेहतरीन सर टू रेक चलाऊंगी मैं आपके लिए, सुन लीजिए पहले इसको।

0: अरे जरा दूर हट मुझसे, छू मत मुझे, छुआछूत से बीमारियां फैलती हैं।
1: ये क्या बात हुई दादी? हाँ अच्छा तो ठीक है फिर, ये बताइए जो 500 रुपये मैं आपको देने वाली थी फिर तो आप लेंगी नहीं है क्योंकि मैंने उसे छू दिया?
0: ऐसी बात नहीं है, वो तो उस पे मैं सैनिटाइजर लगा लूंगी ना है।
1: समझ गई मैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि हर एक बीमारी ना छुआछूत से नहीं फैलती है, और सबसे बड़ी बीमारी तो ये छुआछूत वाली फीलिंग ही है जिसको दूर करने के लिए हम मनाते हैं क्या एंटी अनटचेबिलिटी वीक। हम मना रहे हैं इसे 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक, ठीक है दादी?
0: अच्छा
1: हाँ, और सुनिए वाइल्ड लाइफ वीक भी मना रहे हैं हम जो कि 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक चलेगा, और इसके साथ साथ हम वर्ल्ड स्पेस वीक मना रहे हैं और जो कि चलने वाला है 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक। अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस ये जो है वो भारत समेत पूरी दुनिया में 6 अक्टूबर को विश्व सेरिब्रल पाल्सी दिवस यानी कि वर्ल्ड सेरिब्रल पाल्सी डे के रूप में मनाया जाता है, जो इस बीमारी से पीड़ित बच्चों को और लोगों को के अधिकारों के प्रति जो है वो जागरूकता फैलाता है। और इसके साथ साथ क्या आप जानते हैं कि भारत की पूरी जो आपराधिक प्रणाली है, न्याय प्रणाली जिस पर कानून जो है वो टिका हुआ है, वो भारतीय दंड संहिता यानी कि IPC आज ही के दिन 6 अक्टूबर 1860 को ब्रिटिश काल में पारित की गई थी, और ये दुनिया के सबसे पुराने लिखित कानूनी कोड्स में से एक है जो कि बाद में 1 जनवरी 1862 को लागू हुआ था।
0: अच्छा चलिए जानकारी तो ठीक है, पर ये बता जो तू 500 रुपये देने वाली थी उसका क्या हुआ है?
1: दे दूंगी, रोइए मत, मैं भी फिलहाल ही गाना चलाऊंगी।
0: अच्छा ठीक है चला दे, इंतजार कर रही हूँ मैं।

0: दूरियां फना हो चुकी हैं, क्योंकि दूरियों को तो यहाँ पर सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि जब यहाँ पर हम होते हैं तो दूरियों का क्या काम ही, बताइए। आकाश फोड़ी रेनबर्ग से 2.6 सुन रहे हैं आप, चल रहा है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग डेली एनसीआर और मेरा नाम है शालिनी। ये तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो जान जाइए, क्योंकि हमारा और आपका नाता जो है वो लंबा चलने वाला है। तो फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ कि एक जो पति है वो अपनी कमज़ोर हिंदी के चलते ना मुसीबत में फंस गए। और वो कैसे? क्योंकि वो जो है वो अपनी पत्नी को मैसेज टाइप कर रहे थे और प्रियतमा की जगह गलती से प्रेतात्मा लिख दिया। बताइए तो कोई करता है? फिर क्या हुआ, यही पूछ रहे हैं ना आप, तो मैं बता रही हूँ फिर क्या था। फिर बेताल बनकर वो लटक रही हैं और कह रही हैं कि
1: चुपचाप खाना बनाओ, नहीं तो अगर कुछ बोले ना तो मैं तो चली।
0: ये तो थी मजाक की बात, लेकिन अब कर लेते हैं काम की बात, क्योंकि महान भारतीय खगोल वैज्ञानिक मेघनाथ साहा का आज उनके जयंती है। ये 6 अक्टूबर 1893 को आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था और उन्होंने विज्ञान जगत को साहा समीकरण यानी कि साहा इक्वेशन दी, जिससे दुनिया जो है वो पहली बार तारों के तापमान और उनकी भौतिक स्थिति को समझ पाई थी। इसके अलावा 1946 में आज ही के दिन प्रसिद्ध हिंदी और अंग्रेजी फिल्मों के दिग्गज अभिनेता विनोद खन्ना का भी जन्म हुआ था, इनकी भी आज जयंती है। इसके अलावा खेल जगत का एक अनोखा रिकॉर्ड भी भारत के नाम है, जिसमें देश के सबसे लंबे समय तक यानी कि 32 साल तक एम्पायरिंग करने वाले एम्पायर जीवन डी घोष का जन्म भी आज ही के दिन 6 अक्टूबर को 1935 में बंगाल में हुआ था। तो इन सभी महान शख्सियतों को हमारा नमन है। और फिलहाल नमन के साथ साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप हमसे जुड़े रहिए आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर, हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से भी आप सुन सकते हैं, आप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, और इसके साथ साथ आप जो है वो हमारे एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म वेव्स से भी जुड़ सकते हैं जो कि टोटली फ्री है। फिलहाल मैं आपके लिए एक सॉन्ग प्ले कर रही हूँ, अभी थोड़ी देर में आते हैं और ढेर सारी बातें करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: बस बस बस बस बस, गाना खत्म हो गया है, अब हम बातचीत चालू करेंगे, ठीक है?
1: ठीक है।
0: तो मैग्या जी, सोने मकड़ो, क्या हाल चाल है? किम छो मज्जा मा कसे काय आय आय। ये जो बात सुन के जो आपके चेहरे पर हंसी आई ना, मैग्या जी मार सूटिया है, मार सूटिया, मैंने मज्जा ही आ गया है। तो क्या कह रहे हैं हम, सुबह से दौड़ रही है चाकू लेकर मेरे पीछे, मजाक में कहा था दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। तो मैं आपसे कहती हूँ कि आप ऐसे पंगे लिया ही क्यों करते हैं, जब आपको पता है कि वो हरिश्चंद्र की फैन है तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए ना। चलिए कोई बात नहीं, अब आप निपटिए। फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ कि आज पुण्यतिथि है, सिखों के सातवें गुरु गुरु हर राय जी का आज महा प्रयाण हुआ था आज के दिन 1661 में, और 1858 में आज के दिन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानी नाना साहब पेशवा ने भी हमसे विदा ली थी, और 1974 में महान स्वतंत्रता सेनानी बैरिस्टर और राजनेता वेंगालिल कृष्ण मेनन, इन्होंने भी इस दुनिया से अलविदा ली थी। इनकी सभी की पुण्यतिथि है आज, इनको हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। और इसके अलावा मैं जो आपसे
1: कहना चाहती हूँ, आपसे मैं, आपने उनके हंसी के बारे में तो पूछो, मेरी हंसी बताओ कैसी है, दिख रहा है आपको है?
0: रेडियो पे दिखाई नहीं देता।
1: अरे ऐसे कैसे, दिखाई नहीं देता तो सुनाई तो देता है।
0: हाँ बस हो गया, आप जानते होंगे कौन है, ये मेरे ही रूप है जो बीच बीच में निकल के आते रहते हैं। आपको इनकी आदत हो गई होगी, अगर नहीं है तो डाल लीजिए क्योंकि ये चलता रहेगा। सो स्टे ट्यून्ड, 102.6 सुन रहे हैं आप आकाशवाणी रेनबो विद मी शालिनी, और शो चल रहा है गुड मॉर्निंग डेली एनसीआर। मैं गया जी, ये वाला गाना आपके लिए।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: आप मरने की बातें कर रहे हैं, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। मैं इतनी देर से आपको यहाँ पर हंसाने की, मुस्कुराने की, थोड़ी सी आपकी स्माइल को बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, और मैं यानी कि शालिनी, शो चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, आकाशवाणी रेनबो 102.6 यानी कि 102.6 पर आप हमें सुन रहे हैं। इसके अलावा आप हमें सुन रहे हैं न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से भी, और हमारे वेव्स OTT प्लेटफॉर्म से भी जुड़े हैं कि नहीं? नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ, ये काम जल्दी कर लिया करिए, ठीक है? फिलहाल हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, जिसका भी बर्थडे हो आज सबको बर्थडे विशेष मेरी तरफ से। लेकिन इसके अलावा मैं कहना चाहती हूँ कि बर्थडे के ऊपर यही वाला गाना क्यों है, और कोई गाना नहीं है क्या? मतलब जब देखो बर्थडे विशेष इसी तरह से देती हैं, बोर नहीं होते क्या आप लोग? तो मुझे लगा ना मैं कुछ नया ट्राई करती हूँ, है मतलब आप ही बताइए कि किसी को छोले चावल पसंद हो तो क्या पूरी जिंदगी वो छोले चावल ही खाएगा? कभी कभी कढ़ी चावल, कभी बैंगन का भरता, कभी कोफ्ते, आए ये सब भी होना चाहिए ना, तभी तो जिंदगी का स्वाद बना रहता है। तो इसीलिए मैंने जो है बर्थडे सॉन्ग चेंज किया। सुनिए, जीना सिर्फ मेरे लिए, जीना सिर्फ मेरे लिए, जीना सिर्फ मेरे लिए, जीना सिर्फ मेरे लिए, नहीं तो देख लूंगी मैं। इस तरह से विशेष देनी चाहिए, तभी तो किसी की याद रहती है। डरा धमका कर रखना चाहिए थोड़ा सा, ताकि उसको अगला बर्थडे तक, अगले बर्थडे तक याद रहे ये वाली विशेष। तो फिलहाल बर्थडे की बातें हो रही हैं, क्योंकि पापा क्या कर रहे हैं मामा, आज इनका बर्थडे, ये तो आप समझ ही गए होंगे। संजय मिश्रा की बात कर रही हूँ, दैट्स राइट। ये हमारे फेमस रिनाउंड फिल्म एक्टर, कॉमेडियन, आंखों देखी फिल्म के लिए और मसान फिल्म के लिए इन्हें जाना जाता है, और आज यानी कि 6 अक्टूबर को आज ही के दिन 1963 में पैदा हुए थे। और तो इनके लिए क्या कहते बनता है कि
1: जीना सिर्फ हमारे लिए, जीना सिर्फ हमारे लिए, कसम से।

सही बता रही हूँ मैं, जिस तरह से पानी की बर्बादी आप करते हैं ना, एक दिन इसी तरह से मटके लेकर घूमने पड़ेंगे। चल्ली का कलसी का पानी है तो फिर आपको याद आएगी जी कि आप जो शावर के नीचे खड़े होकर घंटे घंटे पानी बहाया करते थे ना, फिर आपकी आंखों में सियाह से टपकेंगे और पानी की बूंदे नहीं। फिलहाल मैं कहना कुछ और चाहती थी, क्या कुछ और गई, मुझे खुद को समझ में नहीं आया मैंने क्या कहा। फिलहाल आप समझ लीजिए, फिलहाल जो मुद्दे की बात है उस पर आ जाती हूँ मैं। क्या जी सोने वगड़ो, तुझे सुन रहे हो साडा शो जिसका नाम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर विद मी शालिनी, और कहाँ पर 102.6 पर आकाशवाणी रेनबो। तो जी आज जो है वो दो लोगों का और बर्थडे है, इसके अलावा भी बहुत हजारों लोगों के बर्थडे का मुझे पता नहीं है ना, तो जिनका पता है उनका बता देती हूँ। सनी सिंह का बर्थडे, सनी सिंह निज्जर जो पॉपुलर बॉलीवुड एक्टर हैं, नोन फॉर सोनू के टीटू की स्वीटी, मैं तो बता रही हूँ इस फिल्म के नाम को ना टंग ट्विस्टर रख देना चाहिए। नेक्स्ट बर्थडे है म्यांग चैंग का, जो कि एक्टर सिंगर टेलीविजन होस्ट हैं, आज ही के दिन वो पैदा हुए थे 1982 में। तो इनका जो है माफ करिएगा मुझे, मैंने आपकी उम्र बता दी, मुझसे गलती होगी, गलती से मिस्टेक हो जाया करती है, कोई बात नहीं, मैं इंसान ही हूं ना। तो फिलहाल ये इंसान, ये भोली वाली इंसान जो आपसे विदा लेती है, यहां पे जाने का टाइम हो गया है क्योंकि अगली आरजे आ चुकी है रेनू बट आपके साथ बात ही करने के लिए, तो उनके साथ रहिएगा ठीक है। फिलहाल मैं गया जी, मैं एक अगला वाला गाना चला देती हूँ आपके लिए, ख्याल रखें तो गाना सुनी चाहिए ठीक है जी। स्टे ट्यून्ड, शालिनी सेज टाटा।

नमस्कार, पेश है इस घंटे के एफएम रेनबो मुख्य समाचार। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकी, अवसंरचना और गतिशीलता में सहयोग को मजबूत करने, रक्षा सहयोग के नए रास्ते तलाशने तथा परमाणु ऊर्जा में सहयोग को गहरा करने के लिए 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के हिमाचल प्रदेश दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे बिलासपुर स्थित एम्स के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज विशाखापत्तनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का शुभारंभ करेंगे और फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की आधारशिला रखेंगे। निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी रूप से एक तरफा बदलाव किए हैं। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 3 हफ्ते के लिए टाल दी है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से त्योहारों के दौरान मिलावटी खाद्य सामग्री के खिलाफ विशेष अभियान चलाने को कहा है। यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपना समर्थन दोहराया है। 2026 का नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में कार्ल डाई सेरोथ, पीटर हैगमैन और जॉर्ज नागेल को दिया गया है। तीनों वैज्ञानिकों को ऑप्टोजेनेटिक्स से जुड़ी खोजों के लिए सम्मान मिला है। और भारत वेस्टइंडीज की 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ये थे इस घंटे के FM रेनबो मुख्य समाचार।

अच्छा, इस गाना बहुत बहुत सुंदर है संजू राठौर की आवाज़ में। इसका ओरिजिनल ट्रैक भी आपने सुना होगा जो इन्होंने गाया था, बहुत बहुत सुंदर गाना है। मराठी भाषा में बहुत अच्छा लगता है, चाहे जो भी लोग इसे सुने देश में कहीं भी। पैसा पैसा पैसा का बैकग्राउंड आ रहा था। पैसा बहुत ज़रूरी है हम सभी के लिए, हमारी सभी की लाइफ में आगे प्रोग्रेस करने के, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। और इस बात को हम सब

जानते हैं कहीं ना कहीं समझ जाते हैं, लेकिन जो नहीं जानते वो कहीं ना कहीं वो भी समझ जाएंगे कि पैसा बहुत बहुत ज़रूरी है लेकिन सबसे ज़रूरी नहीं है। जब सबसे ज़रूरी चीज़ों की बात आएगी ना तो पैसा उसमें थोड़ा हो सकता है कि सेकंड या थर्ड फोर्थ पोजीशन में आए। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR के दूसरे घंटे में, मैं हूँ आपके साथ रेणु भट्ट और आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल पर आपका हमारे साथ बना हुआ है। इस साथ को यूँ ही बनाए रखे फ्रिक्वेंसीज के माध्यम से। ऑनलाइन आप हमें सुन रहे हैं, आपके थ्रू आप हमें सुन रहे हैं, आप अपनी सारी बातें हमसे शेयर करते रहें, साझा करते रहें। हम यही चाहते हैं आपको बस ईमेल भी करना है feedback@fmrainbow.gmail.com पर आपको मेल करके हमें बताना है जो भी बात आप हमसे कहना चाहते हैं। मैसेजेस आपके पहुंचते रहते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। मेल करेंगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा। और ये बेहद खूबसूरत ट्रैक आप सभी के लिए कौन विशाल डडलानी और श्रुति पाठक की आवाज में आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल पर, ये रहा

0: वेल चलिए, अब एकॉन की आवाज़ सुनने के बाद हम आपको बताते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रतियोगिता कंपटीशन जिसमें हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 5, 6 और 7 क्लास का एक ग्रुप है, 8th, 9th और 10th क्लास का एक ग्रुप है। मैं बात कर रही हूँ राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता 2026 की, और ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है ये प्रतियोगिता विद्युत मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ पावर की तरफ से। और इसमें जो टाइटल है, थीम है, वो भी आपको बता दूँ, विद्यालय और घर में ऊर्जा बचाएं, ऊर्जा संरक्षण ही ऊर्जा सुरक्षा की कुंजी है, ये टॉपिक है। इस थीम पर आपको चित्रकला प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करना है, चित्र बनाना है, और इसको प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2026 है। और इसकी ज़्यादा डिटेल आप इनकी वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं और आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी भी। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, और जितने भी बच्चे हैं जिनको ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता है, जिनकी चित्रकारी बहुत गज़ब की है और जो बहुत ही इनोवेटिव सोचते हैं, आप इसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करें। बता दूँ दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी, जिसमें पहले ग्रुप में 5वीं, 6वीं और 7वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं और दूसरे ग्रुप में 8वीं, 9वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं। अगला ट्रैक जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अमिताभ और अभिषेक बच्चन की आवाज़ में है, और शुरू में आपको कुछ एपिक डायलॉग्स सुनने को मिलेंगे, कुछ ऐसे डायलॉग्स जो आपको समय में घुमाते रहेंगे कौन सी फिल्म का कौन सा डायलॉग है। अगर आप गेस करें तो मुझे ज़रूर बताएं, और चलिए सुनते हैं ये ट्रैक और कुछ डायलॉग्स, मज़ा आ जाएगा आपके गाना सुनकर।
1: I can talk English, I can walk English, I can laugh English, because English is a very funny language. Bhairo becomes Byron and Byron becomes Bhairo because their minds are very narrow. Because their minds are very narrow. Because their minds are very narrow.
2: Excuse me, please.
3: Mere pitaji kaha karte hain? That the whole country of the system is a position of the hemoglobin in the atmospheric pre... Atmospheric pre... Atmospheric pre...
4: Hey! Hey! Hey! Hey!
5: You see, sir? Debating on the diabolic diagnosis of decisive deliverance, a papad is a rhythmic rhyme replica of a jhapad, where one relishes your hunger and the other relishes your anger. Similarly, sir, Bachchan is also a rhythmic rhyme replica of Bol Bachchan, where one represents a magnanimous name, while the other represents a horrendous game.

0: दारू पीने से लिवर खराब होता है और मैं कहता हूँ कि बोल बच्चन से कुछ खराब नहीं होता।
1: नौटंकी गड़ी गड़ी ड्रामा करता है। अरे ऐसे ही बोल बच्चन करता रहेगा तो आसमान से गिरेगा, खजूर में अटकेगा।
2: या फॉलिंग फ्रॉम स्काई स्क्रेपर हैंगिंग इनटू ड्राई फ्रूट एंड

0: यू सी सर, द होल कंट्री ऑफ द सिस्टम ये है कि हम फिल्म में है नहीं, सिर्फ नाम है हमारा बच्चन।
1: तो कितने डायलॉग्स आपको पता चले, कौन सी फिल्म से हैं, कुछ याद आया आपको? बीच में अजय देवगन की आवाज़ भी आई थी, आपको पूरी चीज़ें सिनारियों से ना, जब इतनी अच्छी चीज़ हमारे सामने चलती है तो दिमाग में पूरी पिक्चर आ जाती है। तो मैं बहुत श्योर हूँ क्योंकि डायलॉग्स इतने एपिक हैं कि आपको पता चल ही गया, जिन्होंने जिनके ऊपर वो पिक्चराइज है, जिन्होंने बोले वो खुद इस गाने में है, तो डेफिनेटली आपको पता चल गया होगा। लेकिन एक चीज़ जो आपको नहीं पता है वो बताने के लिए मैं आपके सामने आई हूँ। मैं आपको बता दूँ कि गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में पीजी आयुर्वेद और पीजी होम्योपैथी कोर्स में 7 अक्टूबर तक आवेदन का अवसर है। तो अब बहुत कम समय है, आज 6 तारीख है, कल तक का ये अवसर है। आपको ज़्यादा जानकारी लेनी है तो इनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं, www.ipu.ac.in पर आप इनकी वेबसाइट पर जाएं, इन कोर्सेज के बारे में डिटेल लें। अगर आपको इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आप इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं। और ऐसी ही रोचक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए आपको हमारे साथ यूं ही बने रहना। आप सुन रहे गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, रेणु भट्ट के साथ आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल पर।

0: चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए तो जिंदगी में रंग भर दे।
1: मेरी जैसी मेरी अपनी पताका,
0: पताका चाय, गजब का स्वाद।
2: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। और अब समय है कि हम आपके साथ ज़रूरी बातें शेयर करें। हम वैसे भी आपके साथ सारी बातें जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है ना, हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपको पता चले और आप उस बात को लेकर जागरूक हों और अपने आसपास भी वो बात आप फैला सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं। अच्छा, गाँव में या दूर दराज के इलाकों में, क्षेत्रों में जब हम जाते हैं घूमने के लिए या अपने गाँव में जाते हैं, तो वहाँ पर चूल्हे में चूल्हा फूंकती लड़कियां और औरतें हमें बहुत अच्छी लगती हैं। हम कहते हैं कि ये तो बहुत ही देसी खाना है, बहुत अच्छा है और इसमें तो बहुत गज़ब का टेस्ट आ रहा है। लेकिन उस धुएं में सिर्फ खाना नहीं, बीमारी भी पकती है। और इसी धुएं को ख़त्म करने के लिए भारत सरकार ने 1 मई 2016 को लाई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। और आप समझ गए होंगे कि बात करने का वक्त है सेवा संकल्प अभियान का, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की। और जैसे हमने आपको बताया कि ये 1 मई 2016 को ये लॉन्च हुई थी और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीब परिवारों, विशेषकर ग्रामीण महिलाओं को एलपीजी गैस कनेक्शन देना, लकड़ी और कोयले के धुएं से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करना, महिलाओं को सशक्त बनाना और उनका समय भी बचाना। बहुत समय बचता है जब कोई भी महिला चूल्हे से हटती है, उनकी हेल्थ भी अच्छी होती है। और जब एक महिला की हेल्थ अच्छी होती है तो कहा जाता है कि पूरे परिवार की हेल्थ अच्छी होती है, तो महिला से पूरा परिवार जुड़ा रहता है, ये बात हम सबको पता है। इसलिए इस योजना का लाया गया और उद्देश्य हमने आपके साथ साझा किए। इसकी स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी भी है, यानी कि पात्रता भी है, और वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे डेफिनेटली। और कुछ विशेषताएं और लाभ हैं बहुत ही संक्षेप में हम आपको बताना चाहेंगे। बीपीएल और पात्र गरीब परिवार की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है, जिसमें सुरक्षा जमा, प्रेशर रेगुलेटर और अन्य शुल्क भी शामिल होते हैं। सरकार द्वारा उज्ज्वला लाभार्थियों को गैस सिलेंडरों पर निर्धारित सब्सिडी प्रदान की जाती है और योजना के दौरान पहला रिफिल और हॉट प्लेट भी मुफ्त में दी जाती है। पात्रता की हमने बात की थी कि इसके लिए आवेदक की जो महिला है उसकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, भारत की नागरिक होनी चाहिए और घर पे कोई भी अन्य एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ नाम खरीब या पात्र सूची में भी होना चाहिए। कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो लेकर के व्यक्ति महिला जा सकती है और इस योजना को अपना सकती है, इसमें अप्लाई कर सकती है। तो जितनी भी बातें आप तक पता चलती हैं, अगर आपको लगता है कि उस पात्रता को कोई पूरा कर रहा है आपके आसपास, तो आप उन्हें ज़रूर बताएं ताकि इस बात से किसी ना किसी का फ़ायदा हो सके। और जो बात हम आपके साथ साझा करें आप आगे साझा करें और इसी तरह से सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन से इसी तरह से स्प्रेड होती रहें, लाइन बनती रहे, एक चेन बनती रहे, मुझसे आप तक, आपसे किसी और तक, किसी और तक, किसी और तक। तो जब ये बात ऐसे चेन लंबी जाएगी ना, तो देखिए कितना कितना अच्छा इसका असर होगा। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर रेणु भट्ट के साथ, तो ये बेहद खूबसूरत ट्रैक आप सभी के लिए।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

डेफिनेटली दूरियां जरूरी हैं, इसीलिए पता चलता है कि क्यों पास रहना अच्छा लगता है, ये पता चलता है दूरियों से। तो इसलिए दूरियां जरूरी हैं, हर चीज़ की अपनी इंपॉर्टेंस है, बस उसे दूसरे नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। लेकिन इन दूरियों को कम करने के लिए एक बात मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, स्पेशली फॉर दोस जो कि भागलपुर रहते हैं या यहाँ से जाते रहते हैं। आनंद विहार टर्मिनल से भागलपुर के बीच में विशेष ट्रेनें चलने वाली हैं जो 10 अक्टूबर से 25 नवंबर तक चलेंगी, और ये आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है जो वहाँ पर जाते हैं। और आपके लिए स्पेशल ट्रेन चलने वाली हैं ताकि आपको कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो, दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, आप इजीली कम्यूट कर पाएँ। और अब आपको थोड़ा समय में पीछे लेके जाएंगे, एक बहुत खूबसूरत ट्रैक है जो अपने समय का बहुत बहुत ब्लॉकबस्टर, आज के जनरेशन के हिसाब से कहें तो वायरल ट्रैक जो है, अलका याग्निक विनोद राठौर की आवाज़ में आप सभी के लिए बेहद खूबसूरत और डांसिंग नंबर। शंकर महादेवन भी है इस गाने में।

आया ना याद आपको उर्मिला मातोंडकर का डांस, और ये गाना अपने टाइम का इतना सुपर डुपर हिट ट्रैक है ना, अभी भी बज जाता है तो बस मज़ा आ जाता है। मैं फटाफट आपको बता दूं कि जाम की एक ऐसी समस्या है जो हर शहर में है, और मुझे लगता है कि इससे बचने के लिए सरकार बहुत एफर्ट्स डाल रही है। इसीलिए जाम घटाने के लिए अगर हम नॉर्थ दिल्ली की बात करें तो बादली बवाना और बवाना और चुंदी सड़क पर जाम की समस्या को दूर करने के लिए उन सड़कों को चौड़ा करने की बात की जा रही है, ताकि इससे लोगों को परेशानी ना हो। और PWD इन सड़कों को चौड़ा करेगी, और ये बात बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर हम जाम की समस्या की बात करें, अगर हम देखें कि ट्रैफिक के बारे में, तो बढ़ता ही जा रहा है, घट नहीं रहा है। यहाँ पर हमारे एफर्ट्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए, ताकि हमारी वजह से सड़कों पर जाम ना लगे, हम एक्स्ट्रा अननेसेसरी गाड़ियाँ लेकर के ना सड़कों पर जाएँ। जितनी कम से कम हो सकती हैं चीज़ें, उतने कम से कम करें, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जैसे कि हमेशा कहा जाता है, बताया जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल होगा, उतना ही ज़्यादा सड़कों पे जाम कम होगा, सड़कें भी अच्छे से सांस ले सकेगी, उसका भी दम नहीं निकलेगा।

वेल, किसी का भी फोन गुस्से में नहीं काटना चाहिए, प्यार से काटिए। अगर कुछ बात नहीं करनी है आपको तो आप कह सकते हैं कि अभी मैं बिजी हूँ, ऐसा करना तो बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा, क्या बात है कि मेरे जाने का टाइम हो चला है, और मैं जाने से पहले आपको बता दूं कि मेरे जाने के बाद आप सुन सकते हैं शालिनी को दिल के तनाने गाने नए पुराने में। और हिमानी दत्ता रहेंगे आपके साथ 10:02 पर वेस्टर्न म्यूजिक के प्रोग्राम मैचलेस म्यूजिक आर में। बॉलीवुड ट्रेल्स लेकर आएंगी बबीता त्रिपाठी 11:02 पर, बॉलीवुड की सभी ताज़ा तरीन हलचल के साथ आपके आपसे मिलने के लिए। मेरे जाने का समय हो गया, मैं ले लेती हूँ आपसे इजाज़त। गुड बाय एंड टेक केयर, खुश रहें और सबको खुश रखें।

ये आकाशवाणी का रेनबो चैनल है। मुख्य समाचारों के साथ मैं शालिनी। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीट और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से 8 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के 2 दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज विशाखापत्तनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का शुभारंभ करेंगे और फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की आधारशिला रखेंगे। गोवा विधानसभा परिसर पोरवोरम की रजत जयंती के अवसर पर आज से 9 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपना समर्थन दोहराया। अफगानिस्तान के नागरिकों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनका व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान में हुए आतंकी हमले के लिए ईरान जिम्मेदार था। यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों को परिषद में सुधार किए जाने का आग्रह किया है। फीफा अंतर्राष्ट्रीय मैत्री फुटबॉल मैच में भारत का सामना आज उरुग्वे से होगा। मुकाबला सॉल्ट लेक के युवा भारतीय क्रीडांगन में खेला जाएगा। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए।

मकड़े मकड़ो, स्वागत है आपका एक बार फिर से आकाशवाणी रेनबो 102.6 में, जहां शो शुरू हो चुका है दिल के तराने, गाने नए पुराने। और मुझे तो आप सभी बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि आप सभी अपना इतना खास टाइम जो हमें देते हैं ना, उसके लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। तो मैं अपने बचपन की एक बात आपको बताती हूँ। मेरा बचपन जो है ना, वो बहुत ही संघर्षों में बीता है। क्या बताऊँ मैं आपको, है? स्कूल जाती थी तो टीचर्स डांटते थे, और नहीं जाती थी तो पेरेंट्स, बच्चा जाए तो जाएगा। लेकिन अगर उस डांट का, उस फटकार का ये असर हुआ है कि मैं आपके साथ बैठकर यहाँ पर बातें कर पा रही हूँ, तो ये तो अच्छा ही है ना। तो ऐसी डांट तो अच्छी है, तो ऐसी डांट थोड़ी सी खा लेनी चाहिए और सुन लेना चाहिए। क्या अगला वाला गाना जो मैं आपके लिए चलाने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप हमें सुन पा रहे हैं न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी, और साथ ही आप हमारे वेव्स OTT से भी जुड़ सकते हैं, जो कि टोटली फ्री है आपके लिए एंटरटेनमेंट। ठीक है जी, सो स्टे ट्यून्ड एंड लिसन टू दिस सॉन्ग।

0: अरे अब बस भी करो ना, मेरे को नहीं जाने का है स्वामी, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर शो करना है।
1: आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर शो करना है क्या? दिल के तराने, गाने नए पुराने, वो चल रहा है शो। शालिनी कहते हैं मुझे और आप सुन रहे हैं बेहतरीन ट्रैक्स के साथ साथ बेहतरीन बातें। आजकल के जो लोग हैं ना सोशल मीडिया वाले, वो कहते हैं कि
0: सोशल मीडिया पर मैं सबको जानती हूँ, मैं इतने सारे फ्रेंड्स से मिले ना कि बस पूछो ही मत, और फॉलोवर्स, ओह माय गॉड, इतने सारे फॉलोवर्स है ना कि कभी कभी तो मुझे लगता है कि इंटरनेट ना मेरे बिना बंद ही हो जाएगा।
2: खामोश, आवाज नीचे
0: है। कौन?
2: मैं तुम्हारे मोबाइल का चार्जर। मेरे बिना इंटरनेट तो क्या मोबाइल भी नहीं चलेगा, बताओ।
0: मेरे बिना इंटरनेट नहीं चलेगा। हाँ तो ठीक है ना, कभी कभी तारीफ कर लेनी चाहिए अपनी।
1: तो बस यही होता है, देखा, ऐसी ही बातें मैं आपके लिए लाती हूँ जो कहीं नहीं मिलती आपको। इतनी इतनी सोफिस्टिकेटेड बातें ना मेरे पास ही मिलेंगी आपको। मेरा नाम तो आप जानते हैं और शो का नाम मैंने आपको बताई दिया, तो अगला गाना चला देती हूँ बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि अगला वाला जो गाना है ना वो पुराना वाला गाना है, मिले दिल खिले।

0: चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए तो जिंदगी में रंग भर दे।
1: मेरी जैसी मेरी अपनी पताका,
0: पताका चाय, गजब का स्वाद।

0: ऐसी की याद आएगी नानी।
1: ये कह रही है पड़ोस वाली चाची, जिनके पास ऐसा हुआ कि आधी रात को उनके मोबाइल पर मैसेज आया है। तो इतने में चाचा जो है वो तपाक से उठकर बोले और लपक के मैसेज अपना जो है मोबाइल उठाया उनका और बोले कि
2: आधी रात को ये ब्यूटीफुल के मैसेज कौन भेज रहा है तुम्हें, बताओ मुझे।
1: तो इतने में चाची जो है वो घबरा गई और एकदम सकते में आ गई और फोन उठाया और कहा कि आधी रात को तो छोड़ो, मैं सोच रही हूँ कि इस उम्र में मुझे कौन मैसेज भेज रहा है ब्यूटीफुल के। चाची ने फोन उठाया, देखा, फोन को देखा, मैसेज को देखा और फिर चाचा को देखा। और फिर आपको पता है क्या हुआ? चाचा के जो तोते हैं वो फाख्ता हो गए। क्यों? क्योंकि चाची ने कहा, सुनो, ब्यूटीफुल नहीं बैटरी फुल लिखा है, जरा अपना चश्मा ठीक करा लो, चश्मा पहन के मैसेज देखा करो, समझ के तुम। देखा, इसीलिए कहते हैं कि शक ना ज्यादा नहीं करना चाहिए, चश्मा भी साफ होना चाहिए, चश्मा आंखों पे चढ़ा होना चाहिए और दिमाग भी साफ होना चाहिए, मतलब खाली नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए बिना शक के, तभी जिंदगी गुलजार रहती है। और उसको और गुलजार बनाने के लिए मेरे पास आपके लिए गाना चला देती हूँ, थोड़ा झूम लीजिए उनके साथ है।

बहुत देर से घंटी बज रही है, उठ जाइए, बहुत देर हो गई है। इतनी देर से मैं आपको जगाने का काम कर रही हूँ, दिल के तनाने गाने नए पुराने में, शालिनी कहते हैं मुझे। और आप तो जानते हैं कि आकाशवाणी रेनबो 102.6 सुन रहे हैं आप। अब हो चुका है समय यहाँ पर पुराने वाले गाने का, लेकिन पुराने सिर्फ नाम के लिए, आज भी सदाबहार है।

0: नाम से मुझे याद आया कि भीगी पलकों पे तुम्हारा नाम है, भीगी पलकों पे तुम्हारा नाम है, पलकों पे नाम है, क्या करूं जब भूख लगती है ना तो ऐसे ही फड़फड़ाने लगती हूं मैं। तो भीगी पलकों पे तुम्हारा नाम है, मेरे 200 रुपये गायब है, ये तुम्हारा काम है, बताओ मुझे, बताओ मुझे। अरे मैं आपसे नहीं पूछ रही हूँ, मैं तो इससे पूछ रही हूँ।
1: अरे इससे का क्या मतलब है, मैंने नहीं लिए, मैं ऐसे वैसे काम नहीं करती हूँ, हाँ मैं बता रही हूँ।
0: तुम्हें कहाँ गए?
1: होंगे यहीं पे कहीं पे, वो देखो पेन के नीचे रखे हैं।
0: अच्छा ठीक है,
1: अब मेरे लिए गाना चला दो।
0: अच्छा तो चला रही हो तो गुस्सा क्यों हो रही हो, आराम से गाओ ना।
1: हाँ तो गुस्सा तो होंगी ना, इतनी देर से मेरे ऊपर इल्जाम लगाया, थोड़ी झूठा इल्जाम मेरे ऊपर चांदी दी है।
0: अरे अरे बस बस बस बस बस, चला रही हो गाना, हद ही हो गई है।

आ गई हूँ मैं यहाँ पर, है ना, ज्यादा आ नहीं करना, बहुत हो गया। अब मेरे को यहाँ पर ब्रेक लेना पड़ेगा थोड़ा सा ना, बहुत हो गया, बहुत सारे गाने आपने सुन लिए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि दूर से आए हैं छोड़कर सारा काम, दूर से आए छोड़कर सारा काम।

हो जाए, लेकिन आप पहले ये जान लीजिए कि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 विद मी शालिनी और शो चल रहा है क्या क्या क्या क्या क्या दिल के तराने गाने ने पुराने। तो पुराना वाला गाना आए उससे पहले आप मेरी प्यारी प्यारी बातों के लिए अगर कोई मैसेज करना चाहते हैं ना तो 9868107070 इज द नंबर माय डियर्स। 9868107070 दोनों ही भाषाओं में मैंने बता दिया, जो आपको समझ में आए कर लीजिए वैसा। ठीक है, अगला वाला गाना आपके लिए।

अरे ऐसे कैसे चले जाने देंगे आपको? यहाँ पर इस तरह की बातें नहीं करते हम, सिर्फ मिलने जुलने की बातें करते, बिछड़ने की बातें बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे कहते हैं शालिनी और चैनल का नाम है आकाशवाणी रेनबो 102.6, और आपको क्या कहते हैं तो आपको पता ही होगा है कि नहीं? नहीं पता तो पूछ लीजिए अपने पेरेंट्स से, वो बता देंगे आपको। भूल जाते हैं कभी कभी अपना नाम, मैं तो बता रही हूँ, मेरे को तो इतने नामों से बुलाते हैं ना लोग कि शालिनी, शिवानी, वैशाली, मतलब ठीक है मैं भी इस बोलने देती हूँ, क्या ही फर्क पड़ता है ना, प्यार है। आप में से भी बहुत लोग जो हैं, कई बार कुछ लोगों को तो कंचन बोला था मुझे, मैंने रख लिया वो नाम, याद है मुझे। फिलहाल मेरी बात छोड़ते हैं, आपके लिए अगला वाला ट्रैक प्ले करते हैं। सुन रहे हैं आप दिल के तराने, गाने नहीं पुराने।

0: ही नहीं दूंगी।
1: आप कितना भी मांगिए, टिकट तो आपको अब नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मैं लेकर जा रही हूँ यहाँ से। थोड़ी देर में मैं आपको टाटा बाय बाय बोलने वाली हूँ, क्योंकि शो का टाइम जो है वो फिनिश हो चुका है, एज यू नो। झटका कुछ दिया ऐसा उन्होंने अपनी जुल्फों को, झटका कुछ ऐसा दिया उन्होंने अपनी जुल्फों को कि आधे से ज्यादा जुएं मेरे दामन में आ गई। ऐसा कौन मैसेज भेजता है? हाँ नहीं भेजता है ना, आप मैं क्या करूँ। मेरी दोस्त ने मुझे एक मैसेज फॉरवर्ड किया तो मुझे लगा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, पर मुझे क्या पता था ऐसा निकलेगा। खैर मुझे माफ़ कर दीजिए। चलते चलते मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ख्याल रखें तो गाना सुनी जाएं। स्टे ट्यून्ड, आप सुन रहे थे दिल की तरह गाने नए पुराने विद मी शालिनी ऑन आकाशवाणी रेनबो 102.6। डियरीज टेक केयर, शालिनी सेज टाटा।

नमस्कार, पेश हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीट और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से 8 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से शुरू होने वाले 5 दिन की घाना, कोटे डी आइवर और इथियोपिया की यात्रा पर हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज विशाखापत्तनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का शुभारंभ करेंगे और फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की आधारशिला रखेंगे। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपना समर्थन दोहराया। अफगानिस्तान के नागरिकों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बेनिन सिटी से लागोस जा रहे नाइजीरियाई सैन्य विमान के दुर्घटनाग्रस्त में मृतकों की संख्या बढ़कर 32 हुई। मृतकों में 25 यात्री और 7 चालक दल के सदस्य भी शामिल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनका व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान में हुए आतंकी हमले के लिए ईरान जिम्मेदार था। यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों को परिषद में सुधार किए जाने का आग्रह किया है। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज बढ़त के साथ खुला। फीफा अंतर्राष्ट्रीय मैत्री फुटबॉल मैच में भारत का सामना आज उरुग्वे से होगा। मुकाबला साल्ट लेक के युवा भारती क्रीडांगण में खेला जाएगा। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। ये थे FM रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार। स्टे ट्यून्ड फॉर बॉलीवुड रील्स।

बबीता त्रिपाठी की वाणी बीटी विद बीटी यानी बॉलीवुड रील्स बबीता त्रिपाठी के साथ और बॉलीवुड की ढेर सारी खबरों के साथ एक बार फिर से जब बबीता त्रिपाठी हाजिर हो गई है तो आपको पता है एंटरटेनमेंट होगा, धमाल होगा, मस्ती होगी और बवाल होगा। तो आप सब तैयार है ना इस शो में शामिल होने के लिए और बहुत सारे सरप्राइजेस भी आपके लिए होते हैं, आपके फेवरेट स्टार्स से जुड़े होते हैं, आपकी फेवरेट फिल्मों से जुड़े होते हैं और फिल्मों का पूरा अपडेट जो एकदम ताजा ताजा आप तक परोसा जाता है उसका तो मजा ही कुछ और है। तो है ना उन सब को ग्रहण करने के लिए तैयार, तो फटाफट लौट कर आते हैं और देखते हैं बॉक्स ऑफिस पर क्या चल रहा है।

देखिए जी, दिल तो धड़कने लग जाता है फिल्म मेकर्स का मंडे के दिन कि आखिर वीकेंड पे तो अच्छी कमाई कर ली, अब मंडे यानी मंडे टेस्ट में पास हो गई ना, तब समझ लो मूवी अच्छी चल रही है।

है या लोगों को पसंद आ रही है, और इसी का इंतजार था दृश्यम 3 को भी। लेकिन दृश्यम 3 ने बता दिया कि भैया उसकी तो जबरदस्त बल्ले बल्ले होने वाली है। कहने का तात्पर्य ये कि दृश्यम 3 की दृष्टि ना शनि की तीसरी दृष्टि निकली, जो बाकी की रफ्तार जहां भी पड़ती है ना उस धीमी कर देती है। और ऐसा ही कुछ हुआ, बाकी फिल्मों पर इसकी रफ्तार पड़ी, रफ्तार धीमी कर दी है। इस फिल्म ने इसकी तीसरी दृष्टि ऐसी बता रही है। और दृश्यम 3 ने जो जबरदस्त कमाई की है उसकी भी बात कर लेते हैं। वैसे शुरुआत तो हर मूवी जो बड़े बड़े स्टार्स वाली होती हैं अच्छी कर ही लेती हैं, लेकिन तब्बू और अजय देवगन की सबसे अच्छी फिल्मों में, सबसे सफल फ्रेंचाइजी फिल्मों में जिस तरह से इस फिल्म का पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, लग रहा है कि हो ही जाएगी। और दृश्यम 3 ने ओवरसीज मार्केट की बात करें तो 4 दिनों के अंदर ही बहुत ज़बरदस्त कमाई कर ली है, कुल 60 करोड़ रुपए कमा लिए। और वर्ल्ड वाइड कमाई जो जिस तरह से इसकी बढ़ती जा रही है, मतलब एक दिन की बात कर रही हूँ मैं, और अगर मंडे की बात छोड़ दें, पूरी कमाई की बात करें तो वो तो लगभग 300 करोड़ के ऊपर पहुंच चुकी है। और इस तरह से हनुमान अंश वगैरह की जो कमाई है ना, दी वन भी अच्छी चल रही है। हालांकि ये सब मूवीज़ अच्छी चल रही हैं जो बाकी की मूवीज़ हैं, लेकिन हाँ रफ्तार धीमी हो चुकी है। और बाकी की जो खबर है वो लास्ट तक पहुंच ही जाएगी आप तक, कि आखिर लास्ट तक इसकी परफॉर्मेंस किस तरह से निकल कर आती है। इस वीकेंड तक सब क्लियर हो जाएगा, और कितनी लंबी ये मूवी जाएगी वो देखने वाली बात होगी। हनुमान अंश की तरह लगभग 2 महीने अगर इसने बॉक्स ऑफिस पर या सिनेमा घरों पर टिक गई ना, तो बहुत बड़ी बात है।

वैसे आपको बता दूं कि आपको बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनना है, और आप कहीं ये ना भूल जाएं कि 11:30 बजे आपके लिए एक सवाल मैं लेकर आऊंगी, जिसका जवाब अगर आपने दे दिया तो आप बॉलीवुड सरताज बन सकते हैं। बॉलीवुड सरताज हमसे

बात करते हैं, हम आपको बात करने के लिए खुद फोन मिलाएंगे और आपसे बात करेंगे, आपकी आवाज सब तक पहुंच सकती है और आपसे जवाब ऑन एयर लेंगे। तो आप है ना तैयार, व्हाट्सएप मैसेज ही तो करना है और उसका जवाब दे देना है और जवाब ढूंढने भी कहीं नहीं जाना है। अगर आपने मेरी बातों को ध्यान से सुन लिया ना तो आपको जवाब पक्का पता होगा। तो बस जो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ बस उन बातों को ध्यान से सुनिए और इंजॉय करते रहिए। बीटी विद बीटी बॉलीवुड ट्रेल्स बबीता त्रिपाठी के साथ ओनली ऑन आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक।

देखिए जी, लक की अगर बात करें तो इस समय आलिया भट्ट का लक जबरदस्त चल रहा है भाई। संजय लीला भंसाली के साथ कोई मूवी करने की मतलब मौका मिले कोई मूवी करने का, ये ही अपने आप में बहुत बड़ी वाली बात होती है। लेकिन उनको तो एक नहीं, दो नहीं, अब तीसरी फिल्म में भी काम करने का मौका मिलने ही वाला है। आपको तो पता है ना कि नेशनल अवार्ड जीतने वाली मूवी कौन सी थी जो इन्होंने आलिया भट्ट ने की थी संजय लीला भंसाली के साथ, गंगूबाई काठियावाड़ी। यस, ये मूवी जिसके लिए इनको नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। अब संजय लीला भंसाली एक और मूवी बना ही रहे हैं। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, मूवी का नाम है लव एंड वॉर। अब बात नई क्या है, नई ये है कि जो मूवी इंशाअल्लाह जिसकी बहुत पहले अनाउंसमेंट हो चुकी थी, 2019 में ही इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है, और ये भी बात हुई थी कि सलमान खान इस मूवी में लीड रोल में नज़र आने वाले हैं, लेकिन अब ऐसी खबर आ रही है कि मूवी में सलमान खान लीड रोल में शायद नहीं होंगे, लेकिन मूवी ज़रूर बनेगी। थोड़े बहुत चेंजेस इस मूवी में ज़रूर किए गए हैं, लेकिन मूवी बन रही है और उस मूवी में आलिया भट्ट एक बार फिर से संजय लीला भंसाली के साथ नजर आएंगी। मतलब संजय लीला भंसाली की इस मूवी में भी आलिया भट्ट नजर आने वाली है। मूवी का नाम इंशाल्लाह अच्छा अच्छा काम नजर आएगा इनके साथ। और अभी लव एंड वॉर की बात करें तो अब प्रोसेस में है, इस मूवी को देखने के बाद आगे की जानकारी आपको दी जाएगी, जो भी लेटेस्ट जानकारी इंशाल्लाह के बारे में

ऐसा कुछ कह रहे हैं करण जौहर की दे दे चांस. वैसे उनको चांस कौन दे सकता है, वो खुद चांस लेते हैं और वो कुछ ऐसा ही चांस ले रहे हैं जो आजकल का ट्रेंड है. मतलब कोई भी महाकाव्य पर आधारित, कोई भी ऐसी किसी भी जो रियल हमारे हीरोज हुए हैं उन पर आधारित जो मूवीज बन रही हैं वो लोगों को बहुत भा रही हैं. और अब एक और ऐसी ही मूवी बनने के लिए बिल्कुल तैयार है. हनुमान आपने देखा और क्या ज़बरदस्त कमाई की. अभी हनुमान अंश हमने देखी, क्या ज़बरदस्त कमाई की. लेकिन पांडवों में से एक हमारे भीम के ऊपर जब मूवी बने तो भाई हम सब के जो प्रिय कैरेक्टर्स हैं इन पर जो मूवी बनती है वो लोगों को बहुत लुभाती है. ऐसा हमारे करण जौहर को भी मतलब लगेगा ऑब्वियसली कि लोगों की जो पसंद है उसका ध्यान शायद रखते हुए एक और इसी तरह की मूवी पर उन्होंने हामी भर दी है. और सुनने में आ रहा है, अभी उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि वो एक मूवी इस तरह की बनाने वाले हैं जो भीम पर आधारित होगी और फिल्म का नाम होगा गदाधारी भीम. और ये उनके प्रोडक्शन के बैनर के तले मूवी बनेगी. तो देखते हैं इस मूवी पर लोगों का रिएक्शन कैसा होता है. अभी तो फिलहाल अनाउंसमेंट ऑफिशियली नहीं हुई है, लेकिन अनाउंसमेंट होगी उसके बाद बाकी की जो अपडेट्स आएंगी वो आप तक पहुंच जाएंगी. आप बस ऐसे ही जुड़े रहिए आकाशवाणी रेनबो पर दिल से दिल तक. फिलहाल बॉलीवुड ट्रेल्स बबीता त्रिपाठी के साथ. तात्पर्य ये कि आप एंजॉय कर रहे हैं बीटी विद बीटी.

ये कहने का मतलब ये था मेरा कि अब्बास मस्तान ने एक नई मूवी की अनाउंसमेंट जो की है, जो लगभग बन भी गई है, और गांधी जयंती के मौके पर इसका जो थ्रिलर फिल्म है इसका इसकी अनाउंसमेंट हुई, और एक पोस्टर कह सकते हैं, मोशन पोस्टर उस तरह से जारी किया गया, और अब इस मूवी के बारे में थोड़ा बहुत आपको बता दिया जाता है, बता दूं जो बताया गया है। थ्री मंकीज़ मूवी का नाम है, और ये नए ज़माने के अमर अकबर और एंथनी के जो कैरेक्टर्स हैं ना, वो दिखाने वाले हैं, लेकिन नए ज़माने के माइंडसेट। और इस मोशन पोस्टर में और क्या देखने को मिल रहा है, विशाल जेठवा को अमर के रूप में, मुस्तफ़ा बर्मा वाला को अकबर, और तेनजिन डल्हा को एंथनी के तौर पर दिखाया गया है। और क्या समझदारी, तीन समझदार बंदर हैं जिनकी जानी पहचानी सोच जो है कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, इस पर आधारित है। लेकिन इसमें उन्होंने नए जमाने का तड़का क्या लगाया है जानते हैं, इसका उल्टा।

वो उन सब का मंत्र है, सब देखो अपनी सुनो बेखौफ बोलो। अब मूवी आएगी तब पता चलेगा कि आखिर इसमें इस बात में कितना दम है। और मूवी आएगी 4 दिसंबर 2026 को।

भैया, जब आपकी ही तारीफ ऐसा लगे कि हो रही है गाने के जरिए, तो आप इस गाने को कैसे ही हटा सकते हैं? ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ, इसलिए थोड़ा समय लेट हो गई आने में, तो माफी चाहती हूँ। लेकिन हाँ, आपको बता दूं कि सवाल लेकर जरूर आई हूँ। आप सब तैयार है ना व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए? अपना फोन उठा लीजिए, फटाफट मैसेज कीजिए, और सही जवाब अगर आपका हुआ तो बॉलीवुड सहताज आप बन सकते हैं। तो एकदम तैयार हो जाइए अपने किस्मत आजमाने के लिए, और नहीं तो आपके जवाब तो शामिल होंगे ही। जवाब का मतलब ये कि आपका नाम, आपके शहर का नाम। अगर जैसे मैंने कहा है कि सबसे पहले अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखना है, फिर आंसर लिखना है, अगर इस तरीके से आपने भेजा शॉर्ट में, तो आपका नाम जरूर शामिल होगा। और अब आते हैं सवाल पर। आज का सवाल ये है कि संजय लीला भंसाली और आलिया भट्ट की नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म का नाम क्या है? ये जवाब आपको लिखकर भेजना है, और अपना नाम, अपने शहर का नाम दोनों सबसे पहले लिखना है, और नंबर क्या है व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भेजना है। अब आते हैं नंबर पर, 9868107070, 9868107070। ये है हमारा व्हाट्सएप मैसेज करने का नंबर। आपके साथ हूँ मैं, बबिता त्रिपाठी। शो चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स। तात्पर्य ये कि बीटी विद बीटी का आनंद ले रहे हैं आप।

0: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
1: तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके

0: अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
2: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

यूं कि बॉम्बे तो मेरा शहर नहीं है, दिल्ली है, लेकिन कहर कुड़ी वाली बात मैं मान सकती हूँ। फिलहाल आपको बता दूं कि आपके लिए मैंने जो सवाल पूछा है आज बॉलीवुड सरताज के लिए, वो है कि संजय लीला भंसाली और आलिया भट्ट की नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म का नाम क्या है, जिसकी मैंने चर्चा कर ही दी थी, और अब आपको आंसर देना है व्हाट्सएप मैसेज के जरिए। ऑलरेडी इतने सारे आंसर्स आ गए हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको चांस दिया। चलो दिया, 9868107070 पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करके बताना है। सबसे पहले अपना नाम, अपने शहर का नाम, फिर आंसर लिखना है। इतनी सी बात ध्यान में अगर आपने रख दी तो क्या पता आप बॉलीवुड सरताज बने, और अगर नहीं भी बने तो आपका मैसेज तो जरूर शामिल होगा, आपका नाम जरूर शामिल होगा। फिलहाल आपको बता दूं कि जेलर 2 का ट्रेलर आ गया है, और इसमें कौन सी बड़ी बात है अगर आप ये कहना चाह रहे हैं तो भैया नेल्सन दिलीप कुमार का निर्देशन है और बड़े बड़े नाम है, बड़े बड़े नाम। और अगर आपने जेलर देखी है तो जेलर 2 के लिए तो एक्साइटेड ऑलरेडी होंगे। सुपर स्टार रजनीकांत एक बार फिर से अपने स्टाइल में इसमें ज़बरदस्त एक्शन दिखाने वाले हैं, और इसके बाद तो एक्साइटमेंट मेरी भी ख़ास तौर से इस बात के लिए है कि इनका रिश्ता क्या कहलाता है विद्या बालन के साथ इस फिल्म में, क्योंकि विद्या बालन का भी अवतार एकदम शानदार वाला दिख रहा है इसमें, और रजनीकांत के साथ ये किस तरह का कैरेक्टर एक साथ दोनों निभाएंगे, ये एक्साइटमेंट वाली बात होगी। अभी फिलहाल सस्पेंस है, बोल्ड और असरदार लुक दिखाई दे रहा है, छोटे हेयर स्टाइल दिख रहे हैं, डार्क स्टाइलिंग दिख रही है, और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस दिख रहा है किरदार कांता यानी कि विद्या बालन का। और इस तरह से हम देखेंगे, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है, 14 अक्टूबर को, कि ये क्या ऊ लाला करने वाली हैं स्क्रीन पर। और रही बात रजनीकांत की, तो उनके बारे में क्या ही बताऊँ, उनका अपना एक अलग अंदाज़ है जिसके लिए

बॉलीवुड ट्रेल्स आप सुन रहे हैं बबीता त्रिपाठी के साथ, और अब वो वक्त आ गया है जब आप सबके मैसेजेस शामिल हो ही जाने चाहिए, क्योंकि समय यही कह रहा है कि बहुत ज़्यादा हम बचे तो है नहीं, अगर इस्तेमाल करना है तो कर लीजिए, तो हम तो बिल्कुल जाने नहीं देंगे। तो चलिए सूरजकुंड रोड मेरठ से तरुण कोहली के मैसेज से शुरुआत करते हैं, जो गलत जवाब के साथ आया है। कोई बात नहीं, कभी कभार ऐसा भी होना चाहिए। सूरज आपने लगता है, तरुण जी आपने शायद सुना नहीं ध्यान से, हमने सवाल क्या पूछा था ये आपको समझ नहीं आया। ऐसा तो हम मान ही नहीं सकते कि आपको आता नहीं है, आप बहुत ध्यान से सुनते हैं, लेकिन कुछ तो चूक हुई है, हो जाता है। सलीम मलिक मेरठ से लिख रहे हैं और इन्होंने भी गलत जवाब दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, ये दोनों भाई मिले हुए हैं लगता है। शिव मेरठ से लिख रहे हैं और इन्होंने सही जवाब दिया है, ये मेरठ वाले अलग कहीं रहते हैं। और हरीश गौर भी सही जवाब के साथ ही मैसेज कर रहे हैं। पूजा और कोमल का भी मैसेज कहाँ से आया है नहीं दिख रहा है। कंचन सोनिया विहार से, बसंत तोमर मेरठ से, और ये सब जवाब सही दिख रहे हैं अभी। पंकज अमरावती महाराष्ट्र से सही जवाब, प्रवीण चौहान मध्य प्रदेश से लिख रहे हैं, और धर्म भाटिया का भी मैसेज दिख रहा है सही जवाब के साथ। और हाँ, अब जवाब मैंने इनका नहीं देखा, जो अभी स्क्रीन पर दिख रहा है ना, उससे मैंने राइटिंग समझ ली कि इनका ही मैसेज है, और राइटिंग समझ के मैंने ये समझ लिया कि ये मिसेस धर्म भाटिया रोहतक वाली बोल रही हैं। शंकर गोवा पंजिम से लिख रहे हैं, और एक जवाब जो बहुत ही अल्टीमेट आया है वो ये कि मुझे बॉलीवुड के सवाल कठिन लगते हैं।

एजुकेशन एग्जाम में चाहे पढ़ा हुआ ना भी आए तो कुछ तो लिख कर आती थी, यहाँ तो कुछ भी नहीं लिख सकते। डॉली मेरी बहन, कहाँ थी तुम? मैं भी कुछ ऐसा ही महसूस करती हूँ। ये जो ना जो सवाल पूछती हूँ ना, ये मैं बदला निकालती हूँ, जो मैं लिख नहीं पाई पहले वो अब मैं ऐसा ही आप लोगों के साथ करना चाह रही हूँ कि आप भी कुछ ना लिख पाएं। आगे बढ़ते हैं। शंकर गोवा पंजिम से लिख रहे हैं और सेलिन का सेलिने नाम है शायद, मुंबई से लिख रही हैं। अफरोज नेमुआ सुपौल बिहार से लिख रहे हैं, सही जवाब ज़्यादातर लोगों के हैं। राजकुमार के संतानी महाराष्ट्र से लिख रहे हैं और अगला जवाब भी लंबा सा है और शायद नाम नहीं लिखा क्या, पवन है चंबल से। और अगला मैसेज किसका है भाई, गांव खेड़की जिला बिजनौर से दिव्यांशु यादव का। इतना लंबा मैसेज क्यों करते हैं भाई। नेक्स्ट मैसेज भी अपना नाम पहले नहीं लिखा ऋचा दत्त ने, इनको हम कोशिश करेंगे चंडीगढ़ वाली ऋचा को समझाएं कि देखिए ऐसा नहीं करते हैं, जैसा कहा जाए वैसा फॉलो किया करिए तो आपका नाम फटाफट आ जाएगा। अनिल शाह का भी मैसेज दिख रहा है मुझे और ये उत्तम नगर से लिख रहे हैं। और भी मैसेजेस हैं लेकिन आप क्या करते हैं। सुदर्शन मुखी अनिता मुखी भी लिख रही हैं, मैं चाहती हूँ कोई भी मैसेज मतलब मिस ना हो लेकिन आप सब क्या करते हैं, फॉलो नहीं करते। सबसे पहले रूल्स फॉलो करिए, सबसे पहले अपना नाम अपने शहर का नाम, देखिए हमारा कंप्यूटर फटाफट दिखाएगा। जुल्फिकार आलम का भी मैसेज बिहार से, रिशु कटारिया पवन कटारिया पंजाब से, मेरठ से भी एक मैसेज आया किसका, अपना नाम पहले लिख दिया, ज्यादा ही पहले लिख लिया, अलग अलग लिख दिया। खान आबिद का मैसेज है, मोहम्मद फुरकान का भी मैसेज आ रहा है और ये सियाल से है। और अगला मैसेज किसका है ये नहीं दिख रहा है आपने, उमेश कुमार खयाला से। उमेश कुमार बार बार ये गलती कर रहे हैं, आप अपना नाम अपने शहर का नाम सबसे पहले क्यों नहीं लिख रहे हैं। कोई बात नहीं, माफ किया, हमने भी पॉसिबिलिटी जितनी होती है पढ़ने की कोशिश की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं बॉलीवुड सरताज बनता कौन है इस गाने के बाद।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: पार्टी शुरू हो रही है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

0: आप सबका इंतजार हुआ खत्म। हमारे साथ हैं आज की बॉलीवुड सरताज और वो क्या कह रही हैं, चलिए उनसे सुनते हैं। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी सोनिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आकर।
1: जी मैम, मेरा नाम कंचन सोनिया विहार दिल्ली से।
0: अच्छा आपका नाम सोनिया नहीं है, आपका नाम कंचन है सोनिया
1: जी? जी मैम, हाँ मैं सोनिया विहार से बोल रही
0: हूँ। ओके बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी रेनबो पर।
1: थैंक यू मैम।
0: कंचन थोड़ा सा अपने बारे में बता दो, हमारे पास टाइम है।
1: जी मैम, मैं एफएम रेनबो बहुत बहुत ज्यादा सुनती हूँ और सारा दिन सुनती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते है, कोई भी प्रोग्राम मैं मिस नहीं करती हूँ।
0: और हमें ऐसे लिसनर्स बहुत पसंद है जो आकाशवाणी रेनबो सुनते रहते हैं।
1: थैंक यू मैम। मैं घर में हाउस वाइफ सारा, बस घर में ही रहती हूँ मैं, ये एक मिनट का मिस नहीं करती हूँ कोई सा भी प्रोग्राम, सुबह उठते ही बटन चालू कर देती हूँ सारा दिन।
0: क्या है आकाशवाणी रेनबो पर ये भी तो बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको बांधे रखती है?
1: पता नहीं लेकिन बहुत अच्छा लगता है, बहुत मैं दूसरों को भी बताती हूँ, यार सुनो तुम्हें अच्छा लगेगा, एक दिन सुनोगे दूसरे दिन छोड़ोगे ही नहीं, कोई मानता नहीं भाई।
0: क्या बात है,
1: सबके अपने अपने चॉइस होते हैं।
0: बिल्कुल, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब आंसर ले लेते हैं, नहीं तो सब लोग कहेंगे ना कि पता नहीं किसको बना दिया, पता नहीं आंसर आता भी था कि नहीं आता था। तो मैंने पूछा था संजय लीला भंसाली और आलिया भट्ट की नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म का नाम क्या है, उसका आंसर आप बताइए ऑन एयर।
1: जी मैम, गंगूबाई काठिया वाली।
0: बिल्कुल सही जवाब। और इसी के साथ आज बनी है कंचन सोनिया विहार वाली बॉलीवुड सरताज, बहुत बहुत मुबारक आपको।
1: थैंक यू मैम।
0: तो चलिए कंचन, इसी तरह से हमारा आकाशवाणी रेनबो सुनते रहिए और लोगों को भी बताते रहिए कि वो भी सुने, उनके बहुत काम आए।
1: जी मैम, बहुत लोगों को कहती हूँ तुम यार सुना करो, तुम्हें सब कुछ छोड़ देना चाहिए, बस इससे ध्यान रखो, तुम्हें खुद खुद अपने आप को इतना खुशी मिलेगी कि कहीं और कुछ जाने की जरूरत नहीं।
0: और सोनिया विहार वाले सारे खुश हो जाएंगे कंचन की तरह एकदम।
1: मेरे घर में सारा दिन चलता रहता है, मेरा लड़का कहता है मम्मी तुम तो पागल हो जाओगी।
0: देखिए अभी तक तो आप हुई नहीं है और मैं भी नहीं हूँ, इसका मतलब
1: नहीं,
0: ये है कि कुछ तो बात है।
1: पागल नहीं बल्कि पागल वाले तो अच्छे ही हो जाते हैं, बहुत अच्छे हो जाएंगे।
0: थैंक यू सो मच, इसी तरह से ये खुशियाँ बांटते रहिए। थैंक यू कंचन हमसे बात करने के लिए, बाय
1: बाय मैडम।
0: और इसी के साथ मुझे यानी बबीता त्रिपाठी को भी दीजिए इजाजत, जल्दी मिलूंगी, आप सुनते रहिए इसी तरह से कंचन की तरह आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक। फिलहाल बबीता त्रिपाठी सेज टाटा बाय बाय, टेक केयर।

नमस्कार, एट 12 नून द न्यूज हेडलाइंस ऑन आकाशवाणी रेनबो। पोलिंग अंडर वे फॉर बाय इलेक्शंस टू 5 असेंबली कंस्टिट्युएंसीज इन तमिलनाडु, पुडुचेरी एंड वेस्ट बंगाल एंड लोन लोकसभा सीट इन असम। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉ एस जयशंकर बिगिंस 5-डे विजिट टू घाना, कोत द'आइवोर एंड इथियोपिया। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लॉन्चेस फ्लीट सपोर्ट शिप 1 एंड ले कील फॉर फ्लीट सपोर्ट शिप 5 एट हिंदुस्तान शिपयार्ड इन विशाखापट्टनम। ई संजीवनी क्रॉसेस 50 करोड़ टेलीकंसल्टेशंस, मार्किंग अ मेजर माइलस्टोन इन इंडियाज डिजिटल हेल्थ केयर इनिशिएटिव। Yemeni government forces launch counter-offensive against Houthis near Bab al-Mandeb Strait. The death toll rises to 32 after Nigerian military plane crashes while flying from Benin City to Lagos. India reiterates support for Afghanistan's sovereignty, unity and territorial integrity at Moscow format consultations. Carl Deseroth, Peter Hegeman and George Nagel awarded Nobel Prize in Medicine for research in brain activity. From the sports desk, India West Indies begin 5-match T20 international series in Lucknow today. Kickoff at 7 p.m. Indian Standard Time. And finally, India to take on Uruguay in FIFA International Friendly match at Yuva Bharti Krirangan, Kolkata today. Those were the news headlines. Remain tuned in for the next show.

0: Wet, wet, wet there with love is all around. Yes, love is all around. And come on and let it show. Let it show through your messages. Already have quite a few ones waiting to be read out. And today the topic is Inbox Zero Day. Indu has sent in some information about that. But I will take up that message and the rest of them, of course. Please allow me to take an itsy-bitsy little break.
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

नमस्कार, पेश है इस घंटे के मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीट और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से 8 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से शुरू होने वाले 5 दिन की घाना, कोटे डी आइवर और इथियोपिया की यात्रा पर हैं। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपना समर्थन दोहराया। अफगानिस्तान के नागरिकों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बेनिन सिटी से लागोस जा रहे नाइजीरियाई सैन्य विमान के दुर्घटनाग्रस्त में मृतकों की संख्या बढ़कर 32 हुई। मृतकों में 25 यात्री और 7 चालक दल के सदस्य भी शामिल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनका व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान में हुए आतंकी हमले के लिए ईरान जिम्मेदार था। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। ये थे FM रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: श्रोताओ, रेनबो हेल्पलाइन का आज का अंक सजीव नहीं है, ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप तमाम श्रोताओं का प्रोग्राम रेनबो हेल्पलाइन में। इस प्रोग्राम में हमारे साथ होते हैं एक एक्सपर्ट स्टूडियो में और हम आपके प्रश्न, आपके मैसेजेस उन तक पहुंचाते हैं आपके जवाब लेने के लिए। आज के इस प्रोग्राम में जो हमारा आज का विषय है वो है एंगर मैनेजमेंट, क्रोध प्रबंधन। क्रोध एक प्राकृतिक भावना है जो हर किसी को प्रभावित तो करती है, अब इसका प्रबंधन आप कैसे कर सकते हैं ये भी जानना जरूरी है। तो बस हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है जाने माने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर अरुणा प्रूटा को। बस इस गाने के बाद हम होंगे रूबरू।

0: बार फिर आप सबका स्वागत है। प्रोग्राम है रेनबो हेल्पलाइन और हेल्पलाइन में हमारा आज का विषय है एंगर मैनेज, क्रोध प्रबंधन। और हमारे साथ है आपकी जानी मानी, बहुत परिचित और बहुत अजीज डॉक्टर अरुणा बूटा। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है अरुणा जी।
1: पहले तो आपको नमस्कार, फिर सब सुनने वालों को हाथ जोड़ के नमस्कार। और टॉपिक आज का बहुत अच्छा है क्योंकि शायद कोई ही ऐसा होगा जिसको गुस्सा नहीं आता,
0: चाहे वो किसी भी उम्र का क्यों ना हो।
1: राइट। तो इसकी चर्चा करना बहुत लाजमी है। और आप देखिए कि सड़क पे गुस्सा जरा सी लग गई और बस मुंह तोड़ एक होने वाला है और सारा ट्रैफिक बंद, जैसे कि आज मेरे साथ हुआ।
0: ओह माय गॉड।
1: राइट। रियली मैं टाइम पर पहुंची नहीं तो मैं लेट हो जाती। और घर में बच्चों का गुस्सा आपस में और मम्मी पापा का गुस्सा आपस में,
0: कॉलेजेस में स्कूल्स में
1: टीचरों का गुस्सा, प्रिंसिपल का गुस्सा, हेडमिस्ट्रेस का गुस्सा, लेकिन याद रहे चौकीदारों का गुस्सा, मालियों का आपस में गुस्सा और बच्चे
0: नहीं
1: छोड़ूंगी, पर बच्चे जो हैं वो आपस में मारा पीटी, वो गुस्सा, क्रूरता। और ऑफिस में तो देखिए शायद चांटे न लगे हों लेकिन गाली गलौज तो हुआ है और पूरा ऑफिस पॉलिटिक्स जो है वो गुस्से पे ही बेस्ड होता है। चुगली करनी, खुराफाती रहना, एक दूसरे को भड़का के रखना। राइट। सो आज का टॉपिक तो प्रोड्यूसर मैम को थैंक यू करने वाला टॉपिक है। कितना मीनिंगफुल टॉपिक है। और दूसरा, एक बार नहीं, ये तो बार बार हमें अपने आप को, औरों को रिमाइंडर देना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, हम इतना अपने अंदर उबल क्यों रहे हैं, ये बहुत आवश्यक है।
0: तो क्या है, सबसे पहले तो यही बताइए कि गुस्सा क्या है।
1: अच्छा, इसका एक शारीरिक कारण जो मैं आपको बताती हूँ, कारण तो नहीं बट व्हाट शुड आई से, अवस्था। राइट। क्या होता है, आपके पास दो तरह के नर्वस सिस्टम है। एक तो आपका मस्तिष्क है, ब्रेन है, जहाँ पे सारा लॉजिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग और समझदारी, लेन देन, रियलिटी अराउंड यू, अब लेफ्ट जाना है, अब राइट जाना है, अब सीधा जाना है, जो कुछ भी है, अब बच्चों को होमवर्क कराना है, अब ऑफिस का काम करना है, सब सोच समझ के सहजता से जो आप करते हैं। और एक है लोअर नर्वस सिस्टम, जिसे टेक्निकली हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसके भी दो भाग हैं। एक भाग ऐसा है जो वॉलंटरी नहीं, इनवॉलंटरी एक्टिविटीज में, जैसे आपकी हार्ट बीट है तो वो चलती रहती है आप चाहें या ना चाहें, पर जब तक ईश्वर जी चाहें तब तक वो चलती रहती है। लेकिन एक हिस्सा इस लोअर नर्वस सिस्टम का, यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, ऐसा है जिसे हम सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। और ये सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम आपको उत्तेजित करता है और आप जानते हुए भी अनजान बनते हैं कि दिल और दिमाग और सोच, ईगो, ये सब इकट्ठे चलते हैं। जहां आपका अहम हर्ट हो गया, चोट लग गई अहम को, उसने मेरे साथ ऐसे क्यों बात की, उसने मेरी बेइज्जती कर दी, मैं देखूंगा क्या होता है, ये सारे विचारधारा में चल रहा होता है, तो जो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम है, लोअर सिस्टम का, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा जो है, फिर ये ट्रिगर पॉइंट शारीरिक परिवर्तनों में करता है। यानी जब आपको गुस्सा आएगा आपकी आंखें बड़ी हो जाएंगी, लाल हो जाएंगी, खवार हो जाएगी, आवाज ऊंची हो जाएगी, दिल की धड़कन तेज हो जाएगी और आप कई बार बहुत तेज बोलेंगे और कई बार लड़खड़ाने लगेंगे, स्टैमर करने लग जाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग तेज चल रहा है पर आपकी भाषा उतनी तेज नहीं चल पाती, इसीलिए आप उस समय आवाज पर नियंत्रण नहीं रख पाते और भाषा पे नियंत्रण नहीं रख पाते। कई बार शब्द इतने आ रहे होते हैं पर आप करते हो आ, आ, आ, इस तरह से आप लड़खड़ाने लगते हो। तो ये सब जो है ये गुस्से के चिन्ह होते हैं कि आपका जो मस्तिष्क है, हायर नर्वस सिस्टम, वो धीमा पड़ रहा है और आपका जो सिंपथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, लोअर नर्वस सिस्टम, वो आप पे हावी हो रहा है। अक्सर आपने सुना होगा कई बार लोगों को कहते हैं, यार मुझे पता था मैं गलत बोल रहा हूँ, मुझे पता था मैं कुछ गलत अनाप शनाप बोल रहा हूँ, पर मैं बोलता ही चला गया, मेरे पे काबू नहीं रहा। किस पे काबू नहीं रहा? नर्वस सिस्टम, हायर नर्वस सिस्टम पे काबू नहीं रहा। और आपकी खून की धारा शरीर के अंदर तेज तेज चल रही है, आपके हाथ कांप रहे हैं और बहुत कुछ हो रहा है। कईयों का ब्लड प्रेशर लो हो जाए तो वो बेहोश हो जाते हैं, और कईयों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो फिर आंखें भी लाल होने लगती हैं। सो आप देखेंगे कि ये सड़कों पे होता है, ऑफिसेज में होता है, स्कूलों पे होता है, पार्क में होता है, घरों में तो बहुत ज्यादा होता है। सो सास बहू, दोनों भाई, बहनें, मदर फादर, मदर डॉटर, मदर सन, माँ बेटा, माँ बेटी, बहन भाई, भाई भाई, ये हर तरफ आप क्रोध ही क्रोध देखेंगे। अब ये आपको सोचना है कि क्या करना चाहिए, क्या हमें ऐसे ही रहना चाहिए।
0: हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं अरुणा जी, और फोन कॉल्स भी आ रहे हैं। पहले लिसनर को ले लेते हैं। हेलो, हेलो जी, अपना नाम बताएं।
2: नमस्ते,
1: नमस्ते बेटा,
2: मैं दीवांशु यादव बात कर रहा हूँ।
0: जी दीवांशु, क्या सवाल है आपका?
2: मैडम, मैं मन में थोड़ा अशांति रहती है और मैं गुस्सा भी कर लेता हूँ, कोई इधर उधर की बातें सोचता हूँ, मतलब जो
0: उधर उधर की बातें,
2: मैं बहम बहुत रहता।
1: इन्होंने बहुत सारे और भी अपने सिम्टम्स बताए, बिहेवियर पैटर्न्स बताए, यानी कि मैं वहम भी करता हूँ। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था। वहम जिसे हम कहते हैं ऑब्सेशन, जैसे कि एक बात दोहराते हैं, बार बार दिमाग में आती है, कैसे मैंने ताला लगाया था या नहीं लगाया था, मैंने मम्मी को ये बात बताई थी कि नहीं बताई थी, मैं दोबारा बताता हूँ, तिबारा बताता हूँ, मैंने गैस बंद करी थी कि नहीं तो मैं दोबारा चेक करता हूँ। तो ये चेकर्स होते हैं, तो वो बार बार करते हैं। अगर इन्हें रोकने की कोशिश करो तो इन्हें बहुत क्रोध आता है, बहुत गुस्सा आता है। ये गुस्सा एक अलग तरह का है। एक गुस्सा है कि आपने मुझे ये कैसे कह दिया, यानी कि मेरी ईगो, मेरे अहम को ठेस पहुंची है, आपने कैसे मुझे इतनी चोट दी, आपकी हिम्मत कैसे पड़ी मेरे जैसे आदमी

0: को ये सब कहने की, क्या बोल रहा है आपका अहम, बोल रहा है क्या, बोल रहा है आप इनसिक्योर हो रहे हैं, क्यों इनसिक्योर हो रहे हैं कि आप की इज्जत घट गई है और आप इतनी जल्दी तूफान में आ जाते हैं जैसे कि पता नहीं भूचाल आ गया है और आप हिल गए हैं, गिरने वाले हैं, तो आप क्रोध से वार करते हैं। अब कुछ लोग वार करते हैं औरों को मारते हैं, कुछ लोग वार करते हैं अपने को, सेल्फ हार्म, अपने को चोट पहुंचाते हैं, सिर पटक लिया दीवार पे, पैर बड़ी जोर जोर से पटके नीचे जमीन पे, अपने को चोट पहुंचाई। कुछ तो ऐसे भी बच्चे हैं, बड़े हैं, जो अपनी नस काट लेते हैं गुस्से में, तो नुकसान किसका है, आपका ना दिवांशु? यही हो कि नहीं, मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं दिवांशु? नहीं तो वो कट गया। पर मैं बताना चाहती हूँ कि ये दिवांशु की हो सकता है मनोस्थिति हो, लेकिन ये भी लगता है ऐसे लोग दिवांशु जैसे सेंसिटिव बहुत होते हैं, कोमल हृदय के होते हैं, और उनका जो एक अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट है, अपने बारे में सोचना, उसमें हीनता बहुत कूट कूट के भरी हुई है। अदरवाइज आप इतनी जल्दी क्रोध में क्यों आते हैं, ये तो पहले पूछने वाली बात है। सो मेरे पॉइंट्स क्या निकल के आए, अहम को दृढ़ करना एक तरीका है, सैर करना, प्राणायाम करना, नियम से काम करना, ये नहीं कि रात को जागे तो जागते ही रहे और सुबह उठे तो लेट उठे, फिर आप चाहते हो कि आपके लिए सड़कें खाली हो तो फिर आप सबको हॉर्न देते, गाली देते, एक्सीडेंट भी कर सकते हो, कोई दूसरा भी गुस्से में भी मार सकता है, अचानक भी लग सकती है। तो टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत अनिवार्य होता है, और ये होना कि मैं अपने शरीर में सैर करने के साथ अपने अंदर एंडोर्फिन्स पैदा करता हूँ, यानी कि ये वो हार्मोन्स हैं जिन्हें हम हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं। दिखा आपको तो सब कुछ पता है, फिर मेरे को पूछ
1: आपके साथ प्रोग्राम करती रहती हूँ ना।
0: सो ये हैप्पी हार्मोन्स होने जरूरी हैं। अब कई बार मुझे लोग कहते हैं बारिश थी मैं नहीं गया, दूसरे दिन भी बारिश थी मैं नहीं गया, तीसरे दिन कीचड़ बहुत था, चौथे दिन मच्छर बहुत थे, तो फिर मुझे मलेरिया हो जाएगा, मुझे ये हो जाएगा। मैं कहती हूँ किसने कहा कि भाई बाहर जाओ सैर करने बारिशों में? मैं कहती हूँ घड़ी देख लो, कमरे कमरे कमरे कमरे, छत छत, बैल्कनी बैल्कनी, जो भी अवस्था आपकी है या व्यवस्थाएं हैं उसका फायदा उठाओ। कौन से बाहर सैर करने जा रहे हो पोल्यूशन में? तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आप पंखे चला के कमरे टू कमरे सैर करें। अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है तो आप 20 मिनट की सैर से स्टार्ट करें, क्योंकि आपका वजन आपकी कमर और आपके घुटनों को तंग करता है, इसलिए धीरे धीरे हम उसका समय बढ़ाएंगे, पर पहले 20 मिनट सुबह, 20 मिनट रात को, 10 मिनट खाना खाने के बाद टहलना दो हफ्ते के लिए। दो हफ्ते के बाद आप ये वॉक 30 पे करिए, फिर और दो हफ्ते के बाद 40 मिनट करिए, 40 मिनट सुबह, 40 मिनट शाम को, 20 मिनट खाना खाने के बाद। तो उसके बाद आप किसी भी वक्त दिन चुनकर प्राणायाम करें, आप में बहुत सहजता आएगी, धैर्य आएगा, सेल्फ कंट्रोल आएगा, सो आप अपने आप को बहुत खुश मिजाज होते होते देखेंगे।
1: बहुत बढ़िया, चलिए हम यहाँ पर लेते हैं ब्रेक, आप जुड़े रहिए एफएम रेनबो के साथ।

0: हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हेलो
1: हेलो
0: जी, एसपी वोरा आपने अपना?
1: एसके वोरा।
0: एसके वोरा जी, क्या सवाल है आपका?
1: मेरा प्रश्न ये है कि मैम कि जब कोई झूठ पोस्ट तो वो पकड़ा जाता है, लेकिन वो अपनी गलती नहीं मानता, उसको जस्टिफाई करता है, तो मेरा गुस्सा।
2: पहले मुझे बताओ कि अगर वो अपना झूठ पहली बार में मान जाए तो क्या महसूस होगा? क्या तब गुस्सा नहीं आएगा?
1: नहीं, तब मैं कहता ठीक है, बात खत्म।
2: आप कर देते हो बात खत्म?
1: बिल्कुल, मैं कहता तुम अपनी गलती मान लो। हाँ, मैंने।
2: और अगर वो सेल्फ डिफेंस में एक झूठ बोलता है, फिर दूसरा झूठ बोलता है, फिर तीसरा झूठ बोलता है, फिर आपको जो गुस्सा आता है वो किस हद तक गुस्सा जाता है?
1: मैडम, मैं फिर क्या है कि मैं बोलना बंद कर देता हूँ।
2: सो इसको कहते हैं एंगर इन, आप अंदर डालते हैं सब प्रॉब्लम्स अपनी। तो ऐसा मत करिएगा, क्योंकि इससे सेहत खराब होती है। आप दुख ही दुख पिए जा रहे हो और दुश्मनी दिल में रख रहे हो, बाहर नहीं दिखा रहे हो। बोलना बंद करने का मतलब क्या कि अंदर जो कुछ भी आपके जो समुन्द्र में जो तूफान उठ रहा है उसको आप दिखा नहीं रहे हो, है ना? तो ये भी हानिकारक है, इससे सेहत खराब होती है।

0: ब्लड प्रेशर चेंजेस आने लगते हैं, पेट खराब होने लगता है, कई बार सिर दर्द होने लगती है। सो बेहतर ये है कि अगर वो नहीं मानता तो उस समय उसे छोड़ दो, लेकिन कागज पे अपनी डायरी पे लिखो कि उसका झूठ मुझे बुरा क्यों लगा, क्या ये मेरे अहम पर ठेस दे रहा था, क्या मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हूं वो फिर भी मुझे बेवकूफ बनाना चाहता था, मैं बेवकूफ नहीं बनना चाहता क्योंकि बचपन में किसी ने मेरा बहुत उल्लू बनाया और वो अब तक चोट मेरे दिल में है। ये डायरी में लिखने की कोशिश करो, क्योंकि कई बार चेतन मन से बचपन के हादसे जो होते हैं वो निकल जाते हैं और वो अवचेतन मन में रहते हैं, और अवचेतन मन से जो कुंठा उठती है वो क्रोध को बढ़ाती है, और जब बढ़ाती है तो दो ही तरीके होते हैं, या तो आप उसका सिर फोड़ लो या अपना फोड़ लो या चुप कर जाओ। तो चुप करने से आपका स्वास्थ्य खराब होगा। बेहतर ये है जब क्रोध आने को करे आप पूरा ग्लास पानी का पियो। वी से वी इरिगेट द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। आप पूरा ग्लास पानी का पियो, उसके बाद आप कोई मोटा टॉफी, मोटी जो सख्त हो जैसे पोलो होती है, उसको मुंह में रखें और उसे चबाएं, चूसे नहीं, और उसके बाद आप वॉशरूम जाएं और यूरिन पास करें, फिर वापस आएं। अब सोचिए क्या करना चाहिए और एक कागज पे लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए। रखना है तो रख लीजिए, फाड़ना है तो फाड़ दीजिए, लेकिन अब अपने मन की भड़ास निकालेंगे। उससे क्या होगा, आपका मन हल्का हो जाएगा और दूसरे से आपके रिश्ते भी खराब नहीं होंगे, क्योंकि इस तरह के झूठ तो दफ्तरों में आम बोले जाते हैं, आपके खिलाफ किसी और को, किसी और के खिलाफ किसी और को, और वो नेटवर्क एक बनता रहता है, उधेड़ बुन, और सबकी ईगोज जो हैं वो डगमगाने लगती हैं। तो अपने को आराम दें, पहले इन स्टेप्स को चलाएं, और याद रखें, मैं बार बार प्रोग्राम में बोलूंगी कि प्राणायाम बहुत जरूरी है। ओके, चलिए, गॉड ब्लेस यू।
1: अंकित का कटक से मैसेज आया हुआ है। डॉक्टर अरुणा, आई गेट वेरी एजिटेटेड व्हेन द एक्सटर्नल सिचुएशंस एंड सर्कमस्टेंसेस आर नॉट अकॉर्डिंग टू माय लाइकिंग। आई लूज माय कूल एंड बिकम फ्रस्ट्रेटेड एंड अनस्टेबल। व्हाट्स द सॉल्यूशन?
0: वाह अंकित, ब्यूटीफुल। पहले मुझे बताओ कि अगर आप सिचुएशन को लाइक नहीं करते और वो आपके लाइक्स के अनुकूल सिचुएशन जो है आपके हाथ में नहीं रहती और आपके हाथ से सिचुएशन निकलती जा रही है, गुस्सा आता है, भाई एक बात बताओ, दुनिया क्या आपके हिसाब से चलेगी हमेशा? ऐसा तो नहीं होता है। मैं कई बार सोचती हूँ आज ये करूंगी, ये करूंगी, ये करूंगी, फिर बच्चे ऐसा तंग करेंगे कि वो होता ही नहीं है, तो क्या मैं बच्चों पे गुस्सा उतारूं या मारूं, कूटूं, पीटूं, क्या करूं? कोई काम करने वाला घर पे नहीं आ पहुंचा वक्त पे, तो वातावरण मेरे अनुकूल नहीं है, मेरे सारे प्रोग्राम खराब हो गए, तो क्या क्रोध करने से ठीक हो जाएगा? सो अंकित, 10 बार अपने आप को समझाना, हर समय वातावरण अपने अनुकूल नहीं चलता, ये बहुत जरूरी है समझना। दूसरी बात, क्या पता और लोग चाहते हैं कि वातावरण उनके अनुकूल चले और आप नहीं चला रहे हो, उन्हें भी क्रोध आता होगा आप पर। पहली बात, क्षमा करना सीखो। क्षमा करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए नहीं कि आप किसी पर एहसान कर रहे हो क्षमा करके, आप अपनी जो एक आत्मा है उसको शांत कर रहे हो, आप अपने दिल को शांत कर रहे हो, आप अपने दिमाग को शांत कर रहे हो, आप अपनी रूह को शांत कर रहे हो। नोट करो, जब गुस्सा आता है तो क्या होता है, सारा सारा दिन आप सड़ते कुड़ते रहते हो, कोई अच्छी चीज खाने को मिले उसको भी आप इंजॉय नहीं कर पाते हो, आप कहते हो उफ़ो खा तो रहा हूं लेकिन दिल करता है, ऐसे होता है। तो पहले क्षमा, प्राणायाम, पानी, सैर, ऊपर नीचे कमरे में थोड़ा टहलो और लिखो। तो ये याद रखना, मूल बात आपके केस में, मैं वातावरण को नहीं चलाता, मैं कोशिश करता हूं।

0: वातावरण हरा भरा रहे, चाहे पौधों से, चाहे मेरे पॉजिटिविटी से, मेरे खुश ख्यालों से, लेकिन हर बार वो काम नहीं होता। दूसरा आदमी जो है वो बवाल इकट्ठा करता है, दूसरा आदमी आपको गिराना चाहता है, वो आपको मीटिंग्स में ताने मारता है, घर आए तो पत्नी ने ताने मारे या टीचर ने, जो भी आपकी उम्र है अंकित। तो ये सोचना, दूसरों को भी क्रोध आता है, सिर्फ मुझे नहीं। मैं क्यों सफर करूं, मैं क्यों अपना नुकसान करूं, मैं क्यों अपना ब्लड प्रेशर या बहुत लो या बहुत हाई करूं, मैं तो अनुकूल रहूंगा, बैलेंस्ड रहूंगा। तो क्या करना है मुझे, जरूर कोई अच्छे गाने सुनने हैं, उदास गाने नहीं सुनने उस समय, उस समय अच्छे चंचल प्यारे गीत सुनने हैं, ताकि आपका मूड अदला बदली हो। मूड अदला बदली होगा तो मन तथा तन दोनों ही शांत होते रहेंगे। अंकित, 3 बार ट्राई तो करो ना, फिर मुझे दुआएं दोगे, ये मैं पक्का कह रही हूँ आपको।
1: उसने धन्यवाद लिख के भेजा है आपको।
0: स्वीट,
1: ऑनलाइन पे लिसनर वेट कर रहे हैं। हेलो।
2: हेलो।
0: हाँ जी।
2: हाँ जी, नमस्ते मैम, सुरविंदर सिंह चड्ढा बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी चड्ढा जी, बताइए।
2: पहले तो मैडम आपको सादर प्रणाम।
0: आपको भी सादर प्रणाम, सुखी रहो, खुश रहो।
2: थैंक यू मैम। और आपकी मधुर आवाज सुन के तो सारी टेंशन दूर हो जाती है, एंगर भी खत्म हो जाता है।
0: ये ब्रूटा साहब ने तो कभी नहीं कहा मुझे ऐसे,
2: लेकिन मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बहुत छोटे होते थे ना तब आपको काम की बात प्रोग्राम में सुना करते थे।
0: ओके गुरविंदर, आगे बताओ किस लिए
2: है। मैम आपने तो सब कुछ डिटेल में बता दिया।
0: हाँ।
2: तो अगर दूसरे की वजह से क्रोध आए तो उसको कैसे कंट्रोल करें, और ये जो क्रोध है ना ये कहीं बीमारी का रूप तो नहीं धारण कर जाता?
0: करता है, बीमारी का रूप तो धारण करता ही है। किसी ने इस बात को अहमियत नहीं दी सिवाय मेरी प्रोड्यूसर मैम ने, कि क्रोध जो है मन, और मन जो है वो शरीर पर हमेशा हावी रहता है। और ये देखिए कि आप क्रोध से क्रोधित रहेंगे तो आपका उबकाई आएगी, जी मचलाएगा, आप डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाएगी, आप गलत डिसीजंस लोगे, बाद में आप पछताओगे। बहुत लोग मुझे कहते हैं मैं ये करना ही नहीं चाहता था, पता नहीं उस समय मेरे दिमाग को क्या हुआ, पता नहीं मेरा दिमाग खराब हो गया। तो लोग मनोवैज्ञानिक के पास क्यों नहीं जाते सलाह लेने कि हम क्या करें? जन्म पत्रियां और कुंडलियों में बैठे रहते हैं, अंगूठियों में बैठे रहते हैं। लेकिन अगर आप अपनी दुविधा को डिस्कस करोगे, उसकी चर्चा करोगे, तो मन में बहुत क्लैरिटी और सफाई आएगी कि मुझे किस राह पे चलना चाहिए, मुझे किस तरह के डिसीजंस लेने चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्षमा करना गुरिंदर जी बहुत जरूरी होता है। अगर आप क्षमा करते हैं तो आप अपने को कर रहे हैं क्षमा। मत सोचना मैं दूसरे को क्षमा कर रहा हूं, दूसरा एक गलती करता है दूसरी करता है, वो सीखता नहीं, किसी से चर्चा नहीं करता, वो बेचारा गुस्से में घिरा रहता है, उसके गुस्से में, उसकी गलतियों में आप गुस्से में आ जाते हो। नुकसान किसका हुआ, आपका, उसका तो नहीं। आप लिखिए और आप किसी मनोवैज्ञानिक से डिस्कस कीजिए। जब मैं ऐसे कहती हूँ, मैं अरुणा ब्रूटा का प्रचार नहीं कर रही हूँ, कितने देख लूंगी मैं। मैं कह रही हूँ कि मनोविज्ञान की, अपने मन की इंद्रियां जितनी है मन के अंदर काबू रहनी चाहिए, वो नहीं रहते, क्योंकि मन परेशान है। क्योंकि मन क्यों परेशान है, जमाना मेरी मर्जी से चलना चाहिए। भाई मेरी मर्जी से कैसे चलेगा, मेरी मर्जी अनुकूल भी हो सकती है, विकारात्मक भी हो सकती है, और नाशवान भी हो सकती है, लोभ में आ सकती है। अपने पे नियंत्रण रखने के लिए नियम बांधिए कि मैं रोज डायरी में क्षमा मांगूंगा कि मैंने उसको क्षमा किया। जानते हो, अगर आप किसी भी शमशान घाट पे खड़े हो, आप सोचते हो दुनिया उजड़ गई, मेरा वो चला गया, मेरा वो चला गया, लेकिन बाहर जब खत्म करके, समाप्ति करके आप बाहर आते हो, फौरन आपके दिमाग में आता है वो नहीं आया, कमबख्त अच्छा उसके घर में कुछ हुआ तो मैं भी कभी नहीं जाऊंगा। आ गई ईर्ष्या, आ गई द्वेष, आ गया क्रोध, छोड़ दो ना, क्षमा करो, पता नहीं उस पे क्या बीत रही होगी, क्यों नहीं आया, पता नहीं उस

0: दिल में मेरे अगेंस्ट भी हो सकता है, पता नहीं उसके हालात ऐसे हों कि वो नहीं आया। कोविड से नहीं सीखे कि मैं तो अपने भाई के क्रियाक्रम पे नहीं पहुंच सकी, मैं खुद कोविड से पीड़ित थी, तो क्षमा करना तो सीखो पहले। कोविड तो इतना बड़ा गुरु है हमें सिखाने के लिए कि बुरे दिनों में हमें कैसे एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, लेकिन बदले में एक्सपेक्ट नहीं करना, बदले में मुट्ठी बंद नहीं रखनी, खुली रखनी है। तो देखो ना आप कितनी खुशहाली में आ जाओगे। आज मुझे प्रॉमिस करो कि क्रोध बहुत नेचुरल है, आएगा। मैं नहीं कहती कि आप क्रोधी मत हो, बड़े बड़े पहुंचे हुए लोग क्रोधी होते हैं, लेकिन बदले की भावना कम करके अपना नास मत पीटिए। आप ये कहिए अच्छे गाने सुनो, अच्छा पकवान आज खाऊं और अपना ध्यान कहीं और लगाऊं। ये पॉइंट मैं आपके लिए लाई कि अपना ध्यान जो है वो कहीं और बटाइए, बोल बोल के लिख लिख के कुछ और काम कीजिए। जानते हो मेरे कुलीग बड़ा हंसते थे मेरे पे, तू क्या बोलती है रेडियो पे, अलमारी साफ करूं? मैं क्या, हाँ बिल्कुल, अपना स्टडी टेबल साफ करो, अलमारी साफ करो, कौन सी किताब में लिखा है? मैंने कहा सॉर्टिंग टास्क क्या होते हैं? सॉर्टिंग टास्क वो होते हैं जहां आप अलग अलग चीजों को गुचड़ मुचड़ रखा हुआ है, उनकी कैटेगरीज बनाइए। तो देखिए कहां है क्रोध, चला गया, कहां है द्वेष, चला गया। अलमारी जब ठीक की, स्टडी टेबल ठीक किया, अपनी सारी जितनी भी कंप्यूटर पे आपने फाइल्स बनाई हुई हैं उनको क्लीन किया, तो देखो आपका माइंड कितना क्रोध से वंचित हो गया और दूर चला गया। ऐसा थोड़ी कह रही हूं कि क्रोध आना ही नहीं चाहिए, ये होना चाहिए कि क्रोध को कम कैसे करें, उसके ऊपर नियंत्रण कैसे करें।
1: यहां पर लेते हैं ब्रेक, आप जुड़े रहिए प्रोग्राम रेनबो हेल्पलाइन के साथ। हमारे साथ हैं डॉक्टर अरुणा बूटा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और हम बात कर रहे हैं आज एंगर मैनेजमेंट पे। मैं हूं आपकी दोस्त राजश्री त्रिवेदी।

0: वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेनबो हेल्पलाइन। हेल्पलाइन में आज हमारे साथ हैं इस वक्त क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट दिल्ली की जानी मानी डॉक्टर अरुणा बहुजा, और आज हम बात कर रहे हैं क्रोध प्रबंधन यानी एंगर मैनेजमेंट के बारे में। मैं हूं आपकी दोस्त राजश्री त्रिवेदी। और अरुणा जी, एक मैसेज आया है सहारनपुर उत्तर प्रदेश से प्रियंका काम्बोज का। लिखती हैं, आजकल के बच्चे फोन पर ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से देर रात तक जागते रहते हैं, सुबह देर से उठते हैं, और जितना मर्जी उन्हें समय के इम्पोर्टेंस बताएं मगर नहीं मानते हैं, तो क्या करें।
1: चलो, अच्छा हुआ प्रियंका जी आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि मैं अभी राजश्री मैम से कह रही थी कि मैं पेरेंटिंग के ऊपर भी बात करना चाहती हूँ, और मैं ये भी बताना चाहती हूँ पेरेंटिंग से पहले कि क्रोध आना एक बहुत स्वाभाविक सिचुएशन है, इमोशन है, मेंटल कंडीशन है। आप पैदा होते ही या प्यार या क्रोध को एक्सपीरियंस करते हैं। ये दो इमोशंस आपकी अनडिफाइंड और बहुत लार्ज स्केल पे होती हैं। मान लो आपने किसी नवजात शिशु का सिर सहलाया, उसको अच्छा लगता है, तो उसमें इमोशन जो उठती है वो प्यार की, चाहना की, सेल्फ इमेज की, पॉजिटिविटी, उसके अंदर एक इमेज बैठती है कि मैं अच्छा हूं, मुझे लोग प्यार करते हैं, राइट? बहुत छोटे नवजात शिशु की बात कर रही हूं। और बहुत बड़े एक मनोवैज्ञानिक थे फ्रॉयड, सिगमंड फ्रॉयड, और फ्रॉयड साहब शायद पिछले 2-3 सेंचुरीज जैसा उनका कोई साइकोलॉजिस्ट हुआ ही नहीं। वो कहते थे अग्रेशन जो है वो एंगर में कन्वर्ट होता है, और अग्रेशन बहुत नॉर्मल और नेचुरल होता है। जैसे आप 2 6-6 महीने के बच्चों को आपस में बिठाएं तो वो एक दूसरे के बाल नोचते हैं, उनको पता ही नहीं है कि हम मार रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, वो तो एक्सप्लोर कर रहा है, अरे तेरे ये सिर पे क्या है काला काला, जरा मैं देखूं, तो वो हाथ लगाता है। लेकिन जिसको उसने हाथ लगाया उसको दर्द हुई उसके बाल खींचने से, तो उसने उसको ऐसे धक्का दिया या उसको कहीं हाथ से नोच दबोच दिया, वो जान के नहीं कर रहा, क्रोध से नहीं कर रहा, दर्द से करा रहा है। तो ये एक नेचुरल इमोशन है। आई बात पेरेंटिंग की, जो प्रियंका जी कह रही हैं कि बच्चे सारी सारी रात लगे रहते हैं, मैम आपने कब रियलाइज किया प्रियंका मैम कि आपके बच्चे रात नाइट लगा रहे हैं? आपने रोका क्यों नहीं जब शुरू शुरू में मोबाइल उनके हाथ में आया था? मैं बहुत जानना चाहती हूँ इसमें कि पेरेंट्स तब रोते हैं जब हद हो जाती है, तो आप क्या सोए जागते हो? जब बच्चे ने पहली बार मोबाइल आपने दिया उसको चुप कराने के लिए, तो आपने वापस ही नहीं लिया, उसको पता ही नहीं था ये है क्या, वो ऐसे ही कुछ दबाता था तो रंग बदल जाता था, कुछ आ जाता था, वो सोचता था मैं कितना पावरफुल हूं, मैं भी ये मशीन चला सकता हूं जैसे मेरे मम्मी पापा चलाते हैं। और दूसरी बात, आप कितना देखती हैं मोबाइल, और पापा कितना मोबाइल देखते हैं, दादी कितना देखती है, चाचू कितना देखते हैं, चाची कितना देखती हैं, उससे बच्चे सीखते हैं। फिर जब वो पक जाते हैं इस आदत में, तो तब आप रियलाइज करते हैं, तब आपको भी क्रोध आता है। और अगर आप उनसे टेलीफोन छीनने की करते हैं तो बच्चों को भी क्रोध आता है, तो छीना झपटी होती है, मारा पीटी होती है, बात कहीं और चली जाती है, तमीज नहीं है बच्चों को। आजकल के बच्चों को इज्जत देनी नहीं आती, आपको आती है? आप भी तो बच्चों की निंदा करती रहती हैं औरों के सामने। सो मैं कहती हूं कि अपने आप को, जहां तक बच्चों की बात है, खुद तो सेल्फ डिसिप्लिन हुए, पर जब

बच्चों के साथ आप इस तरह की आदतें देते हैं तो डेफिनेटली आप ये आवर्स फिक्स करेंगे कि इतने समय से इतने समय तुम्हें टेलीफोन मिलेगा, इसके बाद नहीं मिलेगा। आप छीन लीजिए, छीना झपटी होगी 8 दिन, उसके बाद सब शांत हो जाएंगे। लेकिन याद रखिए, आप मॉडल हैं। कई बार मेरे पास काउंसलिंग सेशंस में

0: मैं मियाँ बीबी की तरफ देख के पूछती हूँ, किसको ज्यादा गुस्सा आता है? राजश्री हंस रही है मेरी बात सुन के। किसको ज्यादा गुस्सा आता है, पापा को कि मम्मी को? और दोनों एक दूसरे की तरफ उंगलियां लगाते हैं कि इसको आता है, वो कहती है मुझे तो आता ही नहीं है, आपको आता है। तो आज क्या हुआ था? तो वो कहती है तुमने भड़काया था तो मुझे गुस्सा आ गया। वो कहता है तो तुम मेरा कहना क्यों नहीं मानती हो? तो ये बहुत सारे इश्यूज बीच में आते हैं कि पुरुष जो है वो पत्नी पे रौब छांटता है कि मेरा कहना मानो, मास्टर जी का, चौधरी साहब का कहना मानो। और वो लड़की पढ़ी लिखी है, वो कहती है कि अगर नाजायज बात करोगे तो मैं कैसे तुम्हारा कहना मान लूंगी। तो दोनों में जो तू तड़क होता है वो बच्चे देखते हैं। तो इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस, बच्चे सीखते हैं। क्योंकि मैं यहाँ आज एक और बात पॉइंट लाने वाली हूँ राजश्री जी, कि गुस्सा लोग समझते हैं, लोग, कि गुस्सा इज पावर। मैं अगर चीखूंगा चिल्लाऊंगा तो मेरी बात मानी जाएगी, सब मेरे से डरेंगे। अगर सबको डरा कर आपको पावर चाहिए तो वो नहीं हो सकती। अगर आपने सबको दबा के पावर लेनी है तो वो नहीं हो सकती। अगर आपका तर्क जो है वो तर्क विवाद विवादनीय है और आप में सुनने की क्षमता है कि दूसरा क्या कह रहा है, पहला क्या कह रहा है, तीसरा क्या कह रहा है, तू तड़क करे बिना, तो मैं समझती हूं कि हाँ विचार सबके अलग अलग हैं, लेकिन अगर उन विचारों में आचार है, शिक्षण है, आपका बिहेवियर जो है वो शिक्षित बिहेवियर है तो गुस्से वाला बिहेवियर नहीं है। तो क्या मैंने पॉइंट्स लाई? एक पहला पॉइंट मेरा, अग्रेशन नेचुरल है। दूसरा पॉइंट मेरा है कि क्या फिर हम नेचुरलनेस को रहने दें? नहीं। द होल प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप, ये जो हम बच्चों को बड़ा करते हैं, क्या सिखाते हैं बच्चों को? सोशलाइजेशन, आचार क्या है, विचार क्या है, विचारधारा क्या है, झूठ नहीं बोलना, सच बोलना, 10 बार हम ही झूठ बोलते रहते हैं, जाओ कह दो वो घर पे नहीं है। तो बच्चा देखता है कि पापा कितने आराम से, मम्मी कितनी आराम से, भैया कितने आराम से झूठ बोलता है, राइट? तो ये सब जो प्रोसेसेस हैं जिसे हम कहते हैं सोशल डेवलपमेंट के, ये हर घर में, हर समाज में, हर सोसाइटी में, हर देश में होते हैं। तो काफी हद तक कि ये बच्चे सीखते हैं, पापा इतनी क्रोधी क्यों है, दादी इतनी क्रोधी क्यों है, दादू इतने क्रोधी क्यों है, अच्छा चाचू इतनी क्षमा क्यों इजीली दे देते हैं, चाचू को जाके बता देते हैं आज स्कूल में ये हुआ, बाकी सब तो पीट देंगे। सो बच्चे ये लेन देन, आचार विचार ये सब सीखते हैं। तो पेरेंटिंग का बहुत बड़ा रोल है। आप देखिए कई बार मेरे पास जो लोग आते हैं वो कहते हैं यार इसके दादा भी गुस्से वाले हैं, इसके परदादा भी गुस्से वाले हैं, इसके ताऊजी भी गुस्से वाले हैं। दैट मीन्स इट रन इन फैमिलीज। क्यों रन करता है फैमिलीज में? क्योंकि ये कहीं जेनेटिक भी होता है, सिर्फ लर्निंग और अनकॉन्शियस अवचेतन लर्निंग नहीं होती, ये जेनेटिक, इसमें जेनेटिक्स रोल प्ले करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि बचपन से आप इसका इलाज, इसकी काउंसलिंग करवाएं कि ये चीजें क्यों फेंकता है। छोटा सा बच्चा 10 साल का खाने की प्लेट फेंक देता है, किसी ने मुझे बताया 14 साल का है नहीं, इसने 60 इंच का टीवी तोड़ दिया। ये सब बातें होती हैं घरों में। भाई तो तुम्हें आज याद आया काउंसलिंग कराने का, आज याद आया कि ये मुद्दा हमें सोचना चाहिए। तो थोड़ा सा विचार करें कि भाई क्या क्रोध को हम परिवारों में पलने दें या अवचेतन मन को हम कहीं से विशेषज्ञ से बैठाकर समझें तो अपने भी बिहेवियर में कंट्रोल लाएं। माता पिता बच्चों को तो दोषी ठहराते हैं, खुद को नहीं। तो शीशे में देखिए गुस्सा किसको आता है, कहाँ से।
1: आपने जो क्रोध की बात कही, क्षमा की बात कही, कई बार होता है मुझे ऐसा लगता है कि लोग अवॉइड करते जाते हैं, नेग्लेक्ट करते जाते हैं, उसको नहीं ध्यान देते हैं, लेकिन वी ऑल आर ह्यूमंस और कई बार वो पाइल अप होता जाता है। तो कभी ऐसा होता है कि वो विस्फोट कर जाता है।
0: इसको डिस्प्लेस्ड एंगर कहते हैं, कहीं का गुस्सा कहीं जाके निकलता है।
1: मैं खास माहौल, खास सिचुएशन,
0: माहौल जो है वो भी है कि दूध में उबाल आ गया, राइट तो टेम्परेचर्स अपनी स्टडी करनी चाहिए ना कि मैं इतना गर्म मिजाज का क्यों हूँ या मैं ऐसी क्यों हूँ।
1: कई बार टॉलरेंस कहते हैं ना कि टॉलरेंस,
0: पर आप टॉलरेंट क्यों हैं? जरूरी है कि क्रोध

0: से आपने रिस्पॉन्ड करना है। अगर आप वाद विवाद लॉजिकल तरीके से धीमी आवाज से करें तो बहुत सारी इश्यूज एक दूसरे के साथ सॉर्ट आउट हो जाते हैं। ये बहुत जरूरी है। सो आप सोचिए कि ये पेरेंटिंग स्किल्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है।
1: एक आखिरी मैसेज, हमारा टाइम पूरा हो चुका है,
0: इतनी जल्दी है भगवान, पता ही नहीं चला टाइम का। हाँ जी,
1: ये है कि मेरी वाइफ को बहुत गुस्सा आता है, हालांकि आपने बता दिया, इन्होंने कहा है कि मैंने जवाब भी नहीं लिखा है, इनके साइकेट्रिक ट्रीटमेंट चल रही है इनकी, लेकिन अगर उससे अलग कोई उपाय है तो बताएं। महेंद्र प्रताप सिंह, राजपुर औरंगाबाद बिहार से।
0: महेंद्र जी, पहली बात तो शुक्रिया इतनी दूर से सुनने का और खत लिखने का। और साइकाइट्रिक इलाज चल रहा है तो ये जेनेटिक तकलीफें होती हैं, उन्हें गुस्सा इसलिए आता होगा कि उनके जीन्स एंड क्रोमोसोम्स में प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है। लेकिन इसके अलावा सैर करवाइए, प्रोग्राम एंड में आ रहा है, मैं रिपीट कर रही हूँ, सैर में आइए, प्राणायाम जरूर करवाइए, और अगर वो लिखती पढ़ती हैं तो उन्हें कहिए लिखने के लिए करें। दूसरा, ओम का उच्चारण जरूर करें। और लास्ट पॉइंट मेरा है कि घर की सफाई हर दूसरे तीसरे दिन करें। अगर उनके हाथ पैर सॉर्टिंग टास्क में, यानी कि अपनी कमीजें एक तरफ, पेंटें एक तरफ, साड़ी एक तरफ, पेटीकोट एक तरफ, ब्लाउज एक तरफ, बच्चों की मैथ्स की किताबें एक तरफ, ज्योग्राफी की एक तरफ, आप ये देखिए कि इससे मन को बहुत शांति मिलती है। और दवाई जो है साइकाइट्रिस्ट की वो जरूर दें, लेकिन रात को 10 बजे नहीं, शाम को 7:30-8 बजे अगर आप दवाई दे देंगे और इमीडिएटली ऊपर से कुछ खिला पिला देंगे तो वो नींद लेके सुबह उठेगी, तो दवाइयों का वो झूमने वाला जो एक रिएक्शन है वो कम हो जाएगा, और उनकी नींद जब पूरी होगी तो उनका मन शांत होता रहेगा। छोटी छोटी बातों पे क्रोध करना बहुत लाजमी है, लेकिन क्रोध को बढ़ाना हानिकारक है अपने स्वास्थ्य के लिए। इसलिए सैर करना, प्राणायाम करना, देखना कि मम्मी पापा क्यों झगड़ा कर रहे हैं या दादी दादू, जो भी घर में हो रहा है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करना। व्यायाम करना बहुत जरूरी है, छोटे बच्चों के लिए, यंगस्टर्स के लिए गेम खेलना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्पोर्ट्स में हमें सबसे बड़ा जिंदगी का लेसन मिलता है कि हार और जीत जिंदगी के दो पहलू होते हैं। इसलिए अहम को बहुत बड़ा करके ना चलिए कि मैं ऐसे करूंगा और मेरे अनुकूल ही सब कुछ चलेगा। और आज का प्रोग्राम समाप्त करने से पहले मैं ये कहूंगी, क्रोध आना है पर उसका इलाज हमें करना है, ये पागलपन नहीं है। खबरदार अगर कहा पागलपन है। क्रोध दो तरीके का, क्रोध इन यानी अपने अंदर करने का, और क्रोध बाहर दूसरे का नुकसान करने का या खुद का नुकसान करने का। तीनों ही अवस्थाएं ऐसी हैं जिनका इलाज होना बहुत जरूरी है। बातें करने से बातें सुलझती हैं। नमस्कार,
1: थैंक यू सो मच डॉक्टर अरुणा ब्रूटा स्टूडियो में आने के लिए और हमसे इतनी बातें करने के लिए।
2: रेनबो हेल्पलाइन का आज का कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया गया। इसी के साथ आज का रेनबो हेल्पलाइन यही समाप्त होता है।
3: चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए तो जिंदगी में रंग भर दे,
4: मेरी जैसी मेरी अपनी पताका,
3: पताका चाय गजब का स्वाद।
4: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4-5 रेनबो पर।
5: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
6: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
7: आज की रात मजा,
6: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
4: म्यूजिक मस्ती।
8: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है। सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर।
4: म्यूजिक मस्ती।
9: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
10: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
11: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

एफएम रेनबो पर अब वक्त है मुख्य समाचारों का। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीट और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से 8 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्ण

आचरण ने कहा है कि संस्कृत वह स्वर्णिम सूत्र है जो भारत की सभी भाषाओं को जोड़ता है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में स्लीप स्पोर्ट शिप एक का जलावरण किया। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय अधिनियम 2025 के अंतर्गत अनुमत कार्यों की अधिसूचित की है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपना समर्थन दोहराया। अफगानिस्तान के नागरिकों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। और अंत में बेनिन सिटी से लागोस जा रहे नाइजीरियाई सैन्य विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने में मृतकों की संख्या बढ़कर 32 हुई। मृतकों में 25 यात्री और 7 चालक दल के सदस्य भी शामिल हैं। तो ये थे FM रेनबो पर अभी तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: 2:02 और पूरे 40 सेकंड रेनबो की मैजिकल फ्रीक्वेंसी पर आप सभी का स्वागत सत्कार। मैं हूँ प्रियंका मामगन और हमारे साथ है प्रोग्राम आशियाना। और आज हम बात करते हैं महिलाओं की, उनके प्रयासों की, उनके जुनून, उनके हौसलों की। और आज हम बात करेंगे बिहार की राजधानी पटना की रहने वाली गायत्री देवी की।

आज हमारे साथ पटना की गायत्री देवी के प्रयासों की शक्ति। गायत्री देवी का जन्म बिहार के नालंदा जिले के छोटे से गांव में हुआ था। शादी के बाद वो पटना शिफ्ट हो गई और अपने ससुराल में रहने लगी। और यहाँ पर भी जो परिवार था बहुत ज़्यादा संपन्न नहीं था, कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहती थी, लेकिन उनके जो हस्बैंड थे वो पटना में ही जॉब करते थे और घर का सारा खर्च उनकी सैलरी से ही चलता था। घर में सास ससुर थे, पति थे और वो खुद थी। और उसके बाद, जी हाँ, कुछ टाइम बाद उनके पति की जॉब भी चली गई और ऐसे में जो सैलरी आती थी जिससे पूरे घर का खर्च चलता था वो भी बंद हो गया और बहुत सारी दिक्कतें जिंदगी में आने लगी। और इसी बीच गायत्री देवी माँ बनी। पहले ही परिवार में तंगी थी और तंगियों से जूझ रहा था परिवार और अब नन्हे बच्चे की ज़रूरतों ने भी और परेशानी को बढ़ा दिया था। दिन बहुत मुश्किल से गुजर रहे थे और इसी दौरान उनके हस्बैंड को पता चला कि वस्त्र मंत्रालय द्वारा एक गुरु शिष्य योजना चलाई जा रही है जिसमें जूट से बने प्रोडक्ट्स को बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी और जो महिलाएँ इस कोर्स को, इस ट्रेनिंग को पूरा कर लेंगी, सफलतापूर्वक पूरा कर लेंगी, उन्हें 6,000 रुपये भत्ता भी दिया जाएगा। घर परिवार में पैसों की कमी थी और ऐसे में ये 6,000 रुपये बहुत बड़ी रकम थी घर में चीज़ें लाने के लिए। और इसी गरज से गायत्री देवी ने वस्त्र मंत्रालय की गुरु शिष्य योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग लेनी शुरू की और 6 महीने की ट्रेनिंग को पूरा किया।

आकाशवाणी रेनबो की मैजिकल फ्रीक्वेंसी, आपके साथ मैं प्रियंका मामगन और हमारे साथ आज पटना की गायत्री देवी के प्रयासों की शक्ति। साल 2007 में गायत्री देवी ने वस्त्र मंत्रालय की गुरु शिष्य योजना के तहत ट्रेनिंग लेनी शुरू की, तो उस वक्त जूट शब्द उनके लिए बहुत नया था। जब वो ट्रेनिंग सेंटर गई तो सबसे पहले ये क्वेश्चन उनके माइंड में था कि जूट होता क्या है, और जब उन्होंने जूट को देखा तो उनके मुँह से अचानक से निकला, अरे ये तो सन है, इससे तो उनके दादाजी खटिया और रस्सी बनाते हैं। जी हाँ, बिहार पूरे देश में दूसरे नंबर पर आता है जूट उत्पादन में, और वहाँ पर अलग अलग नामों से जूट को जाना जाता है। वहीं जब गायत्री देवी ने जूट को देखा तो उन्हें लगा इससे तो वो बचपन से ही जुड़ी हुई हैं, और इस तरीके से उन्होंने वहाँ मन लगाकर काम किया और जूट से बनाने के प्रोडक्ट सीखे 6 महीने की ट्रेनिंग में। जी हाँ, और इसी के साथ जब ट्रेनिंग पूरी हुई तो दूसरा स्टेप आया कि काम कैसे शुरू किया जाए, क्योंकि पैसे तो वैसे ही नहीं थे उनके पास, तो उन्हें जो 1000 रुपये मिले थे उन्हीं में से उन्होंने 1500 रुपये से जूट के प्रोडक्ट्स घर पर अकेले ही बनाने शुरू किए, और उन्होंने जूट के गहने बनाने शुरू किए। जूट के रेशे जो होते हैं उनसे गहने बनाने शुरू किए, लेकिन उन्होंने देखा कि पटना में जूट के गहनों की इतनी डिमांड नहीं है, तो फिर उन्होंने जूट के बैग्स और जूट की गुड़िया बनानी शुरू की। काम चल रहा था लेकिन बहुत धीरे धीरे चल रहा था, और फिर साल 2010 में उन्होंने एक किसान मेले में अपना स्टॉल लगाया, और वहीं पर दूसरी एक महिला आई थी जो बिजनेस वूमेन थी। उन्होंने उनकी जूट की गुड़िया को देखा और उन्हें उनकी जूट की गुड़िया बहुत पसंद आई, और उन्होंने तुरंत उन्हें 50 जूट की गुड़िया बनाने का पहला ऑर्डर दिया, और इस तरीके से गायत्री देवी की बिजनेस की गाड़ी चल पड़ी।

0: चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए तो जिंदगी में रंग भर दे।
1: मेरी जैसी मेरी अपनी पताका,
0: पताका चाय गजब का स्वाद।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
4: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
5: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
4: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
6: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR खर्च है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
7: ठीक है,
6: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
5: आप घबरा जाते हैं और समझ

0: नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
2: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा, कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
0: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
0: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
0: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
0: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
6: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
5: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तो मैं सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
6: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
7: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
8: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
9: आशियाना प्रोग्राम और आज हम बात कर रहे हैं गायत्री देवी की। गायत्री देवी एक एक कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ रही थी। इसी दौरान उन्होंने पटना के उपेंद्र सारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान की एक प्रतियोगिता का पता चला और यहां उन्होंने 3 फीट की जूट की गुड़िया बनाकर सबको चकित कर दिया। इस प्रतियोगिता में उन्होंने 11,000 रुपये की राशि जीती और इस राशि को उन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगाया। धीरे धीरे उनका काम इतना बढ़ गया कि उन्होंने 20 से 25 महिलाओं को भी काम देना शुरू कर दिया। साल 2015-16 में उन्होंने अपनी खुद की दुकान खरीदी और जूट बनाने के प्रोडक्ट्स का विस्तार किया। पटना में जूट महंगा था तो उन्होंने गांव के किसानों से जूट खरीदना शुरू किया, जिससे किसानों की भी आमदनी होने लगी और वो आत्मनिर्भर बनने लगे। पटना में जूट के प्रोडक्ट्स बनाने की कॉस्ट ज्यादा पड़ती थी तो उन्होंने गाँव की औरतों को फ्री ट्रेनिंग देनी शुरू की और उन्होंने मानेर, शाहपुर और राजगीर के पास के गांव धामर की महिलाओं को फ्री में ट्रेनिंग देनी शुरू की और जूट के प्रोडक्ट्स बनाने उन्हें सिखाए, वो भी बिल्कुल फ्री। और आज उनके साथ कई सारे गांवों की बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं और जूट के प्रोडक्ट्स बनाकर आत्मनिर्भरता प्राप्त कर रही हैं। इसी के साथ साथ वो कहती हैं कि उनकी महीने की कमाई जो है वो 25 से 30 हज़ार रुपये है और वो कहती हैं साथ ही अब जो अलग अलग गवर्नमेंट के ट्रेनिंग संस्थान हैं वो भी उन्हें एज ए मास्टर ट्रेनर के तौर पर अलग अलग जगहों पर ट्रेनिंग देने के लिए बुलाते हैं और इससे उन्हें लगभग 1 महीने में 30 हज़ार रुपये की आय हो जाती है। वो कहती हैं कि एक वक्त था जब उन्होंने 1,000 रुपये के लिए जूट के प्रोडक्ट्स बनाने की ट्रेनिंग ली थी, सीखी थी और आज वो दूसरों को ट्रेनिंग देकर 30,000 रुपये महीना कमा रही हैं। जी हाँ, हम सभी गायत्री देवी के प्रयासों की शक्ति को नमन करते हैं।

0: ये वाला रेफ्रिजरेटर देखिए मैडम।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: अब वक्त है प्रायोजित कार्यक्रम का।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार, स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार, जिसे हमें भेजा है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन जी ने। लिखते हैं,
2: पढ़ाई सिर्फ नौकरी पाने का साधन नहीं,

0: बल्कि जीवन को सही दिशा देने का सबसे मजबूत आधार है। आज की मेहनत कल के उज्जवल भविष्य की पहचान है।
1: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पुना राम देवांगन और कृष्ण देवांगन।
0: ईदू ग्राम ईदू पोस्ट कारकल तालुका जिला उडुपी कर्नाटक राज्य से एच सिद्धार्थ जी ने लिखा है।
1: आज का बरसात और मेंढक कार्यक्रम हमें बहुत पसंद आया। पर्यावरण में हर जीव का यानी चींटी से लेकर हाथी तक एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध होता है
0: जी।
1: हमें पशु पक्षियों का अवश्य ख्याल रखना चाहिए
0: जी। और इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू।
1: और इसके साथ हमें मिला है बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार जी का।
0: चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन और प्रभा देवी सेन जी ने लिखा है।
1: मैं आप लोगों का उमंग कार्यक्रम नियमित रूप से सुनता हूँ। बड़ी ही सुंदर और आनंदमयी प्रस्तुति रहती है
0: जी।
1: कार्यक्रम को सुनकर दिल आनंदित हो जाता है। धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: और जिला पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप और संगीता गोप के साथ साथ लिपि गोप और दीपाली गोप ने भी हमें संदेश भेजा है।
0: पोटियागला दुर्ग से संजय कुमार साहू
1: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है। सर अजीत और मैडम विमलेश जी सप्रेम नमस्ते जी। आगे लिखते हैं,
0: उमंग कार्यक्रम में ये भी जानिए के अंतर्गत प्रेरक प्रसंग की श्रृंखला प्रसारित की जा रही है जो बेहद पसंद आ रही है। प्रेरक प्रसंग छोटे जरूर है लेकिन इसमें ज्ञान की जानकारी, शिक्षा का संदेश भरपूर प्राप्त होता है। पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा जी एवं दशरथ मांझी जी के प्रेरक प्रसंग सुनकर सुखद संदेश प्राप्त हुआ। आगे के भी प्रेरक प्रसंगों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। प्रेरक प्रसंग सुनवाने के लिए सर अजीत जी एवं मैडम विमलेश जी हम आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
1: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। हम हृदय से अपना आभार प्रकट करते हैं। श्रोताओं आइए इस सप्ताह अब हम चलते हैं चर्चा की दुनिया में। हम इस सप्ताह चर्चा करेंगे दुनिया भर के प्रसिद्ध पुरस्कारों की।
0: अजीत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में किसी व्यक्ति के महान काम को सम्मानित करने के लिए दिया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार कौन सा है?
1: विमलेश जी, मेरा अनुमान है आप बात कर रही हैं नोबेल पुरस्कार की।
0: बिल्कुल सही अजीत जी, लेकिन आज की कहानी नोबेल पुरस्कार के साथ साथ उस व्यक्ति की भी है जिसके एक फैसले ने दुनिया को एक ऐसी विरासत दी जो आज भी जारी है। और उस विरासत को हम नोबेल पुरस्कार के नाम से जानते हैं।
1: तो चलिए श्रोताओ आज सुनते हैं नोबेल पुरस्कार की कहानी। हमारी कहानी शुरू होती है वर्ष 1833 से, जब स्वीडन के स्टॉकहोम में एक बालक का जन्म हुआ। नाम था अल्फ्रेड नोबेल।
0: बालक अल्फ्रेड नोबेल को बचपन से ही विज्ञान और अध्ययन में विशेष रुचि थी। वे बहुत ही जिज्ञासु थे और हमेशा नए नए प्रयोग करते रहते थे। बड़े होकर वे रसायन विज्ञान और उद्योग के क्षेत्र में काम करने लगे।
1: श्रोताओं उन दिनों सड़क बनाने और खानों का उत्खनन करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था
0: जी।
1: पत्थरों और चट्टानों को तोड़ना बहुत ही श्रम साध्य कार्य था और इसमें बहुत अधिक समय लगता था।
0: अल्फ्रेड नोबेल ने इस दिशा में कार्य करना शुरू किया। उन्होंने विस्फोटक पदार्थों पर भी शोध किया। शोध और प्रयोग करने के क्रम में एक बार उनकी प्रयोगशाला में भयंकर विस्फोट हुआ और उनके भाई एमिल को जान गंवानी पड़ी।
1: उनके इन प्रयोगों का भारी विरोध हुआ लेकिन श्रोताओं अल्फ्रेड ने हार नहीं मानी और अंततः उन्होंने डायनामाइट की खोज की।
0: खनन, सुरंग बनाने और निर्माण कार्यों में डायनामाइट के उपयोग से काम बहुत आसान हो गया। अब आसानी से बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ा जा सकता था। लेकिन विस्फोटकों का इस्तेमाल युद्ध में भी होने लगा। डायनामाइट के कारण बहुत बड़ी संख्या में सैनिकों को जान गंवानी पड़ती थी। समाज में अल्फ्रेड नोबेल की कटु आलोचना हुई। कहते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल को सामूहिक स्थानों में भी लोगों की निंदा सुननी पड़ती थी।
1: और इसी क्रम में श्रोताओं अल्फ्रेड नोबेल के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनके जीवन और इतिहास की धारा बदल दी।
0: क्या हुआ था अजीत जी?
1: विमलेश जी, वर्ष 1888 में अल्फ्रेड नोबेल के भाई लुडविग नोबेल की मृत्यु हुई थी, लेकिन एक अखबार ने गलती से स्वयं अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु की खबर प्रकाशित कर दी जबकि वे जीवित थे
0: जी।
1: अखबार में उनके बारे में प्रकाशित खबर उन्होंने स्वयं पढ़ी। मालूम है अखबार में क्या छपा था?
0: जी, क्या छपा था?
1: अखबार में छपा था द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड, यानी मौत के सौदागर की मृत्यु हो गई।
0: और श्रोताओं इस घटना ने उन्हें गंभीरता से सोचने का अवसर दिया। वे सोचने लगे, मेरे जाने के बाद दुनिया मुझे किस रूप में याद करेगी?
1: जी श्रोताओं, डायनामाइट के आविष्कार से उन्होंने अथाह धन कमाया था। अब उन्होंने अपनी संपत्ति और अपनी विरासत के बारे में नए सिरे से सोचना शुरू किया। और पता है श्रोताओं फिर उन्होंने क्या निर्णय लिया?
0: 1895 में अपनी वसीयत

0: में उन्होंने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा ऐसी व्यवस्था के लिए रखने के लिए निर्णय लिया जिसके ब्याज की राशि से उन लोगों को सम्मानित किया जा सके जिन्होंने मानवता के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हो।
1: आश्रोताओं, फिर हुआ ये कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी वसीयत के अनुसार व्यवस्था की गई। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई और वर्ष 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए।
0: शुरुआत में भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति, इन 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए
1: और बाद में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ।
0: जी
1: विमलेश जी, मुझे इस पूरी कहानी में एक बात बड़ी प्रेरक लगती है।
0: वो कौन सी अजीत जी?
1: वो यह है कि एक व्यक्ति ने अपने जीवन में जो कुछ अर्जित किया उसे केवल अपने लिए रखने के बजाय आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाने में लगाया जिससे मानवता के लिए किए गए महान कार्यों को पहचान मिल सके।
0: जी अजीत जी, बहुत सुंदर बात आपने कही। जी हाँ श्रोताओ, नोबेल पुरस्कार की कहानी केवल पुरस्कार पाने वालों की कहानी नहीं है, ये उन विचारों की कहानी भी है जो दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं।
1: तो श्रोताओ, अल्फ्रेड नोबेल की कहानी हमें वास्तव में क्या सिखाती है?
0: शायद यही कि जीवन में केवल महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमने क्या पाया, बल्कि ये भी महत्वपूर्ण है कि हमने दुनिया को क्या दिया।
1: जी बिल्कुल, और दुनिया को कुछ देने के लिए हमें पुरस्कार ही मिले ये जरूरी नहीं है।
0: जी
1: कोई शिक्षक किसी बच्चे को शिक्षा देकर, कोई डॉक्टर सेवा करके, कोई वैज्ञानिक नई खोज करके और कोई साधारण व्यक्ति किसी जरूरतमंद की मदद करके भी समाज में अपना योगदान दे सकता है।
0: यानी महानता केवल बड़े पुरस्कारों में नहीं बल्कि उन कामों में भी होती है जो किसी दूसरे के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं।
1: तो श्रोताओ, आज की कहानी से एक सवाल अपने साथ लेकर जाइए और हमारा सवाल है,
0: हम अपने जीवन में ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारे जाने के बाद भी हमारा अच्छा काम लोगों के काम आता रहे।
1: और यही सोच एक व्यक्ति के जीवन को अर्थपूर्ण बना सकती है
0: और यही है नोबेल पुरस्कार की कहानी।
1: जी
0: तो श्रोताओं, हमें आशा है कि आज की प्रस्तुति आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब सुनिए आज का प्रश्न।
1: हमारा आज का प्रश्न है, अब तक किन किन भारतीयों को किन किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: अब तक किन किन भारतीयों को किन किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
1: 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर हमारे प्रश्न का उत्तर या अपनी प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
0: जी,
1: इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो उमंग कार्यक्रम में प्रसारित होते हैं। तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। श्रोताओ, हमारा आज का पहला कार्यक्रम है चतुर गीदड़।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है जिसमें एक हास्य प्रधान नाटक के द्वारा संदेश दिया गया है कि हमें अपने आसपास की परिस्थितियों का ध्यान से निरीक्षण करना चाहिए और तुरंत कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए।
2: मगरमच्छ अपने आप से।
3: तालाब की सारी मछलियां तो मैं धीरे धीरे चट कर गया। अब क्या खाऊं? कई दिनों से खाने को कुछ भी नहीं मिला। मुझे तो बहुत भूख लगी है। आज वो गीदड़ भी तालाब पर पानी पीने नहीं आया। मित्र कछुए।
4: कहो भाई मगरमच्छ, क्या हाल है? सब ठीक तो है? इतने उदास क्यों हो?
3: क्या बताओ मित्र, भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं।
4: क्यों, क्या आज खाने के लिए मछलियां नहीं मिली?
3: अरे मछलियां तो कब की समाप्त हो चुकी। सोचा था कि गीदड़ मिलता तो आज का काम चलता, पर वो तो ऐसा चतुर है कि पकड़

0: में ही नहीं आता।
1: हाँ, गीदड़ को पकड़ना तो बहुत कठिन है।
0: मित्र, कोई ऐसा उपाय करो कि वो पकड़ में आ जाए। उसे खाकर आज मैं अपनी भूख मिटा लूंगा। मैं तुम्हारा बहुत उपकार मानूंगा।
1: अच्छा, तुम कहते हो तो चला जाता हूँ। किसी तरह गीदड़ को इधर लाने का प्रयत्न करता हूँ। लेकिन इसके पहले तुम एक काम करो।
0: ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा।
2: एक और मगरमच्छ सांस रोके मरा हुआ सा पड़ा है और कछुआ पास खड़ा है। कछुआ दूर से गीदड़ को आते हुए देखकर कहता है,
1: हाय, अब मैं क्या करूं? मेरे प्यारे मित्र को ना जाने क्या हो गया, अचानक उसके प्राण निकल गए। अब तो मैं बिल्कुल अकेला रह गया।
3: क्या है भाई कछुए, क्यों रो रहे हो?
1: मेरा प्यारा मित्र मगरमच्छ स्वर्ग सिधार गया। अब दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा।
3: है? क्या कहा, मगरमच्छ मर गया? अब तो मैं निश्चिंत होकर तालाब का पानी पी सकता हूँ। उसके डर से मैं कई बार प्यासा ही रह जाता था।
1: क्या कहा?
3: कुछ नहीं। ये तो बड़े दुख की बात है। मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ?
1: आओ, उस पर कुछ सूखे पत्ते डालकर उसे ढांप दे। देखो, बेचारा मरा पड़ा है।
2: गीदड़ डरते डरते कुछ पास जाकर धीमे स्वर से कहता है,
3: अरे ये तो बिल्कुल शांत है।
4: ये तो सांस ले रहा है। भाई कछुए, क्या ये सचमुच मर गया है?
5: हाँ, देखते नहीं, ये तो मरा पड़ा है।
3: पर भाई, मैंने तो सुना है कि मर जाने पर मगरमच्छ की पूंछ हिलती रहती है। लगता है अभी ये पूरी तरह नहीं मरा।
5: नहीं भाई, ये बिल्कुल मर गया है।
2: तभी मगरमच्छ अपनी पूंछ हिलाने लगता है। गीदड़ भागकर दूर जाते हुए कहता है,
3: अपने मित्र को देखो।
1: खोल दो अपनी आंखें। भाग गया गीदड़। तुम बिल्कुल मूर्ख हो। तुम उस चतुर गीदड़ की चाल में आ ही गए। अब उसे पकड़ना कठिन है।
6: अभी आपने सुना कार्यक्रम चतुर गीदड़।
7: उस रात ऑफिस से निकलने में तुबा हो गई थी, आंखें भी भारी हो रही थी, पर सोचा 15 किलोमीटर ही तो है, निकल जाता हूँ। हाईवे पर एक ट्रक के पीछे चला गया। ट्रक के पीछे एक आयरन रॉड लगी थी, टेल लाइट दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे लगा कि वो सीधा जा रहा है, पर जैसे ही उसने ब्रेक मारे, मुझे समझने में 1 सेकंड ज्यादा लग गया। नींद में गाड़ी चलाना और पीछे की रोशनी ना दिखना, दोनों ही गंभीर हादसे को बुलावा देना है।
8: थकान या नींद की अवस्था में वाहन चलाने से बचें। यात्रा के दौरान यदि थकान या नींद महसूस हो तो आगे बढ़ने के बजाय थोड़ी देर रुककर आराम करना सुरक्षित होता है।
6: और अब सुनते हैं कार्यक्रम अष्टावक्र भाग एक।
9: इस कार्यक्रम में महायोगी अष्टावक्र के बारे में जानकारी देते हुए उनके दर्शन की चर्चा की गई है तथा बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने शास्त्रार्थ

0: के द्वारा राजदरबार के एक विद्वान को पराजित किया और न्याय की स्थापना की।
1: त्रेता युग में आरुणि उद्दालक नाम के महर्षि थे। वे महापंडित, वेदों के ज्ञाता और तर्क वितर्क में निपुण दार्शनिक थे।
2: उनकी सुजाता नाम की पुत्री थी, ऋषि उद्दालक के सर्वश्रेष्ठ और प्रिय

0: गुणवती, रूपवती और विदुषी सुजाता भी वेदों की ज्ञाता थी। एक दिन
1: कहोड़, मैं तुम्हारे ज्ञान और सेवा से प्रसन्न हूं। जैसे ही तुम्हारी शास्त्रों की शिक्षा पूर्ण होती है, मैं चाहूंगा कि तुम्हारा विवाह मेरी बेटी सुजाता से कर दिया जाए।
2: जो आज्ञा आचार्य।
1: तुम दोनों मेरे आश्रम में रह सकते हो, और मैं ये भी चाहूंगा कि अपने शिष्यों की शिक्षा का कार्य भी जारी

0: पति कहोड़ और पत्नी सुजाता संगमा नदी के किनारे ऋषि उद्दालक के आश्रम में सादगी का जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ महीने बाद सुजाता गर्भवती हो गई।
1: भले ही क्यों ना मेरा शिशु अभी गर्भ में है, मैं उसे पवित्र मंत्रों से अवगत करवाऊंगी।
2: समय बीता, सुजाता की गोदी में नन्हा शिशु आया। उसके शरीर में 8 स्थानों पर विकृतियां थीं, इसलिए उसका नाम रखा गया अष्टावक्र। शरीर में विकृतियों के बावजूद बच्चा बहुत प्रतिभाशाली और तेजस्वी था। सुजाता अपने नवजात शिशु को लेकर अपने पिता उद्दालक के आश्रम में आ गई। लगभग इसी दरमियान ऋषि उद्दालक की पत्नी को भी एक पुत्र हुआ। उसका नाम श्वेत केतु रखा गया। अष्टावक्र ऋषि उद्दालक को अपना पिता ही मानने और कहने लगे, और मामा श्वेत केतु को अपना भाई कहते थे। एक समान आयु के श्वेत केतु और अष्टावक्र मामा भांजे मानो भाई भाई की शिक्षा साथ साथ हुई।

0: ऐसे में दोनों के गुरु थे महर्षि उद्दालक।
1: 12 वर्ष की आयु में जब अष्टावक्र महर्षि उद्दालक की गोद में बैठे थे, तभी श्वेत केतु वहां आए। उन्होंने अष्टावक्र का हाथ पकड़ा और खींचकर दूर ले गए।
2: ए, ये तुम्हारे पिता की गोदी नहीं है, जाओ अपने पिता की गोदी में बैठो।
0: बालक अष्टावक्र ने अपमानित महसूस किया और रूठे हुए वो अपनी माँ के पास आए।
3: माँ, क्या मैं तुमसे जन्मा हूँ, है ना?
4: तुम रो क्यों रहे हो मेरे बेटा अष्टा, क्या हुआ?
3: माँ, मुझे बताओ कौन है मेरे पिता? तुम चुप क्यों हो? क्या महर्षि उद्दालक मेरे पिता नहीं है?
4: हाँ अष्टा, महर्षि उद्दालक तेरे पिता समान है, वो तेरे धर्म पिता है बेटा।
3: तब कहोर कौन थे? मन कठोर कर सच बोलो माँ।
4: बेटा, वो पिता है तेरे बेटा, पिता है।
1: आखिर नाना और पिता का भेद तो खुलना ही था। गरीबी से परेशान और धन कमाने की आशा में कहोड़ शास्त्रार्थ में स्वयं को वेदों के विद्वान सिद्ध करने के लिए मिथिला में राजा जनक के दरबार गए। जब उन्होंने राज दरबार में प्रवेश किया तो राजा जनक ने उनका स्वागत किया।
5: राजा जनक, मैं ऋषि कहोड़।
6: ओह पूज्य ऋषि, आप सही समय पर आए हैं। हमारे यहां बंदी नाम का एक विद्वान है, शास्त्रार्थ वाद विवाद में उन्हें कोई नहीं हरा सकता।
5: हे राजन, मुझे कोशिश करने दें।

0: आचार्य कहूर और आचार्य बंदी के बीच होने वाला यह शास्त्रार्थ अत्यंत रोचक होगा और घातक भी हो सकता है। देखते हैं क्या होता है।
1: शास्त्रार्थ प्रारंभ तो हुआ परंतु अधिक देर न चल सका क्योंकि कहोड़ बंदी के सामने टिक न पाए थे।
2: फिर बेचारे कहोड़ को भी बाकी पराजितों की तरह कठोर दंड दिया गया।
3: अत्यंत दुख है, मैंने एक और ऋषि को खो दिया है जो यज्ञ में भाग लेने आए थे। अब यज्ञ सफल कैसे होगा?
1: जब महर्षि उद्दालक को यह समाचार मिला तो उन्होंने अपनी पुत्री सुजाता को सब कुछ बता दिया कि ऋषि कहोड़ अब कभी वापस नहीं लौटेंगे।
4: श्वेत केतु,
5: अष्टावक्र,
4: मुझे प्रतिशोध लेना है और बंदी को शास्त्रार्थ में पराजित करना है। आओ मिथिला राजा जनक की सभा में चलते हैं। सुना है 12 वर्ष पूर्व प्रारंभ किए गए महायज्ञ को राजा जनक पूर्ण नहीं कर पाए हैं।
5: हाँ,
4: उनके दरबार में विद्वानों के बीच शास्त्रार्थ होता है।
5: कब चलना है?
4: बस अभी तुरंत।
1: चौदह वर्षीय मामा भांजे श्वेत केतु और अष्टावक्र दोनों मिथिला में राजा जनक के राजमहल के द्वार पर पहुंच गए।
6: बालक, आप कौन हैं और आप क्या चाहते हो?
4: हम ऋषि उद्दालक के शिष्य हैं। हम मिथिला नरेश से मिलना चाहते हैं, कृपया आप हमें उनके पास ले चलें।
2: ब्राह्मण बालकों को राजा जनक के पास ले जाया गया।
5: बालक, तुम कौन हो? तुम्हारा क्या नाम है?
7: मेरा नाम श्वेत केतु है। हम ऋषि उद्दालक के आश्रम से आए हैं।
4: और मेरा नाम अष्टावक्र है। हे राजन, हमने आचार्य बंदी की चुनौती के बारे में सुना है तथा शास्त्रार्थ में पराजित हुए लोगों के भाग्य के बारे में भी। मैं बंदी को चुनौती देने और उन्हें पराजित होते देखने आया हूं।
5: मुझे तुम्हें अवश्य सावधान करना चाहिए। तुम आचार्य बंदी के ज्ञान, उनके शास्त्रार्थ कौशल से परिचित नहीं हो। अब तक कोई भी उन्हें हरा नहीं सका है।
4: ऐसा इसलिए क्योंकि उनका सामना कभी भी मेरी क्षमता के विद्वान से नहीं हुआ। मैं तब तक वापस नहीं लौटूंगा जब तक मैं दंभी बंदी को हारते हुए नहीं देख लेता।
1: जनक को लगा कि आश्वस्त अष्टावक्र जिद पर अड़े हुए हैं।
5: मैं तुम्हारी बुद्धिमता की परीक्षा लेना चाहता हूं, इसलिए मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम होगे तो मैं तुम्हें आचार्य बंदी से मिलने की अनुमति दूंगा। तो बताओ, सोते समय कौन आंख नहीं मूंदता है? जन्म लेने के बाद कौन नहीं हिलता? और दिल किसके पास नहीं है? और यह भी बताओ कि कौन सी वस्तु तेज वेग से बहती है?
4: हे राजन, मछली सोते समय अपनी आंख नहीं मूंदती, अंडा जन्म लेने के बाद हिलता नहीं है, पत्थर में हृदय नहीं होता और नदी वेग से बहती है।
5: अत्यंत सुंदर।
2: राजा जनक ने अष्टावक्र से कुछ और गूढ़ प्रश्न पूछे। सही और सटीक उत्तरों से वे बेहद प्रभावित हुए।
5: ब्राह्मण कुमार, आप बालक नहीं हैं, मैं तो आपको वृद्ध ही समझता हूं। मैं आपको मनुष्य नहीं मानता। आपकी शक्ति तो देवताओं के समान है।
4: विद्वानों के संरक्षक और आश्रय दाता मिथिलेश की जय हो।
8: मिथिलेश की

0: दरबार में बैठे सभी लोग खिल खिलाकर हंसने लगे।
1: मैंने सोचा था कि शास्त्रार्थ मंडप में विद्वानों और ज्ञानियों के दर्शन होंगे, किंतु क्षमा करें, इस सभा में तो सभी मूर्ख बैठे हैं।
2: अष्टावक्र भी ठहाका मारकर जोर जोर से हंसने लगे।
3: अन्य सभी हंस रहे हैं ये तो मुझे समझ में आया, किंतु बालक कुमार आप क्यों हंस रहे हैं?
1: आप सब अपने आप को महान समझते हैं और तुम सभी चमड़े के इस जीवित पुतले पर हंस रहे हो। क्या आपने कभी सूक्ष्म के बारे में सोचा है? परखा है मन की आंखों से? मैं इसलिए हंस रहा हूं कि चमड़े के पारखियों मूर्खों की सभा में निर्णय हो रहा है।
3: हे ब्राह्मण कुमार, तनिक समझाकर स्पष्ट करें।
1: हे राजन, मंदिर के टेढ़ा मेढ़ा होने से आकाश टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, और मंदिर के गोल या लंबा होने पर आकाश गोल अथवा लंबा नहीं होता। कारण स्पष्ट है कि आकाश का मंदिर के साथ कोई संबंध नहीं है। आकाश निर्वयव है और मंदिर सावयव है। इसी प्रकार आत्मा का भी शरीर के साथ कोई संबंध नहीं, क्योंकि आत्मा निर्वयव है और शरीर सावयव। आत्मा नित्य है और शरीर अनित्य। शरीर का टेढ़ा होना आत्मा को प्रभावित नहीं करता है राजन।
3: बालक, तुम तो विलक्षण हो और मेधावी वक्ता भी।
4: वाक द्वंद्व का अंतिम दिवस है आज। वाद विवाद करने के लिए मैं इन होनहार बालकों को यज्ञ मंडप में महापंडित बंदी से मिलने की अनुमति देता हूं। मंडप में एक वेदी पर आचार्य उद्दालक के शिष्य अष्टावक्र और दूसरी वेदी पर राजपंडित बंदी।
5: तो श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम अष्टावक्र भाग एक, और इसी कार्यक्रम के साथ अब हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
6: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु,
5: मुकुल सिंह,
6: वीरेंद्र
5: और हमारी आज की विशेषज्ञ
6: सहायक आचार्य दीपमाला जी के साथ कल तक के लिए विमलेश को आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार। उमंग, उमंग, उमंग।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: स्वस्थ भारत का पहला कदम, नियमित हेल्थ चेकअप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में। मैं हूँ शिल्पा गुप्ता। रोकथाम इलाज से बेहतर है, और इसी सोच के साथ आज हम चर्चा करेंगे मेडिकल हेल्थ चेकअप पर, जो बीमारी को बढ़ने से पहले से ही रोक सकते हैं। आज हम जानेंगे कि नियमित जांच क्यों है जरूरी और कैसे ये हमारे जीवन को स्वस्थ बनाए रखती है। इसी विषय

0: पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर घनश्याम पांगती, डायरेक्टर प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद शिल्पा जी, धन्यवाद।
0: तो आइए शुरू करते हैं आज की स्वास्थ्य चर्चा, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये खूबसूरत गीत। सर, हमारा पहला गीत शोले फिल्म का है, क्या आप किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे ये गीत?
1: जी हाँ शिल्पा जी, ये शोले फिल्म आई थिंक वन ऑफ द फेवरेट मूवी मेरी ही नहीं, आई थिंक ऑल ओवर इंडिया की है। और इसका जो ये गीत है, है दोस्ती ये हम नहीं छोड़ेंगे, मैं अपने सारे दोस्तों को, स्कूल फ्रेंड जो कि मैं देवभूमि से हूँ, देवभूमि उत्तराखंड से लेके आई हैव डन मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में मेरा ग्रेजुएशन हुआ है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से लेके नाउ आई एम वर्किंग लेडी हार्डिंग, सभी दोस्तों को मेरा ये गाना उनके लिए डेडिकेट करना चाहूँगा।
0: तो आइए सुनते हैं गीत। दोस्ती वैसे ही अपने आप में एक थेरेपी है।
1: एग्जैक्टली, वी नीड दिस टू रिड्यूस द स्ट्रेस एंड कीप अ बेटर हेल्थ।

0: दोस्ती के ऊपर एक गीत सुनकर वाकई दिल खुश हो जाता है। इस गीत में एक बहुत सुंदर लाइन थी, तेरा गम मेरा गम, ऐसे ही कुछ नाता है डॉक्टर और पेशेंट का। डॉक्टर साहब, अब तक हम डॉक्टर के पास नहीं जाते जब तक बीमार ना पड़े। मेडिकल हेल्थ चेकअप पे हम आज हम बात करें तो वो कितना जरूरी है और इसमें कौन कौन से टेस्ट शामिल हैं?
1: जी हाँ शिल्पा जी, मेडिकल चेकअप भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑल्दो हम जैसे कि अस्पताल में जब पेशेंट आता है उसको जब तकलीफ होती है तभी देखते हैं, और वो ठीक भी है। हमारा बहुत बड़ा देश है, रिसोर्स लिमिटिंग सेटिंग है, हम सबका हेल्थ चेकअप तो नहीं कर पा सकते, बट स्टिल ऐसा देखा गया है कि जैसे जो रिस्क ग्रुप है, अगर जैसे बच्चों को ले लें तो छोटे बच्चे जो हैं उनके लिए जैसे एनीमिया का टेस्ट, हीमोग्लोबिन कम तो नहीं है, वो चेक करना जरूरी, नहीं तो बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं, थक जाते हैं, स्कूल में ध्यान नहीं रहता है। इसके लिए सरकार भी जैसे एनीमिया मुक्त भारत करके प्रोग्राम चला रही है, जिसमें कि छोटे बच्चे जो स्कूल में जा रहे हैं उनको एक एक आयरन की गोली दे रही है, स्पेशली गर्ल्स चाइल्ड को, तो वो इंपॉर्टेंट है एनीमिया बच्चों के लिए। इसके अलावा हम लोग ग्रोथ चार्ट, मेडिकल रूटीन मेडिकल चेकअप किसी भी अच्छे स्कूल में एनुअली होता है, जिसमें कि हम उसकी हाइट देखते हैं, हम उसका वेट देखते हैं, बीएमआई कैलकुलेट करते हैं, इससे हमें पता चल जाता है कि वो बाकी बच्चों के एवरेज में कहीं नीचे तो नहीं रह रहा है या कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट इसमें भी सपोर्ट करती है, आपको मिड डे मील देती है स्कूलों में, जो बिल्कुल दूर दराज के स्कूल हैं, पहाड़ों में हैं, उनमें मिड डे मील बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई से ज़्यादा मेरे ख्याल से न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम एडल्ट्स में आ जाएँ, स्पेशली फीमेल में, तो एक एंटीनेटल केयर होता है, जैसे जो फीमेल्स हैं, शादी होगी, बच्चे होंगे, तो अगर उनका हम ठीक से केयर करें तो उनको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एंटीनेटल केयर से पहले जैसे यंग फीमेल है उनके लिए भी एनीमिया बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को खून की कमी है, एनीमिया है, तो को किस तरह की है, कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि कोई हीमोलिटिक एनीमिया हो, किसी को सिकल सेल डिजीज हो सकती है, थैलेसीमिया, जो कि बाद में प्रॉब्लम करेगी, अगर टाइम पर डिटेक्ट हो जाए तो ठीक हो जाएगा। दूसरा है कि बहुत सारे अदर टेस्ट, जैसे शुगर की बीमारी है तो इस अच्छा रहेगा कि एक बार शुगर का टेस्ट हो जाए प्रेगनेंसी से पहले। थायराइड का टेस्ट, जो कि बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही सस्ता सा टेस्ट है, हमें प्रेगनेंसी से पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि जिन फीमेल्स को थायराइड की प्रॉब्लम होती है उनके बच्चे उतने अच्छे ग्रो नहीं कर पाते हैं, उन लोगों को मेमोरी प्रॉब्लम हो सकती है, वो उतनी अच्छी तरह नहीं बढ़ पाए, तो बहुत ही सिंपल सा छोटी सी गोली रोज थायराइड की गोली खाने से वो कवर हो जाता है।
0: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो।
2: हेलो।
0: नमस्कार, अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: मेरा नाम राजेंद्र है और मैं करमपुरा दिल्ली से बोल रहा हूँ।
0: आपका क्या प्रश्न है?
2: शिल्पा मैम को नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार और आभार।
1: नमस्कार राजेंद्र जी, बताइए।
2: जी डॉक्टर साहब, मेरे पांच सवाल हैं। अब पहला सवाल मेरा ये है कि अपनी बॉडी का अगर हमें चेकअप करवाना हो पूरी बॉडी का, प्राइवेट जांच करवाते हैं तो थोड़ा खर्चा कितना आ जाता है? मतलब सवाल मेरा ये है, और अगर हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल का चयन करवाना हो तो खर्चा क्या है? और तीसरा सवाल मेरा ये है कि हिंदुस्तान में जबकि मर्दों की वरिष्ठ औरतों को ज्यादा बीमारियां होती है, इसकी वजह क्या होती है? जबकि हम लोग मर्दी करते हैं सारे।
1: राजेंद्र जी, आपकी आवाज़ बहुत साफ नहीं थी, बट जो आपने क्वेश्चन लिए हैं, पांचों तो हम नहीं ले पाएंगे, वैसे भी दो तीन जो लिए हैं मैं उसका उत्तर देना चाहूंगा। पहले आप बताएंगे आपकी उम्र कितनी है?
2: हाँ जी, मेरी उम्र जो है वो 47 कंप्लीट है, 48 चल
1: रही है। वेरी गुड, तो बर्थडे आने वाला है आपका 48 का। तो देखिए राजेंद्र जी, ऐसा है कि टेस्ट तो कभी भी मौका मिले तो कर लेना चाहिए, हार्म कुछ नहीं है, थोड़ा पैसा लग सकता है जैसे आपने प्राइवेट में बोला, गवर्नमेंट में बिल्कुल फ्री है सारे टेस्ट, आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा सकते हैं। अगर आप दिल्ली से बात करें, आई थिंक करमपुरा से, तो सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ब्लड टेस्ट बिल्कुल फ्री है, हेल्थ चेकअप अवेलेबल है और आपका इजीली टेस्ट हो जाएगा। आपकी उम्र 47 साल है, तो 40 साल के ऊपर यूजली सबको, एडल्ट मेल को भी हेल्थ चेकअप करा लेना चाहिए। हमने फीमेल इसलिए बोला था क्योंकि उनको एक प्रेगनेंसी का इशू आ जाता है, जो कि एक फिजियोलॉजिकल स्टेट है, कोई बीमारी नहीं है, बट प्रेगनेंसी में अगर आप पहले से सतर्कता रखेंगे तो

0: प्रॉब्लम नहीं होगी, वो बीमारी नहीं कहेंगे उनके। अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है कि फीमेल्स को ज्यादा बीमारी होती है, मेल को कम होती है, ऐसा कुछ नहीं। मेल को ज्यादा होती है, मेल ही सबसे ज्यादा सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, सबसे ज्यादा शराब पीते हैं, तो इसलिए फीमेल्स को कम होती है। फीमेल की शक्ति बहुत ज्यादा होती है इम्यूनिटी, तो उनमें ज्यादा ऐसी बीमारी नहीं होती, एक्सेप्ट फॉर एक हम ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं, वो थोड़ी सी ज्यादा होती है क्योंकि वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि डेटा डजंट सजेस्ट दैट। दूसरा, आपने बताया कि टेस्ट कौन कौन से करेंगे, तो 40 साल से ऊपर सभी को एक बार हेल्थ चेकअप करा लेना चाहिए। उसमें जैसे कि सीबीसी ब्लड हीमोग्लोबिन, आपके सेल्स कितने हैं वो चेक हो जाना चाहिए, एनीमिया है नहीं है वो चेक होता है। हम लोग एलएफटी और लिवर फंक्शन टेस्ट और एक केएफटी किडनी फंक्शन टेस्ट भी कराते हैं। उसके अलावा एक यूरिन टेस्ट होना चाहिए जिससे कि आराम से शुगर का पता चल सकता है, आपको कोई किडनी में प्रॉब्लम है या नहीं वो पता चलता है। इसके अलावा जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपका ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और जनरल चेकअप होगा कि आप दिखने में पतले हैं, मोटे हैं। मोटापा भी एक तरह की बीमारी है अगर आप कहें तो, उससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो एक रूटीन हेल्थ चेकअप, और दूसरा है कि नॉर्मल रूटीन हीमोग्राम जिसको सीबीसी भी कहते हैं, एलएफटी, केएफटी और यूरिन टेस्ट, और आजकल शुगर भी करा लेना चाहिए, फास्टिंग शुगर या फिर एक एचबीए1सी टेस्ट होता है, ये बहुत है। इसके अलावा अगर कोई डिपेंड ऑन क्या सिम्टम्स हैं, अगर आप बीड़ी बहुत ज्यादा पीते हैं तो आपको एक चेस्ट एक्सरे करा लेना चाहिए, डॉक्टर बताएंगे आपकी चेस्ट एक्सरे करा लीजिए। अगर आप ड्रिंक ज्यादा करते हैं तो आपको कुछ और लीवर के टेस्ट बताए जाएंगे या लीवर का एक अल्ट्रासाउंड भी एडवाइस किया जाएगा। इवन मोटापे लोगों को फैटी लीवर हो जाता है तो अल्ट्रासाउंड एक ऐड होगा। अदरवाइज रूटीन टेस्ट है, 40 प्लस में करा लेना चाहिए, उसके बाद अगले 5-10 साल में रिपीट करना चाहिए अगर नॉर्मल है। अगर एबनॉर्मल है तो आपको डॉक्टर साहब कहेंगे आपको हर 3 महीने में अस्पताल आइए।
1: एक मैसेज हमारे पास, वो लिखते हैं, डॉक्टर साहब माय एज इज 72 इयर्स, फॉर प्रोस्टेट प्रॉब्लम कौन से टेस्ट एसेंशियल है अपार्ट फ्रॉम अल्ट्रासाउंड, फॉर प्रोस्टेट कैंसर आल्सो कौन कौन से टेस्ट एसेंशियल है। ये लिखते हैं प्रकाश चंद्रा फ्रॉम रोहिणी दिल्ली।
0: जी हाँ प्रकाश चंद जी, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, स्पेशली मेल्स को और एल्डरली मेल को जिनकी उम्र ज्यादा हो जाती है। प्रोस्टेट फिजियोलॉजिकली बढ़ जाता है, ऐसा नहीं कि वो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम में होता क्या है कि आपको यूरिन या तो रुक के आता है या फिर यूरिन बार बार धार में नहीं बनता या फोर्सफुली नहीं आ पाता है, ठीक से नहीं आ पाता है, ड्रिबल करता है, आपको बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो ये सारे कंसिक्वेंसेस होते हैं अगर आप 50 साल से ऊपर हो जाते हैं तो प्रोस्टेट नॉर्मली बढ़ता है। बट अगर आपको लगता है कि प्रोस्टेट कैंसर से भी मैं स्क्रीन करना चाहूंगा तो उसके लिए एक प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट होता है, PSA, आप वो ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, बड़ी इजिली सभी जगह अवेलेबल है। उसके अलावा अगर आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है तो आप किसी सर्जन को दिखा सकते हैं, वो एग्जामिन करके आपको देख सकते हैं कि आपका प्रोस्टेट कितना बड़ा है। डिजिटल एग्जामिनेशन होता है, पर रेक्टल एग्जामिनेशन कहते हैं, लैटिन के रास्ते से चेकअप होता है। अगर उसमें दिखता है कि वो बड़े होने के अलावा वहां हार्डनेस आ गई है, पत्थर जैसा टाइटनेस आ गई है और आपके लैटिन के रास्ते में कुछ और प्रॉब्लम है तो फिर आपको और इमेजिंग, अल्ट्रासाउंड या फिर सीटी स्कैन की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा यूरिन टेस्ट किया जाएगा, बट PSA टेस्ट स्पेसिफिकली प्रोस्टेट के लिए है और एक अल्ट्रासाउंड KUB विल बी, उससे भी आपको फायदा पड़ेगा, बट आपको सर्जन को दिखाना चाहिए प्रोस्टेट की प्रॉब्लम के लिए।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर, हेलो।
2: हेलो
1: जी, अपना नाम बताएं, कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: देवेंद्र शर्मा बोल रहा हूँ जी, मेरठ से।
1: अच्छा बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
2: पूछना चाह रहा हूँ, मेरे जिसे कमर से दर्द हो, पैरों में चल जाए, इसके लिए क्या टेस्ट करना है, डॉक्टर साहब से ये पूछना था।
0: आपका नाम क्या था सर जी?
2: देवेंद्र शर्मा बोल,
0: देवेंद्र शर्मा जी। अच्छा, वो आप ये बताएंगे कि ये आपकी उम्र कितनी है?
2: मेरी उम्र 60 है।
0: 60 इयर्स है, अच्छा। और पैरों में दोनों साइड करंट जाता है, एक जगह करंट जाता है?
2: नहीं, दोनों में चलता है जी,
0: दोनों में जाता है। तो देखिए देवेंद्र जी, ऐसा है कि आपको पीठ में प्रॉब्लम हो रही है, कह रहे हैं करंट जैसा आ रहा है, ऐसा हो सकता है कि आपको प्रोलैप्स डिस्क की प्रॉब्लम हो, जो कि आपकी स्पाइन की कोई डिस्क थोड़ी सी खिसक गई हो। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, करंट आ रहा है और करंट बहुत ज्यादा है, तो करंट कई बार थोड़ा आता है, कई बार इतना ज्यादा होता है कि आप चल नहीं सकते हैं, आप अनबियरेबल हो जाता है, असहनीय हो जाता है। अगर इस स्टेज में पहुंच गया तो इसका मतलब बहुत ज्यादा है ये, तो आपको किसी न्यूरोसर्जन कहते हैं, दिमाग के सर्जन होते हैं जो, उनको दिखाना चाहिए, या ऑर्थोपेडिक सर्जन, हड्डी वाले डॉक्टर साहब भी आपको अच्छी एडवाइस दे सकते हैं। उसके लिए वो जहां तक है, पहले तो एक एक्सरे करेंगे आपका पीठ का, अगर एक्सरे में कोई हड्डी दबी हुई आई है या कोई टेढ़ी आई है या कोई हड्डी बढ़ गई है, कई बार कोई TB भी, ऐसी डिजीज भी आ जाती है, तो एक्सरे करके और आपके पैरों के एग्जामिनेशन करके और कई बार नसों का कोई टेस्ट होता है NCV, वो करके आपको बता सकते हैं कि आपको डिस्क प्रोलैप्स हुई है नहीं है। अगर ज़्यादा होता है तो फिर MRI की एक जांच और होती है, उसको भी कर सकते हैं। तो बेस्ट रहेगा आप किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन या न्यूरोसर्जन से मिले और अपने इस दर्द का

0: कमेंट करें. थैंक यू, थैंक यू.
1: इसी से रिलेटेड एक मैसेज भी है हमारे पास, वो लिखते हैं, नमस्कार सर, मेरा फ्रेंड जिसकी एज 32 है, उसने 4 साल पहले इंटरनल हेमोरॉयड्स की सर्जरी करवाई थी. 3 साल तो उसे आराम रहा, पर अब रुक रुक कर फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है. वो हर महीने हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाता है, अभी 13 पॉइंट है. उसे परमानेंट इलाज के लिए कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए? क्या उसे दोबारा एंडोस्कोपी करवानी चाहिए? ये लिखते हैं पवन फ्रॉम सोनभद्रा.
0: जी हाँ पवन जी, आप अपने दोस्त की बड़ी हेल्प कर रहे हैं, सुन के बहुत अच्छा लगा. हमने अभी दोस्ती का सॉन्ग भी चलाया था. उनको एक बार उनको किसी सर्जन ने शायद देख लिया है, जैसे हेमोरॉयड की प्रॉब्लम कह रहे हैं, इसको हिंदी में जैसे बवासीर भी कहते हैं, बहुत ही कॉमन है. जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज की शिकायत होती है, उन लोगों को ज़्यादा होता है. जो लोग ज़्यादा सलाद या फाइबर वाली डाइट नहीं लेते हैं और उन लोगों को भी ये प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा रहती है. और जिनको कई लोगों की मूवमेंट कम होती है, तो टाइम पे खाएं, टाइम पे अपने सलाद वलाद खाने के पूरा ध्यान रखें. लेग्जेटिव करके दवाई होती है जिससे कि पेट थोड़ा जल्दी साफ हो, तो ऐसी दवाइयाँ कई चूरन भी मिलते हैं, आयुर्वेदिक वाले चूरन भी अवेलेबल हैं. उससे भी अगर आप रात को लें तो सुबह आपका जो मूवमेंट है या फिर स्टूल है वो सॉफ्ट रहेगा और इजीली आएगा, तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा. बट एक बार जब बवासीर हो जाता है तो इंटरनल वाला उतना दर्द नहीं करता है जितना कि एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स करते हैं. तो कई बार दर्द नहीं होता लेकिन ब्लीडिंग होने लग जाती है, आपको खून की कमी हो जाएगी. तो आपको सर्जन के पास जाना चाहिए, वो एग्जामिन करेंगे. उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है सर्जरी की ओपीडी में, प्रोक्टोस्कोप कहते हैं, उससे देख कर वो बता सकते हैं कि वो जो पहले किया था वो दोबारा से आ गया है या फिर कोई नया वाला बवासीर बन गया है. और उसकी आजकल थेरेपी अवेलेबल है, इंजेक्शन लगा के उस नस को सुखाया जा सकता है, और नहीं तो कई बार सर्जरी करनी पड़ती है. तो आप अपने सर्जन के पास जाइए, नहीं तो हमारे गवर्नमेंट के अच्छे अस्पताल भी हैं. दिल्ली में आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जा सकते हैं, उसके बगल में सफदरजंग है, RML है, बहुत सारे अस्पताल हैं. बट पहले अपने सर्जन के पास जाइए, उनसे पूछिए कि ये दोबारा कैसे हो गया और क्या नई परेशानी हो गई, और कब्ज के भी ख्याल रखें कि कब्ज ना हो आपको.
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर. हेलो.
2: हेलो, नमस्कार जी मैम.
1: नमस्कार, अपना नाम बताएं, कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: मैम मेरा नाम अजय है और मैं दिल्ली में अलीपुर से बात कर रहा हूँ मैम.
1: अच्छा बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
2: मैम मेरा डॉक्टर साहब से क्वेश्चन है कि मेरी ना जैसे एज 36 ईयर्स है, मेरे पास 7-8 दिन से ना सिर में दर्द रहता है, कभी हो जाता है ज्यादा कभी कम, मतलब 24 घंटे में 5-7 घंटे रहता है, और आंखों में भी थोड़ा सा दर्द रहता है. तो कोई चेकअप वगैरह करवाना पड़ेगा, कोई टेस्ट वगैरह? मैं वैसे नॉर्मल चीज है मैम, ये क्या था?
0: अच्छा नहीं, आपका सर दर्द कितने दिनों से है ये बताएंगे? मतलब अभी रिसेंटली
2: 5-7 दिन से है सर ये.
0: 5-7 दिन से. अच्छा देखो, सर दर्द बड़ा ही कॉमन सा चीज़ है. अगर आपको बहुत ज़्यादा नहीं है, आराम से आप हमारा रेडियो का प्रोग्राम सुन रहे हैं और आप अच्छी तरह बात कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपका सर दर्द ज़्यादा नहीं है. तो आप वेट कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपको रिसेंटली कोई इन्फेक्शन हुआ है, जैसे कि जब सोर थ्रोट होता है, गले का इन्फेक्शन हो जाता है, आपका नाक बहने लग जाती है या गले में खराश होती है, तो एक तो वायरल इन्फेक्शन के सिम्टम्स कहते हैं, उसके साथ कॉमन है सर दर्द होना. तो ऐसा हो सकता है, इसके अलावा कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो तो आपका सर दर्द होगा. अगर ऐसे कोई सिम्टम है तो 4-5 दिन आप अपने आस पड़ोस के किसी डॉक्टर से दवाई ले सकते हैं, और एंटी एलर्जिक एंड अदर एंटी हिस्टामिनिक, उससे ठीक हो जाएगा. शॉर्ट है. अगर 7 दिन से ज़्यादा होता है, 2-3 हफ्ते चलता है, या बहुत तेज सर दर्द होता है, जैसे एक हम कहते हैं थंडर क्लैप हेडेक, एक ताली बजाते हैं जैसे इस तरह से आपको हेडेक आया और बहुत तेज दर्द है, अगर इस तरह का कोई हेडेक है और जैसे कि नस फड़कने जैसा दर्द है जो कि पल्सटाइल कहते हैं हम लोग, उसके लिए आप अस्पताल इमीडिएटली जा सकते हैं. अदरवाइज मेरे ख्याल से आजकल मौसम बदल रहा है, चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये वायरल इन्फेक्शन से हुआ होगा. आप अच्छा हाइड्रेशन रखें, पानी वानी ठीक से लें, और एक पैरास्टामोल की गोली लेके रेस्ट करें.
2: खाने पीने में सर कोई चेंज कर सकते हैं क्या, जैसे कोई चीज जैसे घर में कोई घरेलू उपचार कर सकते हैं इसके लिए?
0: नॉर्मल घर का खाना खाइए, आजकल देखो मौसम खराब हो रहा है, नॉर्मल घर का रोटी खाइए, चावल खाइए, बाहर का बंद जंक फूड बंद कीजिए और सिगरेट बीड़ी बंद कीजिए, ठीक हो जाएगा सब. थैंक यू लॉर्ड.
1: डॉक्टर साहब, हम मेडिकल हेल्थ चेकअप की बात कर रहे हैं, टेस्ट के बारे में आप बता रहे हैं, लोग अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग क्वेरी से टेस्ट पूछ रहे हैं, तो कौन से टेस्ट हमें करवाने चाहिए और कौन सी एज में स्टार्ट करने चाहिए?
0: बिल्कुल शिल्पा जी, जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन कंटिन्यू किया था, उसमें हम एडल्ट तक तो आ गए थे, फीमेल प्रेग्नेंट भी हमने कवर कर लिया था. अब एक एडल्ट जैसे मेल हो गया और जेरियाट्रिक पॉपुलेशन रह गई है, एल्डरली पॉपुलेशन, तो वैसे जैसे कि हमने पहले वाले श्रोता

0: आपको बताया था कि 40 साल के अराउंड आपको एक बार ब्लड टेस्ट या रूटीन टेस्ट करा लेना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका हीमोग्लोबिन कितना रहता है, आपको कुछ और LFT या RFT किडनी फंक्शन लीवर फंक्शन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बट एक मेरी प्रैक्टिकल एडवाइस है कि हम सबको ब्लड डोनेशन करना चाहिए। हम हर 3 महीने में, सब श्रोताओं को मैं बताना चाहूँगा, हर आदमी, हर फीमेल, हर मेल हर 3 महीने में एक बार ब्लड डोनेट कर सकता है। और हम सब जानते हैं रक्तदान महादान, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और हम लोग अस्पतालों में काम करते हैं, हमारे यहाँ कई बार एक्सीडेंट के मरीज आ जाते हैं जिनके कोई रिलेटिव नहीं होते हैं, दे आर डेस्टिट्यूट, तो उनको ब्लड हमें देना पड़ता है और कोई डोनर ही नहीं होता है। तो हमें अगर इस तरह के कुछ अच्छे महादान करने वाले लोग मिल जाएं भारत में तो हमारे ब्लड बैंक में कोई ब्लड की कमी नहीं होगी। इससे फायदा ये रहेगा कि इन जब ब्लड बैंक में जब ब्लड टेस्ट करते हैं तो आपका रूटीन ब्लड टेस्ट भी हो जाता है। तो इसमें अच्छी बात है कि आपका हीमोग्राम चेक होता है, आपके वायरल मार्कर्स टेस्ट होते हैं, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV टेस्ट, जो कि आपको अगर हैं पहले से तो वो पता चल जाएंगे और आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। आजकल इन सब का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो मैं चाहूंगा कि आप अपना हेल्थ चेकअप जब कराने जाएं उससे पहले आप बोलेंगे आज मैं ब्लड डोनेशन करने के लिए जाऊंगा, और वहीं पर आपको डॉक्टर साहब बता देंगे कि आपका हीमोग्लोबिन ठीक है, आप ब्लड दे सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि अगर ब्लड आपका कम है, हीमोग्लोबिन कम है, तो डॉक्टर साहब बोलेंगे आप हमारे यहां से 1-2 ब्लड यूनिट चढ़वा के जाइए, आप देने के लिए नहीं, आप लेके जाइए, और हमारे ब्लड बैंक वाले जरूर दे देंगे आपको 1-2 यूनिट ब्लड। बट जो हेल्दी हैं दे शुड गो एंड टेस्ट देमसेल्व्स फॉर रूटीन टेस्ट, एंड और वो रिपोर्ट भी बाद में आपको घर में आ जाएगी। अगर कोई एबनॉर्मल टेस्ट होती है तो दे टेल यू एट द होम, ऐसा नहीं कि सबको बता दें कि इनका हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव है। तो वो जो कॉन्फिडेंशियलिटी है तो वो रखते हैं ब्लड बैंक वाले। तो मैं सभी श्रोताओं को एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक अच्छे ब्लड डोनर बने और देश को और हमारे डॉक्टरों को हेल्प करें।
1: से टेस्ट भी हो जाएगा और एक मन में जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी उसकी बात ही अलग है।
0: Exactly, खून देने के बाद जो आपको अच्छा महसूस होगा और वो 2 कोल्ड ड्रिंक भी आपको देंगे तो यू विल बी फीलिंग वेरी हैप्पी दैट आपने लोगों की हेल्प की है। आई विल कंटिन्यू विद अदर थिंग, जेरियाट्रिक्स। तो दूसरी पॉपुलेशन जो है जो कि 60 साल से ऊपर है जेरियाट्रिक, उनकी बड़ी प्रॉब्लम है, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उन लोगों को ज्यादा स्क्रीनिंग टेस्ट की जरूरत है। तो उसमें ही जैसे कि हमें उन लोगों को कार्डियक एग्जामिनेशन से लेके उनका हमें ECG भी कराना चाहिए, उन लोगों के ब्लड टेस्ट में हमें कैल्शियम फॉस्फेट और हमें सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेज ये सारे टेस्ट भी लेने चाहिए। इसके अलावा उनको बहुत सारे फ्रैक्चर होने के रिस्क होते हैं, तो उसमें जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस का टेस्ट है, डेक्सा स्कैन, वो सब भी करने चाहिए। अगर कोई ग्राहक श्रोता पूछेंगे तो हम उसको भी बताएंगे कि ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में।
1: फिलहाल हमारे पास एक कॉलर है लाइन पर। हेलो।
2: हेलो,
1: नमस्कार जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: मैं सिंह बोल रहा हूँ, डॉक्टर साहब से सवाल है।
1: जी पूछिए।
2: डॉक्टर साहब, मैंने अभी अपना टेस्ट कराए थे तो टेस्ट में सब कुछ नॉर्मल है, जैसे लीवर वगैरह ये सब ठीक है।
0: गुड, अच्छी बात है।
2: उसमें मेरी एज है 65।
0: ओके।
2: और उसमें मेरा लीवर थोड़ा फैटी है क्योंकि मैंने अभी 1-2 साल पहले भी कराया था, तब भी ये दिक्कत थी, और अभी कराया उसमें भी यही है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, भूख वगैरह सब कुछ लगती है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे फैटी लीवर को जो आया अगले टेस्ट में ना आए, या उसे कंट्रोल किया जाए?
0: अच्छा, आपने बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा है। अगर इस समय हम जो देख रहे हैं कि हमारे जो जनता है, जो पब्लिक है, 40% लोगों को मोटापे की शिकायत है, ओबेसिटी की शिकायत है, तो मैं जानना चाहूंगा कि आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है केजी में, हाइट आपके
2: सेंटीमीटर? जो हाइट है सर वो है 5'3"
0: 5'3", तो आपकी हाइट लगभग 150।
2: और वेट भी मैं आपको
0: 157
2: वेट है मेरा, जो भी मैंने किया था टेस्ट के टाइम पे
0: 57.5। अग्रीड। तो ठीक है, आपका लगभग हाइट होगी 157 सेंटीमीटर और वेट भी आपका 57 है, तो वेट उतना ज्यादा नहीं है। मेरे ख्याल से कमर का साइज भी आपका 32 या 34 से ज्यादा नहीं होगा।
2: हाँ जी।
0: तो आपकी वेट हाइट ज्यादा नहीं है, तो दैट्स गुड, आप ओबीज नहीं है, आपका वेट ज्यादा नहीं है। ज्यादातर जो फैटी लीवर वाले लोग होते हैं वो मोटापे की वजह से होते हैं, उनको डायबिटीज की शिकायत होती है, उन लोगों को होता है। तो आपको रेगुलर देखो, खान पान से आपका ठीक हो जाएगा। मेरे ख्याल से फैटी लीवर के भी 3 स्टेज होते हैं, स्टेज 1, 2, 3। तो जहां तक आपका अर्ली स्टेज में होगा, आप रेगुलर खाने में बहुत ज्यादा ऑयल और फैट खाने में ना लें, तेल से भुनी हुई चीजें ऐसी चीजें कम करें, सलाद खाने में रखें, फल फूल खाने में रखें, टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें और थोड़ा मॉर्निंग वॉक कर लें। 15-20 मिनट का वॉक अच्छा रहेगा आपके लिए, और इससे आपका फैटी लीवर भी ठीक हो

0: जाएगा. ओनली थिंग इज अगर आप एक लीवर का टेस्ट LFT करा सकते हैं जिसमें कि ट्रांससमेनाइटिस के लिए चेक कर सकते हैं SGOT या GPT, तो LFT एक बार अपने जनरल फिजिशियन डॉक्टर साहब को आप दिखा लें या पेट के डॉक्टर को दिखा लें. अगर LFT ठीक है तो आपको ज़्यादा डरने की बात नहीं है, आपने वेट कंट्रोल रखा है, बहुत अच्छी बात है. सुन के बहुत अच्छा लगा कि आपका वेट बिल्कुल ही कंट्रोल में है और आप अपने सेहत के लिए इतने फिर भी चिंताजनक हो रहे हैं. तो नथिंग टू वरी, अगर LFT ठीक है तो आप चिंता नहीं करें. रूटीन हेल्थी LFT लीवर फंक्शन टेस्ट,
1: अच्छा
0: ये करा के अपने फिजिशियन को आप दिखा दीजिए एक बार.
1: थैंक यू,
0: थैंक यू, वेलकम.
2: थोड़ी बात सेहत की, थोड़ी बात संगीत की, तो चलिए सुनते हैं सुरीला गीत. ये है हमारे डॉक्टर साहब की फरमाइश पर. डॉक्टर साहब, आप किसको डेडिकेट करना चाहेंगे ये गीत?
0: मैं डेडिकेट करना चाहूंगा इस गीत अपनी मोहतरमा को, माय वाइफ डॉक्टर बबीता को. आई थिंक दिस इज चुरा लिया है
2: तुमने,
0: यादों की बारात इज द मूवी. थैंक यू, थैंक यू.

0: इलाज से आसान है नियमित जांच। तो डॉक्टर साहब, सीनियर सिटीजन्स के लिए कौन से टेस्ट या वैक्सीनेशन आप सजेस्ट करेंगे, बताएंगे?
1: जी हाँ, जेरियाट्रिक पॉपुलेशन और एल्डरली जो कि 60 साल

0: ऊपर हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल टेस्ट भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमारा शरीर उम्र के साथ ढलता है तो बहुत सारी बीमारियां हमें ले लेता है। और दूसरा ये भी है कि उम्र के साथ जैसे कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, लीवर डिजीज़ है, कार्डिक डिजीज़ है, वो सब बढ़ती रहती हैं, ऊपर से आपका शरीर कमज़ोर हो जाता है तो आपको रूटीन टेस्ट में बढ़ जाते हैं। तो इन सब में देखा गया है कि जेनेटिक पॉपुलेशन में कई बार हम स्क्रीनिंग तो करते ही हैं तो उनका जैसे रूटीन टेस्ट तो सेम ही रहते हैं, CBC, LFT, RFT, जो किडनी फंक्शन लीवर फंक्शन हम करते हैं, शुगर का टेस्ट भी हमें करना चाहिए। इसके अलावा हमारे को जैसे इस एज में बड़े सारे इन्फेक्शन भी कॉमन रहते हैं, खासकर जिन लोगों को जैसे COPD की बीमारी है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़, दिल्ली में और हमारे शहरों में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन भी है, तो बहुत लोगों को COPD की प्रॉब्लम होती है। तो 60 साल से ऊपर हैं, सांस की प्रॉब्लम हो रही है, बार बार उनको अस्पताल आना पड़ रहा है, तो उन लोगों को एक रेस्पिरेटरी वैक्सीनेशन होती है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की, जिनमें कि एक आता है कि आपको न्यूमोकोकल वैक्सीन होती है तो वो लगवा सकते हैं, और वो एक इंजेक्शन लगता है, उसके एक साल बाद दोबारा लगता है, फिर 5 साल तक ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो न्यूमोकोकल और दूसरा इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो कि ईयरली लगती है, इसके लिए आपको अपने निकटतम जो फिजिशियन है उनके पास जाना चाहिए, न्यूमोकोकल वैक्सीन एज वेल एज इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के बारे में पूछना चाहिए। आजकल एक सिंगल्स के लिए भी वैक्सीन आ गई है जो कि हर्पीस जोस्टर इन्फेक्शन होता है, तो उसकी भी आ गई है। तो आप अपने अपने आप नहीं लगाना चाहिए ये सारी जो मैं दवाइयाँ बता रहा हूँ या वैक्सीनेशन बता रहा हूँ, इट्स नॉट कि आप बाजार से खरीद के लगा लें, आपको एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से मिलना चाहिए, अपना सबका एक एक फिजिशियन होता है जो नियर बाई है, आप उनसे एडवाइस लीजिए कि क्या मुझे इससे फ़ायदा होगा, और ख़ासकर जिनको पहले से डिजीज़ है, जैसे कि कई सारे गठिया के मरीज़ हैं, जॉइंट के डिजीज़ है, और जिनको रेस्पिरेटरी डिजीज़ है और जिनको अस्थमा है, बार बार अस्पताल है, इन लोगों को ये ज़्यादा बेनिफिट करेगा। बाकी लोगों में भी अगर इंटरनेशनल गाइडलाइन देखेंगे तो दे रिकमेंड इट, बट हमने देखा है जिनको कि बार बार अस्पतालों में एडमिशन की ज़रूरत पड़ रही है उनमें ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और इससे आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा।
1: कॉलर है हमारे साथ लाइन पर, हेलो।
2: हाँ नमस्कार जी मैम, डॉक्टर साहब नमस्कार।
1: नमस्कार, बताइए क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल?
2: मेरा नाम महेश चंद्र जी है, मैं दिल्ली से ही बात कर रहा हूँ।
1: अच्छा, क्या प्रश्न है आपका?
2: हाँ मतलब ये मैं ये जानना चाह रहा था कि एक बार मैंने वजन ऊपर फेंका था तो तब से मतलब एक रात BP हाई हुआ था, और BP हाई होने के बाद तब से ये मालूम पड़ता है कि मतलब दिल कमजोर सा हो गया, कोई वजन उठाओ तो हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, तो मुझे मतलब कौन सा टेस्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए?
0: महेश चंद जी आपकी एज कितनी होगी?
2: मेरी एज डॉक्टर साहब 55 साल है।
0: 55 साल है, और वजन कब उठाया था आपने?
2: वजन करीब हो गए 3-4 महीने डॉक्टर साहब, मैं अभी फिलहाल मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहा हूँ।
0: अच्छा, वेरी गुड। तो होम्योपैथिक से आराम नहीं मिला आपको?
2: नहीं नहीं आराम मिल रहा है डॉक्टर साहब, लेकिन फिर भी हार्ट भी हो जाती है फास्ट।
0: अच्छा, नहीं वजन कैसे उठाया था आपने, एग्जैक्टली नहीं बताया आपने कोई?
2: वजन जो है ये डॉक्टर साहब ये पन्नी वाले रोल होते हैं जो प्लास्टिक की पन्नी के जैकेट बिकते हैं, वो रोल 3 रोल उठा के मैंने मचान पे फेंक दिए थे।
0: अच्छा ठीक है। नहीं देखिए ऐसा है कि अगर आपको कोई सामान उठा के आपको उस समय आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, धड़कन बढ़ जाती है, सांस फूल जाती है, हो सकता है आपको कार्डिक डिजीज हो, तो उसके लिए आपको निकटतम अस्पताल जहां पर भी आप रह रहे हैं महेश चंद जी वहां जाइए, आपको एक हार्ट के लिए एक ECG की जाँच होती है, आप वहाँ पर डॉक्टर साहब आपको ECG करवाएंगे, ECG में आपसे पता चल जाता है कि आपको धड़कन ज़्यादा है कम है, आपका ब्लड प्रेशर देखा जाएगा, आपने बताया ब्लड प्रेशर भी है आपको,
2: तो आप ब्लड प्रेशर ECG की जांच करी थी यहाँ शास्त्री पार्क में गया था तो वो ECG तो लगभग सही बताया था उन्होंने।
0: अच्छी बात है, ECG मतलब ऐसा हो सकता है कि आप जब काम कर रहे हो तभी धड़कन बढ़ रही है इसका मतलब।
2: जी, हाँ, तो मैं वजन उठाता हूँ मतलब कोई वजन लेके चलता हूँ तब ज्यादा धड़कन बढ़ती है।
0: तो आप एक बार

0: भी अब कंट्रोल में है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको खून की कमी हो, एनीमिया हो, जिसमें कि आप कुछ भी काम करें तो उसमें जल्दी सांस फूल जाती है, धड़कन हो जाती है, तो आप रूटीन चेक कराइए। और मेरे हिसाब से हमारे पास ब्लड प्रेशर की, हार्ट की बहुत सारी एलोपैथिक दवाइयां हैं, तो हमें होम्योपैथिक का भी उतना ज्ञान नहीं है कि कौन सी दवाई से कितना बीपी और हार्ट की प्रॉब्लम ठीक होगी, उसमें मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। बट अगर आपने टाइमली ट्रीटमेंट करा के आप सेटिस्फाइड नहीं है, अभी आपकी हार्ट की प्रॉब्लम है, तो आप नियर बाय शास्त्री पार्क या किसी भी जगह जाके किसी सरकारी अस्पताल में भी जाइए, वहाँ फिजिशियन से मिलिए, आपका रूटीन जो हमने बताया जैसे हीमोग्राम सीबीसी टेस्ट भी करेंगे, एलएफटी आरएफटी, ऐसा हो सकता है आपका लीवर में भी कोई प्रॉब्लम हो, और ऐसा नहीं कि हार्ट में ही हो, तो इसमें ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि आपका अगर ईसीजी ठीक है तो हार्ट नहीं, आपको कुछ और ऑर्गन में प्रॉब्लम हो सकती है, तो पूरा जनरल चेकअप कराइए, लीवर, किडनी, सीबीसी और हीमोग्राम, और मे बी चेस्ट एक्स रे भी कराना पड़ सकता है, तो आप एक अच्छे फिजिशियन से मुलाकात कीजिए।
1: ठीक है, ठीक
0: है, नमस्कार।
2: एक और कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
3: हेलो,
2: नमस्कार जी, अपना नाम बताएं, कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
3: सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार जी। मेरा नाम अमित त्यागी है, नेचुरल डिजाइन मैन।
0: हाँ,
3: मेरी दिक्कत ये है कि मेरी हाथ की हथेली और पैर के कलवे होते हैं
2: जी,
3: हाथ की हथेली और पैर के कलवे जो है मोस्टली गर्म रहते हैं वो।
0: अच्छा,
3: दिक्कत मुझे कुछ नहीं है, पर इसका कोई चेक वगैरह कराना होता है क्या?
0: त्यागी जी, देखियो आपकी एज कितनी हो गई है, हम ज्यादातर से एज पूछ रहे हैं, गलत है, अभी लकीली कोई फीमेल नहीं आई है स्पीकर। 35। अच्छा, आप तो बहुत यंग हैं अभी भी, तो गुड है। नहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि वार्म, तो देखो खून, हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं कहते हैं, तो खून तो है जो कि गर्म है, और आपका हाथ हथेली गर्म है, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा परेशानी नहीं है। और थोड़ा किसी, हर किसी की बॉडी ना इंडिविजुअल अलग अलग रहती है, कुछ की थोड़ी सी वार्म होगी, गर्म होगी, किसी की थोड़ी सी ठंडी रहती है, बट अगर उस गर्मी में इतना नहीं कि कुछ परेशानी हो, मतलब इतनी ज़्यादा है कि कोई हाथ पकड़े तो उसको लगे कि अरे हाथ जल गया, इतनी गर्मी नहीं है, तो मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं है, रिलैक्स रहिए। अच्छा है आपका खून गर्म है, तो आप हेल्दी हैं एक तरह से। कुछ लोगों को बहुत पसीना भी आता है हाथों में, इतनी गर्मी होती है, बहुत पसीना आता है करके, तो अगर पसीना वसीना ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो एक बार थायराइड का टेस्ट करा सकते हैं आप। ऐसा हो सकता है कुछ लोगों को जो हाइपरथायराइड होते हैं, उन लोगों को थोड़ी ज्यादा गर्मी लगती है और हॉट सा लगता है, अदरवाइज अगर सब चीज ठीक चल रहा है, बहुत ज्यादा धड़कन नहीं है, बहुत ज्यादा वेट लॉस नहीं हो रहा है, और आपको बहुत ज्यादा गर्म नहीं है, तो आप रूटीन एक वो करा सकते हैं हेल्थ चेकअप में, रूटीन सीबीसी और एक एलएफटी आरएफटी, बट आई विल सजेस्ट कि थायराइड करा लें अगर आपको बहुत गर्म सा लग रहा है और आपका वेट लॉस भी हो रहा है तो।
3: धन्यवाद।
2: एक और कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
4: नमस्कार जी।
2: नमस्कार, अपना नाम बताएं, कहाँ से कॉल कर रहे
4: हैं? नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी।
4: जी मैं यामिन भाई रेडियो वाला सिरोड़ी लोनी जिला का
2: जी। क्या प्रश्न है आपका?
4: जी मैं सर से जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि हमारे दोस्तों को डायबिटीज की बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो उनका बीपी भी 160-170 के आसपास ही रहता है, तो इसका क्या कारण है, इसका क्या समाधान है, ये भी बताएं सर। रेडियो बोल रहा हूँ।
0: हाँ नमस्कार। नहीं बिल्कुल, जैसे कि आप, अच्छा लगा कि आप दोस्तों के लिए इतने चिंतित हैं, आपको शुगर नहीं है लेकिन आपके दोस्तों को है, तो मेरे ख्याल से आप तो हेल्थ कॉन्शियस हैं, आप अपने सेहत का ध्यान रखते हैं, लेकिन आपके दोस्त नहीं रखते हैं, तो सबसे चीज़ इम्पॉर्टेंट आपको नोट करनी होगी कि क्या आपके दोस्त बहुत मोटे तो नहीं हैं, क्या उनका वजन बहुत ज़्यादा तो नहीं है, अगर उनका वजन ज़्यादा है तो चांसेस बढ़ जाते हैं उनको कि डायबिटीज़ भी हो और उनको लीवर की प्रॉब्लम भी हो। इसके अलावा कई लोग जैसे बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, उन लोगों को भी चांसेस ज़्यादा है कि उनको लीवर की प्रॉब्लम हो, फैटी लीवर हो, उसकी वजह से और प्रॉब्लम हो सकती है, और खान पान से आपको थोड़े से चांसेस बढ़ जाते हैं डायबिटीज़ होने के, तो आपको खान पान का भी ध्यान रखना है, मोटापे का ध्यान रखना है, बिकॉज इट्स अ लाइफस्टाइल डिजीज़। तो जैसे कि कमर की मोटाई अगर देखें, तो अगर कोई फीमेल है जिसकी कमर 34 से ज़्यादा है तो हम उसको ओबीज कहते हैं, सिमिलरली मेल में जिसकी कमर 38 से ज़्यादा है इंडियन सेटिंग में, उनको भी मोटापे में आ जाएगा 36 से 38। तो अगर आप टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें, नॉर्मल फल फूल और ज़्यादा जंक फूड ना लें, वजन का ध्यान रखें, थोड़ा सा जॉग या वॉक कर लें टाइम पे सुबह, तो ये सारी डिजीज़ रोक सकती हैं। और मोटापा, मैंने जैसे पहले भी बोला, 40% लोग हमारे यहाँ मोटे हैं इस समय, और अमेरिका में और ज़्यादा है, 50-60% तक पहुँच चुका है, तो हम लोग भी ज़्यादा दूर नहीं है कि हमें 30-40% लोगों को हमें डायबिटीज़ भी मिल जाए, तो हमें अपना लाइफस्टाइल और उसको चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा वॉक ज़्यादा करना पड़ेगा और खाने में परहेज, और चेकिंग भी करानी पड़ेगी। इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट थिंग है कि डॉक्टर्स का भी रोल है, तो एक मैं आपको सिंपल

0: बताऊंगा। डायबिटीज़ का टेस्ट बहुत ही सिंपल हो चुका है। सुबह भूखे पेट अगर आप एक शुगर टेस्ट कराएं, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज कहते हैं हम, अगर आपका शुगर की रीडिंग 126 मिलीग्राम परसेंट से ज़्यादा है तो इसका मतलब आपको डायबिटीज़ हो गई है, और अगर आपको 100 से 126 के बीच में आता है तो आपको प्री डायबिटीज़ है और आपको डायबिटीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर 100 से कम है तभी आपका नॉर्मल है, ये फास्टिंग शुगर है, सुबह सुबह भूखे पेट बिना चाय पिए बिना उसके। और जो लोग भूखे टेस्ट नहीं करा सकते हैं, कुछ लोग ऐसा भी बहाना बनाते हैं कि मेरे यहाँ लैब बहुत दूर है मैं कैसे टेस्ट करूँगा, और चाय पिए बिना तो मैं नहीं करा सकता, ऐसे लोग भी हमारे यहाँ कम नहीं है। उन लोगों के लिए एक HbA1c टेस्ट होता है, HbA1c, और बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है। उसमें चाय पी के आप समोसा खा के भी और इवन लड्डू खा के भी टेस्ट करा सकते हैं, बिकॉज ये 3 महीने का एवरेज शुगर देता है। तो जिस किसी प्राणी का ब्लड शुगर HbA1c 6.5 से ऊपर है हम उसको भी डायबिटीज कहते हैं। तो इसमें आपको भूखे जाने की जरूरत नहीं है, तो आपके लिए डॉक्टर्स ने थोड़ा सा इजी कर दिया है कि आप सिंपल बोलोगे मेरा एक HbA1c टेस्ट कर दीजिए और हमें पता चल जाएगा कि आपको शुगर है या नहीं है।
1: बिफोर फास्टिंग एंड आफ्टर दोनों तरीके से आप डायग्नोज कर सकते हैं डायबिटीज।
0: एग्जैक्टली, फास्टिंग सिंपल और नहीं तो HbA1c टेस्ट कभी भी करा सकते हैं, सोते समय उठते समय कभी भी करा लीजिए।
1: एक और कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो
2: हेलो,
1: नमस्कार जी।
2: नमस्कार जी, मैं मिसेस बेदी बोल रही हूँ पंचकुला से।
1: जी बताइए क्या प्रश्न है आपका।
2: मेरा प्रश्न कम है और डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट ज्यादा है
0: जी,
2: कि कोई मैसेजेस इनको चाहती हूँ ये स्प्रेड करें, क्योंकि हमारी कोई सुनता नहीं, इनकी तो सारी दुनिया सुनेगी।
0: नहीं,
2: मैं आपको अपने बारे बता दूं। मैं 75 इयर्स की हुई हूँ अभी।
0: ग्रेट।
2: और मेरी मेंटल हेल्थ बड़ी स्ट्रांग है, 35 साल से डायबिटिक हूँ, और अभी रिसेंटली लास्ट ईयर मेरी एक मेजर सर्जरी हुई, मैं गिर गई थी। पर और 26वां साल है कि मैं योगा में हूँ।
0: गुड।
2: हाँ, और उसी से और रेडियो की मैं बहुत दीवानी हूँ, जिससे आपसे मिली हूँ।
0: वेलकम। सुन के बहुत
2: अच्छा लगा। आप लोगों से मिलाया है तो रेडियो ही मेरी जान है। और अब मैं ये चाहती हूँ डॉक्टर साहब, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ कि आईज का चेकअप, डेंटल चेकअप हर साल जरूर करवाएं।
0: बिल्कुल।
2: और मैंने अपनी बॉडी भी डोनेट की हुई है।
0: ओहो, गुड, ग्रेट।
2: हमारी फैमिली में एक ट्रेडिशन है, जैसे मेरे मदर की आईज गई, अब मैं आईज के लिए अलग लिखाऊंगी और स्टडी के लिए बॉडी अलग से लिखाऊंगी, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास बॉडीज ही नहीं है
0: बिल्कुल
2: स्टडी
0: बिल्कुल
2: करने के लिए। तो मेरा तो रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप लोगों को बोलें कि ये डेंटल आईज का चेकअप और अपना पेट वेट का चेकअप जो है, आर्थराइटिस का,
1: जी
2: ये कराना चाहिए साल में एक बार।
0: बिल्कुल मैडम, आपको सुन के हमें बहुत बहुत अच्छा लगा कि आपने बताया कि आप 75 क्रॉस कर चुकी हैं, आपने 35 इयर्स ऑफ शुगर बिल्कुल कंट्रोल करके रखा है।
2: हाँ।
0: कभी आपको प्रॉब्लम नहीं पड़ी। बिल्कुल, हमने एक मैसेज दिया था शुरू में शिल्पा जी और हमने, कि ब्लड डोनेशन बहुत जरूरी है, सबको करना चाहिए। तो बेदी मैम, आपका सुन के मुझे और भी, मैंने ये भी बताया कि हम सबको डाइट और मोटापे का बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखना है, और योगा का बहुत बड़ा रोल है।
2: जैसे की बड़ी डिसिप्लिन्ड किस्म की लेती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा लाइफ का डिसिप्लिन हर एक में होना चाहिए, कि जैसे अब मैं 35 साल से अगर डायबिटिक हूँ, 4 बार इंसुलिन लगाती हूँ, तो इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए।
0: बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छी बात बताई है।
1: आपका एग्जांपल अपने आप में सभी श्रोताओं के लिए मोटिवेशन है कि हम सबको एक हेल्दी डाइट, अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए, हमें योगा करनी चाहिए, अच्छी डाइट लेनी चाहिए और रेगुलरली मेडिकल हेल्थ चेकअप लेना चाहिए, जिसपे हमारा आज का ये शो बेस्ड है। फिलहाल हमारे पास एक मैसेज है, मैसेज लेते हैं। वो लिख रहे हैं, हेलो रेडियो डॉक्टर नमस्कार, ये बोल रहे हैं चंद्रपाल प्रजापति कंकड़ खेड़ा मेरठ से। ये लिखते हैं, मेरी पत्नी जिनकी उम्र 55 साल है, उनको नाक में साइनस, नजला जुखाम, दांत दाढ़ में दर्द, सिर दर्द, एक साथ कई प्रकार की बीमारियां लगभग 1.5 साल से, हर बीमारी से संबंधित अलग अलग डॉक्टर से 3 या उससे अधिक दिनों का इलाज कराया, वह परहेज भी बराबर करती हैं, दवाई भी वक्त पर खाती हैं, लेकिन आराम नहीं लग रहा, समझ में नहीं आ रहा, बहुत परेशान है। क्या पूरे शरीर का चेकअप कराए या क्या करें, कुछ सलाह दें। और शुगर थायराइड रिपोर्ट नॉर्मल है, BP हाई रहता है।
0: बिल्कुल, जैसे कि इन्होंने बताया कि इनको बहुत जगह पेन है, दाढ़ में दर्द बताया, मेरे ख्याल से डेंटल पेन है और जगह जगह पेन हो रहा है, बट गुड थिंग इज शुगर नहीं है इनको, थायराइड भी ठीक है और ब्लड प्रेशर है, तो मोस्ट लाइकली ये एज

0: होंगी, 40+ होंगी इनकी जो भी श्रीमती जी हैं,
1: 55 साल की,
0: हाँ श्रीमती जी हैं। तो मेरे ख्याल से देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मॉडर्न मेडिसिन की अब आ गई है कि हमारे पास बहुत सारे स्पेशलिस्ट आ गए हैं, स्पेशलिस्ट कहें या सब स्पेशलिस्ट कहें, तो उसमें हार्ट के लिए अलग डॉक्टर है हमारे पास, दिमाग के लिए एक न्यूरोलॉजिस्ट है हमारे पास, टेंशन के लिए साइकियाट्रिस्ट है हमारे पास, पेट के लिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी।

सारे ऑर्गन एक साथ है। तो आई विल सजेस्ट आप अपने नियर बाय जनरल फिजिशियन या इंटरनल मेडिसिन के किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएं और अपनी ये सारी बीमारियों के बारे में बताएं अपनी श्रीमती जी के। और मेरे ख्याल से आपके लिए जो बोल रहे हैं या हेल्थ चेकअप बहुत जरूरी है, रूटीन हेल्थ चेकअप सारा होगा और उसमें आपके यही 3-4 टेस्ट हैं हमने जो बताए हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, ब्लड शुगर होगा आपका और

0: और जैसे आपको दांत में प्रॉब्लम है तो आपका दांत का एक्सरे या डेंटिस्ट से ओपिनियन ले सकते हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन हो सकता है या एक्सरे हो सकता है, तो आपको एक फिजिशियन से मिलना है। और ऐसा हो सकता है शुगर नहीं है तो और कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर या ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप एक जनरल फिजिशियन या इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट से मिले, आपको जरूर जरूर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप। श्रीमती जी,
1: डॉक्टर साहब, मेडिकल चेकअप की हम बात कर रहे हैं तो किन साइंस को हम रेड वार्निंग साइंस समझें, कि किन संकेत को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, हमें लगना चाहिए कि हाँ अब हम जाना चाहिए, हमें मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए?
0: हाँ, ये वार्निंग साइन बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम मेडिकल चेकअप और हेल्थ चेकअप की बात कर रहे हैं तो कई सारे हमारे पास मैसेजेज आते हैं कि ये हमारा ब्लड टेस्ट हो गया, इसमें कुछ बोल्ड से लिखा हुआ है, कुछ रिपोर्ट्स एबनॉर्मल दिखा रहा है, तो इसको क्या करें? तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि हेल्थ चेकअप के बाद भी आपको सिम्टम्स हैं या नहीं है। तो जैसे किसी को कहते हैं थायराइड टेस्ट कराया तो थायराइड बॉर्डरलाइन टेस्ट आ गया, तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपको थायराइड के सिम्टम्स हैं नहीं है। जैसे थायराइड जब कम काम करता है, जिसको हम हाइपोथायराइड करते हैं, तो उसमें व्यक्ति का वजन बढ़ने लग जाता है, उसको कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होती है, उसको कब्ज या कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, उसको बाल झड़ने की तकलीफ हो सकती है, उसको अगर फीमेल है तो उसको महीने रेगुलर नहीं आने लगेंगे या कम आने लगेंगे, ब्लीडिंग कम होने लगेगी, और वो स्लोनेस आ जाती है, वो इतनी एक्टिव नहीं रहते हैं, मेमोरी कम हो जाती है। अगर इस तरह के सिम्टम हैं तो हम बोलेंगे आप थायरॉयड टेस्ट करा लीजिए, तो एक फोकस टेस्ट होगा। और अगर टेस्ट एबनॉर्मल है तो फिर हम यही पूछते हैं कि अगर ये एबनॉर्मल है उसी को हम ट्रीट करें। इसी तरह एनीमिया का पार्ट है, अगर किसी बच्चे में, यंग बच्चे में अगर हमें एनीमिया मिलता है जो मिडिल एज है, तो ऐसा हो सकता है कि उसके पेट में कीड़े हों, जो कि सिंपल सा है, तो डीवॉर्मिंग या कीड़ों की दवाई देके हम एनीमिया को ठीक कर सकते हैं। यंग फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुएटिंग है, जिनको महावारी रहती है, तो उनको ब्लीडिंग क्योंकि हो रही है, उनको एनीमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उनको आयरन टैबलेट देके हम ठीक कर सकते हैं। बट अगर ऐसा ही एनीमिया किसी मेल पुरुष को 50 साल के बाद हो रहा है अगर, तो ऐसा हो सकता है कि उसको कोई इंटेस्टाइन में या आंतों में कोई कैंसर हो, जिसकी वजह से ब्लड लॉस हो रहा हो थोड़ा थोड़ा। अगर वो एनीमिया सिवियर है और मेल आदमी है तो चांसेस ज़्यादा है कि उसको शायद कैंसर ना हो, तो उसको हम एडवाइस करेंगे कि आप पेट का अल्ट्रासाउंड करा लें या सीटी स्कैन करा लें या एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखा लें, एंडोस्कोपी उसमें हेल्प करेगी। तो ये वार्निंग साइन होगा कि किसी को खून की कमी होगी, स्पेशली एल्डरली को, ठीक है। तो इसी तरह शुगर वाले पेशेंट को, जैसे डायबिटीज जब होती है तो उसको बार बार पेशाब जाना पड़ता है, तो हम नॉक्टूरिया कहते हैं, रात में उठ उठ के, पहले नहीं जाता था अब 3 बार जा रहा है, पॉलीयूरिया दिन में भी हो रहा है, उसको भूख भी ज़्यादा लग रही है लेकिन फिर भी वजन लॉस हो रहा है, मतलब खाना भी ज़्यादा खा रहा है फिर भी वजन लॉस हो रहा है, इसका मतलब कुछ शुगर शायद यूरिन में वेस्ट हो रहा है उसका। और इसके अलावा प्यास ज़्यादा लग रही है, तो पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया जैसे हम कहते हैं, तो उस तरह के सिम्टम्स हैं, तो उसको डायबिटीज़ के ज़्यादा चांसेस है, तो उन लोगों को ब्लड शुगर का टेस्ट करा सकते हैं या HbA1c का टेस्ट करा सकते हैं, तो इस तरह के फोकस टेस्टिंग हो जाएगी।
1: देखा जाए तो इलाज से आसान है नियमित जांच। एक कॉलर है हमारे साथ, हेलो।
2: हाँ जी,
1: नमस्कार, अपना नाम बताएं, कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: जी हम है ना कंकड़खेड़े से बोल रहे हैं।
1: अच्छा अच्छा, बताइए क्या प्रश्न है आपका?
2: 22 साल का लड़का है और इसको है ना उसमें टाइफाइड आने के बाद में इसके है ना पता नहीं क्या हुआ पैरों में, सिर्फ टाइफाइड आया, इन्फेक्शन हुई, इन्फेक्शन में टीबी होगी। अब है ना इसके ये दिक्कत है मैम, इसके पैर ठंडे हो जाते हैं और ठंडे होकर सुनपन हो जाता है, अकराट भी होता है, पैरों से चले नहीं जाता बात क्या, और लीवर में इन्फेक्शन है और यहाँ छाती में यहाँ पे एकदम ऐसा हो गया है इसके, मतलब ECG और इको करवाई में नॉर्मल आई है कि एकदम से ऐसा होता है धड़कन सी बढ़ जावे, बहुत ज्यादा घबराहट हो जावे और हाथ पैर।
0: अच्छा, नहीं नहीं, आपने बताया कि आपके बच्चे को टीबी की शिकायत कही गई है और उसको पहले शायद टाइफाइड हो गया था, बट उसका ECG ठीक है और बाकी टेस्ट ठीक है और पैरों में ठंड हो गई है।
2: 3 साल में तो बुखार टाइफाइड ही आता है।
0: हाँ नहीं, देखिए ऐसा, हाँ बिल्कुल ठीक, मैं समझ गया हूँ। तो आप मेरठ में, हाँ मेरठ मेडिकल कॉलेज भी आप उधर दिखा सकते हैं, बट टीबी बड़ा कॉमन है, टीबी कई बार बहुत सारी जगह पे एक साथ हो जाती है, तो कई बार छाती की टीबी होती है, पेट में भी, आंतों में या फिर लीवर में टीबी फैल जाती है, डिसेमिनेटेड टीबी कहते हैं, कई बार ये स्पाइन में हो जाती है, पीठ की हड्डी में, जिसकी वजह से पैरों में सुनपना आ सकता है या ठंडापन लगे या नमनेस आ जाती है, तो आपको हो सकता है कि डिसेमिनेटेड ट्यूबरक्लोसिस हो गया होगा। तो टीबी का इलाज थोड़ा लंबा होता है, 6 महीने का इलाज होता है, तो अगर आपने अभी टीबी का इलाज आपके डॉक्टर ने जस्ट शुरू किया है, आप उसको कंटिन्यू करें, पूरे 6 महीने का पूरा कोर्स करें। टीबी के स्पेशलिस्ट होते हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट, आप उनको दिखाएं या फिर अपने मेडिकल कॉलेज में किसी फिजिशियन को दिखाएं, ठीक हो जाएगा। टीबी का ट्रीटमेंट 6 से 9 महीने, कई बार बोन टीबी थोड़ी सी लंबी ट्रीटमेंट रहती है, तो

0: घबराए नहीं, टाइफॉइड से ज्यादा प्रॉब्लम टीबी की रहेगी, आप टीबी का पूरा इलाज करें, बच्चा ठीक हो जाएगा।
1: डॉक्टर साहब, अगर किसी बीमारी का हिस्ट्री है, पारिवारिक इतिहास है, तो उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे?
0: या पारिवारिक डिजीज थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, और हिस्ट्री से आई विल से कि जैसे कि कोई न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ होती है, जैसे कि अभी रिसेंटली हमारे यहाँ एक पेशेंट है, उसको चलने में प्रॉब्लम है, उसको अटैक्सिया हो गया है, और फैमिली में बहुत थोड़े बहुत कुछ हिस्ट्रीज हैं, तो जेनेटिक डिजीज़ होती है। अगर आपको कोई जेनेटिक डिजीज़ है तो आपको जेनेटिक स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा, या जिस तरह के कोई सिस्टम इन्वॉल्वमेंट है तो उसके पास जाना पड़ेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आई विल सजेस्ट कि आप किसी जेनेटिक स्पेशलिस्ट को अप्रोच करें अगर आपको कोई हेरिडिटरी या जेनेटिक डिजीज है, खासकर न्यूरोडिजेनरेटिव।
1: अच्छा, और लोगों को हेल्थ चेकअप कराने के लिए, अवेयर करने के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: हेल्थ अवेयरनेस तो मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आप अपने हेल्थ में टाइम पे खाना खाएं और टाइम पे सोएं और एक्सरसाइज करें। जैसे कि बेदी मैडम ने बताया था, डेंटल एंड आई चेकअप बहुत जरूरी है, वो भी इंपॉर्टेंट है, आई मिस दैट थिंग, सॉरी फॉर दैट। बच्चों को स्कूलों में बहुत अच्छी बात है कि डेंटल एज वेल एज आई चेकअप होते हैं, जिनको प्रॉब्लम होती है उनको बोला जाता है कि पेरेंट्स को कि आप अपने बच्चों को किसी डेंटिस्ट को दिखा लें, और कई सारी बीमारियां डेंटल केरीज हो रही हैं तो उससे शुगर उगर ये सब भी पिकअप हो सकता है। आई चेकअप डायबिटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बेदी मैम ने बोला किसी को शुगर है तो एनुअल आई चेकअप बहुत जरूरी है, और आप डायबिटीज भी पिक कर सकते हैं, हाइपरटेंशन भी पिक कर सकते हैं सिर्फ आई चेकअप के लिए, उसके लिए आपको आई के डॉक्टर या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को विजिट करना पड़ेगा, जनरल फिजिशियन के बाद आपको वहां दिखाना पड़ेगा, तो ये एडअप हो जाएगा।
1: तो दोस्तों, बीमारी का इंतजार मत कीजिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। नियमित मेडिकल हेल्थ चेकअप सिर्फ एक जांच नहीं है, बल्कि अपने और अपने परिवार के बेहतर कल के लिए है। डॉक्टर घनश्याम पांगती, डायरेक्टर प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद शिल्पा जी, आई रियली एंजॉयड, थैंक यू।
1: तो दोस्तों, अगर आप किसी विषय पर जानकारी चाहते हैं, आप हमें मेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है healthair@gmail.com। नियमित जांच स्वस्थ जीवन का राज, इसी संदेश के साथ मैं शिल्पा आपसे लेती हूँ विदा, फिर मिलेंगे नए विषय और नई जानकारी के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

एफएम रेनबो पर अब वक्त है मुख्य समाचारों का। मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड में फ्लीट स्पोर्ट शिप 1 का जला अवतरण किया और फ्लीट स्पोर्ट शिप 5 की कील बिछाई। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों के लिए मतदान जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से 8 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली परामर्श का आंकड़ा पार कर लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टरों से सेवा और करुणा की भावना के साथ चिकित्सा क्षेत्र में काम करने का आह्वान किया है। उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि संस्कृत वह स्वर्णिम सूत्र है जो भारत की सभी भाषाओं को जोड़ती है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से शुरू होने वाले 5 दिन की घाना, कोटे डी, आइवर और इथियोपिया की यात्रा पर हैं। यमन में आज सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन की हूती ठिकानों के खिलाफ नई कार्रवाई के बाद संघर्ष तेज हो गया है। बैनिन सिटी से लागोस जा रहे नाइजीरियाई सैन्य विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 32 हुई। मृतकों में 25 यात्री और 7 चालक दल के सदस्य भी शामिल। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की 2020 श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। और अंत में मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। तो ये थे एफएम रेनबो पर अभी तक के मुख्य समाचार।

आकाशवाणी रेनबो की मैजिकल फ्रीक्वेंसी पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत सत्कार। 4:08 और पूरे 45 सेकंड हो चुके हैं। वक्त बदला है तो एंटरटेनमेंट के साथ साथ इन्फॉर्मेशन का सुर भी बदलेगा। इन्फॉर्मेशन एंटरटेनमेंट कहें तो इन्फोटेनमेंट टॉप नॉच। जी हाँ जनाब, करियर पाथवेज में आप आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं। आपके साथ हूँ मैं प्रियंका मामगन और आज हम बात करेंगे करियर इन फूड प्रोसेसिंग की। इस क्षेत्र में किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज हैं, कौन कौन से कोर्सेज करके आप आगे बढ़ सकते हैं, जिन्हें जानकर समझकर आप अपने लिए सही निर्णय लें और अपने सुनहरे भविष्य को तराशने और तलाशने की कोशिश में आगे बढ़ें। जी हाँ, आज हम बात करेंगे करियर इन फूड प्रोसेसिंग की।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: से बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
5: आकाशवाणी रेनबो करियर पाथवेज, आज हम बात करेंगे करियर इन फूड प्रोसेसिंग की। हम अपने देश भारत की बात करें तो भारत में फूड प्रोसेसिंग का भविष्य अपार संभावनाएं समेटे हुए है। भारत कृषि प्रधान देश है और प्रोसेस फूड के लिए रॉ मटेरियल आसानी से बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध है हमारे देश में। शहरों की आबादी बढ़ रही है, खान पान की आदतें बदल रही हैं और आम जन प्रोसेस्ड फूड को सहूलियत के हिसाब से जिंदगी का हिस्सा बना रहा है। इसी के साथ साथ भारत दूसरे देशों की प्रोसेस्ड फूड की जरूरतों को पूरा करने में भी सक्षम है और लगातार फूड प्रोसेसिंग का निर्यात बढ़ रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2019-20 में प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट जहां 6.26 बिलियन US डॉलर का था, तो वहीं साल 2023-24 में ये 13.08 बिलियन US डॉलर की बढ़त लिए हुए आगे बढ़ा। घरेलू मार्केट के साथ साथ विदेशी बाजारों में भी प्रोसेस्ड फूड की डिमांड लगातार बढ़ रही है और यही वजह है कि प्रोसेस्ड फूड के क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। और आज हम करियर पाथवेज में टॉपिक भी लेकर आए हैं करियर इन फूड प्रोसेसिंग।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति। अयोध्या से राम

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: प्रोसेसिंग की बात हो रही है जनाब, और फूड प्रोसेसिंग में कैसे आप करियर बना सकते हैं, इस पर आज जानने समझने की कोशिश के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग को समझा जाए छोटे से थोड़े से शब्दों में, तो फूड प्रोसेसिंग वो तकनीक है जिसके जरिए खेतों से आने वाले कच्चे उत्पाद जैसे अनाज, फल, सब्जियां और साथ ही जानवरों से मिलने वाले प्रोडक्ट जैसे दूध, मांस की साफ सफाई करना, ग्रेडिंग करना, पैकेजिंग करना और उनका रूप बदल कर खाने योग्य प्रोडक्ट्स बनाना या फिर प्रोसेस करके लंबे समय तक सुरक्षित रहने वाले प्रोडक्ट्स तैयार करना, इसे फूड प्रोसेसिंग कहते हैं। फूड प्रोसेसिंग का जो एक अपना क्षेत्र है वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी दुनिया को समेटे हुए है, और यही वजह है कि आप कई स्तर पर इस फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र को चुन सकते हैं। अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन आपकी समझ बहुत अच्छी है और चीज़ें आपको बहुत जल्दी समझ आ जाती हैं, तो आप इस फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र को चुन सकते हैं, इससे जुड़ सकते हैं कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा किए जाने वाले ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में। जी हाँ, कृषि विज्ञान केंद्र और खादी ग्रामोद्योग के द्वारा कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए जाते हैं गांव में, छोटे मंझोले शहरों में, जहां पर कई तरीके के कोर्सेज करवाए जाते हैं जैसे अचार, मुरब्बे, जैम, चटनी, बिस्कुट, रस बनाने के जो कोर्सेज रहते हैं वो सिखाए जाते हैं, वो करवाए जाते हैं। इनको करके भी आप फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र से जुड़ सकते हैं। इसी के अलावा अगर आप 10वीं के बाद फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं तो ITI यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स कई सारे डिप्लोमा कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज करवाती है फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र के। आप यहां से भी, जी हाँ, कोर्सेज करके, डिप्लोमा कोर्सेज करके और जो सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं उन्हें करके फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र से जुड़ सकते हैं। वहीं अगर आप 12वीं के बाद ग्रेजुएट लेवल के कोर्सेज करना चाहते हैं और बहुत अच्छी तरीके से इस फील्ड से जुड़ते हुए बहुत ऊंचाइयों तक जाना चाहते हैं, मास्टरी करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास 12th क्लास में, जी हाँ, साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए और इसमें आपके 50% से ज़्यादा अंक होने चाहिए। इसके बाद आप नेशनल या स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर आप ग्रेजुएट लेवल के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत ही खूबसूरती से आगे बढ़ सकते हैं। ग्रेजुएट लेवल के कोर्सेज कौन कौन से रहेंगे और साथ ही उसके आगे आप कैसे बढ़ सकते हैं इस क्षेत्र में, उसे जानेंगे बस वापस आने के बाद।

0: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।
1: दो एकम दो, दो दुनी चार, कान लगा के सुन लो ये मंत्र बार बार।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: जी हाँ जनाब, जानकारी हो तो हर चीज़ आसान सी लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने रास्ता बता दिया है, बस अब चलना हमें अपनी मेहनत से बहुत दूर तक अपनी मंजिल तक पहुंचना है। और आज करियर पाथवेज में हम बात कर रहे हैं करियर इन फूड प्रोसेसिंग की। हम अपनी बात करें, अपने आसपास के लोगों की बात करें, तो हम सब सामान खरीदने के लिए बाज़ार तो जाते ही रहते हैं। और किराने की दुकान में, मॉल में, फूड मार्ट में हमने कितने सारे प्रोसेस्ड फूड के आइटम्स, प्रोडक्ट्स देखे हैं। जी हाँ, कभी गौर से आपने उन्हें देखा है? बटर हो, ब्रेड हो, चीज़ हो, चीज़ स्प्रेड हो, फ्लेवर्ड मिल्क हो, मिल्क प्रोडक्ट्स हो, फ्रोज़न मीट हो, फ्रोज़न फिशेस हो, टॉफ़ीज़ हो, कैंडीज़ हो, बिस्कुट हो, चिप्स, ड्रिंक्स, जूसेस, जैम, सॉसेस, जेलीज, ओफ बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपके चारों ओर प्रोसेस्ड फूड आइटम्स, जी हाँ, आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बने हुए हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है। तो अब ध्यान ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये सारे फूड प्रोसेस्ड आइटम्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, और इन सब को बनाने के लिए बहुत सारे प्रोफेशनल्स की ज़रूरत रहती है। और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में आप अगर करियर बनाना चाहते हैं तो कई सारे कोर्सेज हैं जिन्हें आप कर सकते हैं और इस क्षेत्र से जुड़ सकते हैं। 12वीं के बाद आप बीटेक फूड टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, बीटेक फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग की तरफ जा सकते हैं, बीएससी फूड टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, बीएससी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं, ग्रेजुएट लेवल का कोर्स है, बीएससी फूड एंड न्यूट्रिशन कर सकते हैं, बीएससी डेयरी टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, बीएससी फूड माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो टेक्नोलॉजी जैसे प्रोग्राम्स भी कर सकते हैं। जी हाँ, ये वाले प्रोग्राम्स कर सकते हैं। ग्रेजुएशन लेवल के, ग्रेजुएट लेवल के कोर्सेज करने के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के कोर्सेज कर सकते हैं, जिससे कि आप इस क्षेत्र में अपनी पकड़, अपनी पैठ और भी मजबूत कर सकें और ज़्यादा ऊंचाइयों तक जा सकें। और इसके लिए आप एमएससी फूड टेक्नोलॉजी या फिर एमएससी फूड साइंस या फिर एमटेक फूड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, फूड पैकेजिंग, फूड बिजनेस मैनेजमेंट, फूड बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कोर्सेज कर सकते हैं। बहुत सारी संभावनाएं हैं, अपार से अपार संभावनाएं हैं, बस आपको जानने, समझने और आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि ये जो फील्ड है फूड प्रोसेसिंग की, वो बहुत बड़ी है, अपने अंदर एक पूरी दुनिया समेटे हुए है। और सबसे अच्छी बात ये है कि हम अलग अलग लेवल पर इस क्षेत्र से जुड़ सकते हैं और अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
2: I say

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
4: ठीक है,
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम है।

0: उसके जोखिम में है और आपके अधिकारों की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल, ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
6: फूड की बात हो रही है, फूड प्रोसेसिंग की बात हो रही है जनाब। करियर पाथवेज में आज हम बात कर रहे हैं करियर इन फूड प्रोसेसिंग, और किस तरीके से हमने आगे बढ़ते हुए बताया कि आप बहुत ही छोटे लेवल पर भी इस क्षेत्र से जुड़ सकते हैं। आप कृषि विज्ञान केंद्रों और साथ ही साथ खादी ग्रामोद्योग के ट्रेनिंग सेंटर से भी ट्रेनिंग लेकर आप फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र से जुड़कर आत्मनिर्भर बन सकते हैं, रोजगार कमा सकते हैं और साथ ही साथ रोजगार दे भी सकते हैं, रोजगार जनरेट भी कर सकते हैं। इसी के साथ 10वीं के बाद अगर आप किसी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप ITI से शॉर्ट टर्म डिप्लोमा कोर्सेज जो रहते हैं वो कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आप बहुत ज़्यादा बड़े तरीके से अच्छे तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं तो 12वीं के बाद भी आप कई सारे कोर्सेज करके आगे बढ़ सकते हैं। ग्रेजुएट लेवल के और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के कोर्सेज के बारे में तो हम जान ही चुके हैं, इसके बाद अगर स्पेशल डिप्लोमा कोर्सेज की बात की जाए तो कई तरीके के डिप्लोमा कोर्सेज रहते हैं, जिसमें कि फूड सेफ्टी एंड हाइजीन है, डिप्लोमा इन फूड क्वालिटी कंट्रोल है, स्पेशल डिप्लोमा इन फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन है, बेकरी टेक्नोलॉजी है, डेयरी प्रोसेसिंग है, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग डिप्लोमा कोर्सेज हैं, फूड पैकेजिंग के डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, और क्वालिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड भी कई सारे डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं। अगर बात की जाए कि फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में कोर्स करने के बाद आप किन क्षेत्रों को ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, तो आप प्राइवेट के साथ साथ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, आप FSSAI को भी ज्वाइन कर सकते हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसी के साथ साथ आप राज्य सरकार के जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है वहाँ पर भी फूड इंस्पेक्टर की, फूड क्वालिटी कंट्रोलर की बहुत सारी जॉब्स निकलती रहती हैं जो कि सरकारी होती हैं, और अलग अलग पोर्टल्स पर इनकी इन्फॉर्मेशन समय समय पर आती रहती है। आपके पास क्वालिफिकेशन है फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र की तो आप गवर्नमेंट जॉब्स में भी जा सकते हैं। इसके अलावा तो प्राइवेट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि आप देखते होंगे कि कितने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में लगी हुई हैं। तो आप फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि जो बिस्कुट, स्नैक्स, पैकेजिंग, पैकेज्ड फूड बनाती हैं, रेडी टू ईट फूड बनाते हैं। डेयरी इंडस्ट्रीज ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें कंपनियां दूध, दही, पनीर, चीज, मिल्क प्रोडक्ट्स बनाती हैं। बेवरेज जो इंडस्ट्रीज हैं, बेवरेज की जो कंपनियां हैं जो कि जूस, सॉफ्ट ड्रिंक्स, पैकेज्ड जो वाटर रहता है, फ्लेवर्ड ड्रिंक्स रहते हैं वो बनाते हैं, उन कंपनीज को अलग अलग लेवल पर ज्वाइन कर सकते हैं। मीट एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स की कंपनीज को ज्वाइन कर सकते हैं, मसालों की कंपनियों को ज्वाइन कर सकते हैं सर। जी हाँ जनाब, इसी के साथ साथ आप फूड रिसर्च एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपका मन है तो आप अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि भारत सरकार की कई सारी योजनाएं हैं जिनको अवेल करके, जिनके साथ जाकर आप फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में आप एक इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हैं।
7: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: प्रोसेसिंग की बातें चल रही हैं और अब वक्त बहुत कम बचा है, तो जल्दी से ये भी जान लिया जाए कि फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में पढ़ाई करने के बाद हम किस तरीके से करियर ऑप्शंस को तलाश सकते हैं और अपने भविष्य को तराश सकते हैं। तो आप फूड टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं और फूड प्रोडक्ट्स और प्रोसेसिंग टेक्निक्स विकसित कर सकते हैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर बनकर आप फूड सेफ्टी एंड रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स की निगरानी कर सकते हैं और उन्हें इम्प्लीमेंट करने के काम में सहायक बन सकते हैं। इसी के साथ आप क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर बनकर फूड प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और फूड प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग के काम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभाल सकते हैं। साथ ही आप सप्लाई चेन मैनेजर बन सकते हैं और रॉ मटेरियल स्टोरेज, कोल्ड चेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के काम को देख सकते हैं, इसमें आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ साथ अपना खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं और साथ ही बन सकते हैं फूड मार्केटिंग प्रोफेशनल, फूड इंस्पेक्टर, प्रोसेस प्रोडक्शन मैनेजर, पैकेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइंटिस्ट, फूड केमिस्ट, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर, फूड प्रोसेसिंग इंजीनियर के साथ साथ कई सारी फील्ड्स हैं जिनमें आप आगे बढ़ सकते हैं जब आप करेंगे फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड अलग अलग कोर्सेज जो आप करना चाहते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सी फील्ड है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि भारत के सामने, हम सभी के सामने लक्ष्य है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, और ऐसे में फूड प्रोसेसिंग का क्षेत्र बहुत तेजी से उभर रहा है। इसीलिए थोड़ा और जानिए, थोड़ा और समझिए और फिर जी हाँ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरे मन के साथ अपने भविष्य को तराशने के लिए जी हाँ, चुन लीजिए फूड प्रोसेसिंग का क्षेत्र। इसी के साथ मैं प्रियंका मामगेन अब लेती हूँ विदा, क्योंकि वक्त कह रहा है चलना होगा। लेकिन रेनबो पर इंफोटेनमेंट का ये जो सफ़र है ये बदस्तूर चलता रहता है। अगले प्रोग्राम में आपके साथ रहेंगी गीतांजलि सोनी और प्रोग्राम होगा सिटी लाइट्स।

नमस्कार, अब समय है एफएम रेनबो मुख्य समाचारों का। मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख रूप के में 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड में फ्लीट स्पोर्ट्स शिप 1 का जलावतरण किया और फ्लीट स्पोर्ट्स शिप 5 की कील बिछाई। तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों के लिए मतदान जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से 8 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। राष्ट्रीय टेमीडेलिंस सेवा ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली परामर्श का आंकड़ा पार कर लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टरों से सेवा और करुणा की भावना के साथ चिकित्सा क्षेत्र में काम करने का आह्वान किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि संस्कृत वह स्वर्णिम सूत्र है जो भारत की सभी भाषाओं को जोड़ती है। दिल्ली पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी और निर्माण करने वाले अंतर्राज्यीय नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। यह नेटवर्क राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उत्तर प्रदेश में सक्रिय था। भारत ने आज ओमान के तट के पास पनामा के झंडे वाले वाणिज्य जहाज एमटी ऑन पीस पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते समय जहाज पर हमला किया गया। बेनिन सिटी से लागोस जा रहे नाइजीरियाई सैन्य विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने में मृतकों की संख्या बढ़कर 32 हुई। मृतकों में 25 यात्री और 7 चालक दल के सदस्य भी शामिल। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की 2020 श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। और मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये थे रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: जी बिल्कुल, हम सब की वाणी आकाशवाणी लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी गजब की गीतांजलि सोनी। सो जी, सबसे पहले आप सबको बोलना ज़रूरी है, आज तो खासकर पूरा ब्यौरा दूंगी तो बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम, और कैसे हैं हम सब, ये पूछना बहुत ज़रूरी हो जाता है। गर्मी इतनी नहीं है लेकिन माहौल को देखते हुए ज़्यादा लग रही है, बिलीव यू मी। अभी का टेम्परेचर 32 डिग्रीज़ है। अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो जैसे जैसे बढ़ेगी शाम वैसे वैसे आपको तापमान में गिरावट महसूस होगी, लेकिन अगर आप बाई चांस बता दूँ पार्लियामेंट स्ट्रीट के आसपास हैं, सेंट्रल कनॉट प्लेस में है, तो आपको वाकई तापमान ज़्यादा लगेगा फॉर वेरी मैनी रीजन्स। वो रीज़न्स यहाँ आपको बताऊँगी थोड़ी देर में। फिलहाल एक बार फिर आपको बताना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक जगह जुड़ गए हैं, आपके अपने सिटी लाइट्स में 102.6 मेगा माइंड ब्लोइंग हर्ट्ज़, और मैं वही हूँ आपकी एब्सोल्युटली गज़ब की गीतांजलि सोनी।

बिल्कुल, ये कहने का मन तो है काफ़ी सारे लोगों के लिए कि भाई क्यों ऐसी चीज़ें कर रहे हो जो कि अपने दिल को दुखी करती हैं, लोगों के दिल को दुखी करती हैं, और ओ हो आने जाने में इतनी दिक्कत होती है। तो स्पेशली उन लोगों को मैं कहना चाहती हूँ जो बहुत ही कैजुअल स्ट्रोलिंग के लिए आ जाते हैं सीपी ना शाम को, कि ओ माई गॉड इट्स अच्छा लवली वेदर, शाम को अच्छा लगता है, चलो कनॉट प्लेस की सैर करके आओ। मत आना भैया, आज मत आना। आपको पता है कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं जंतर मंतर और उसके सराउंडिंग एरियाज़ पे। तो अगर आपको बहुत ही ज़रूरी कनॉट प्लेस की तरफ ही आना है तो प्लीज़ यूज़ मेट्रो, दैट्स द सेफेस्ट बेट। गाड़ी लेके, बाइक लेके, ये सब तो बिल्कुल सोचिएगा भी मत, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। शाम को क्या सिचुएशन होती है, कैसे ईज़ आउट होता है सारा ट्रैफिक, वो अपडेट आपको आकाशवाणी के ज़रिए मिलता रहेगा। लेकिन जो सब मैं आप बहुत ही क्लियर वाणी में आपको बता रही हूँ हमारे स्टूडियो के माइक से, मैं भुक्तभोगी हूँ आज आते आते। भुक्तभोगी कहते हैं ना कि मतलब पूरा मैं एक्सपीरियंस करती हुई आई हूँ, बहुत लंबा चल के आना पड़ा हमको। तो भाई आप लोग भी बी वेरी वेरी वाइज, अगर आपको वाकई बहुत ही स्पेशल कोई काम है तभी आइए, अदरवाइज स्किप स्किप एब्सोल्युटली स्किप कमिंग टू कनॉट प्लेस, कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो आपको मैं बताई देती हूँ, क्योंकि आपकी गज़ब की गीतांजलि सोने की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है जैसे ही हम आते हैं ना। कहाँ पे आते हैं, स्टूडियो में आते हैं ऑफकोर्स, और ख़ासकर सिटी लाइट्स में सिटी के लिए काम कर रहे हैं भाई, आपकी मोहब्बत के लिए, आपके प्यार के लिए, और हम सबकी ज़रूरत के लिए काम हो रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार आपसे ऑलरेडी मिलना स्टार्ट हो जाता है जैसे हम स्टूडियो में आते हैं, चाहे हम मैसेजेस मंगाएं ना मंगाएं, मैसेजेस का शो हो ना हो, लेकिन यू ऑल आर सो काइंड एंड लविंग कि आपके मैसेजेस प्यार भरे आने लगते हैं। वाकई वाकई कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है ना ना ना ना बिना बोले काम चलेगा नहीं, तो बता दीजिएगा 9818107070 पर, जिनको हिंदी समझने में थोड़ी सी दिक्कत है एंड दे फाइंड माई हिंदी अ बिट फनी, तो उनके लिए बता रही हूँ 9 9818107070। सो दिस इज़ द नंबर, ऑल दो मैसेजेस आर नॉट रेड फॉर फन इन द शो, उसके लिए मैसेज मसाला मिक्स है। अगर हाँ कुछ ऐसी चीज़ें जो वाकई मुझे लगता है आपको एकदम इमीडिएट अपडेट देना है, आपका आपके पास कुछ ऐसा है तो मैं थोड़ी सी रिसर्च वर्क करके फिर बता देती हूँ। सो दिस इज़ वॉट इज़ द हेल्प ऑफ मैसेजेस। फिलहाल एक बार फिर आपको बोलती हूँ स्वागत है, स्वागत है।

अब देखिए, ये बहुत ही सब्जेक्टिव बातें होती हैं, ये बहुत चीज़ें चलती हैं ना. ओ यू आर लक्की दैट यू आर मैरिड टू मी, ओ यू आर लक्की दैट आई एम विद यू. तो ये लक फैक्टर क्या होता है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है. इसके बारे में हमारी यंगस्टर्स आजकल बहुत बातें करते हैं. मैनिफेस्टेशन, लक फैक्टर, नसीब में नहीं था, वी ट्राइड अ लेवल बेस्ट, यू नो, सो एन एंड सो फोर्थ. लेकिन सबसे मज़े की और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, हमने वो भी सुना है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलयेषु कदाचन. तो आपकी जो मेहनत है उसके ऊपर कुछ भी नहीं है भाई. तो मैं, जितने भी मेरे यंग फ्रेंड्स जेन ज़ीज, अल्फा जेन ज़ीज, ये सब सुन रहे हैं मुझे, तो ये सब ना एक्सक्यूजेस मत दो. क्योंकि मैंने देखा है कि अभी जब भी कोई ऐसी चीज़ें होती हैं ना जिसमें जोश चाहिए, बिना बात का भी चाहिए होता है, तो हमारे सारे जेन ज़ीज पहुँच जाते हैं और सोचते बाद में और करने पहले शुरू कर देते हैं काम. सो आई थिंक थोड़ा सा उल्टा बस सोचने की ज़रूरत है कि पहले थोड़ा सोच लो, फिर रिएक्शंस दो, फिर काम करो, तो फिर मज़ा और उसका जो असर है वो बहुत ही डिफरेंट आने वाला है. फिलहाल उन लोगों को बता दूँ जो ट्रैवल प्लान कर रहे हैं. आपको लगेगा एकदम से ट्रैवल पे कैसे आगे, वो इसीलिए आगे पहले मैंने सोचा था ड्यूरिंग दी एंड मैं ट्रैवल की इन्फॉर्मेशन दूंगी. फिर मुझे लगा नहीं भाई, जो फ्लाइट के टिकट्स के कॉस्ट हैं वो एक एक मिनट में भी चेंज हो जाते हैं, और ख़ासकर जो ख़बर मैं देने वाली हूँ उसमें तो बिल्कुल ही चेंज होंगे, क्योंकि अभी ड्यू टू दिस फ्यूल सरचार्ज, आपको पता है अभी आसपास की सिचुएशंस कैसे चल रही हैं. ड्यू टू द वॉर जो हो रहा है उसमें फ्यूल इफेक्टेड है, हमारी फर्टिलाइजर्स इफेक्टेड हैं, अभी आने वाले टाइम में कहा जा रहा है इकोनॉमी भी इफेक्टेड होने वाली है. तो अपडेट्स तो दिए जा रहे हैं कि जितना आप लोग सेव कर सकते हैं, कम एक्सपेंसिव ट्रैवल करें, कम एक्सपेंसिव खर्चे करें, सेव ज़्यादा करें. फिर भी अगर ज़रूरत होती है, लोगों को ट्रैवल करना पड़ता है इंटरनेशनल या फिर डोमेस्टिक फ्लाइट से, तो वो भी महंगी होने जा रही हैं. उसका कारण यही है कि फ्यूल सरचार्ज लग गया है, उस वजह से. तो बहुत सारी चीज़ों के प्राइजेस में आपको आने वाले समय में चेंज देखने को मिलेगा. लेकिन यही है, अपना सोच समझ के करना है कि वाकई आपको ट्रैवल करना है, इतनी सारी एडवर्सिटी के बावजूद ज़रूरी है तो कर लीजिए. बाकी अगर आप बचा सकते हैं, वेट कर सकते हैं, नथिंग लाइक इट, है ना. लेकिन हमारा काम है आपको बताना कि भाई अगर एकदम से फ़्लाइट के आपको प्राइजेस ज़्यादा लग रहे हैं तो फिर परेशान मत होइए क्योंकि अचानक क्या हो गया, कल तो ये था. अभी नहीं नहीं फ्लाइट्स तो वैसे भी विद इन लाइक 20 मिनट्स, 10 मिनट, 5 मिनट में भी प्राइस का डिफरेंस आ जाता है. तो सोच समझ के चीज़ें स्पेंड करें, चीज़ों पे इन्वेस्ट करें, और सोच समझ के एक्शंस करें, बहुत ज़रूरी है. और फिलहाल अगर आप ट्रैफिक से जूझ रहे हैं, रास्ते में हैं, कारण आपको पता ही है क्या, एक तो जनसंख्या अपार है तो गाड़ियाँ अपार हैं, आना जाना लिमिटलेस है, और दूसरा ये जो धरना है ये भी सॉर्ट ऑफ लिमिटलेस ही होता जा रहा है. इसलिए बी वाइज बिफोर इवन यू लीव योर हाउस. आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स, आपकी अपने गजब की गीतांजलि सोनी के साथ ऑन स्टेशन ऑफ द नेशन. चेक दिस.

एक्चुअली जिनको नहीं पता, कुकड़ कमाल दा, कुकड़ कमाल दा, लैंग्वेज डिफरेंट होती हैं तो लोगों की अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होती है. कई बार पूछते हैं लोग इसका मतलब क्या है. कुकड़ इज़ जस्ट कंसिडर्ड, जैसे मुंडे को कह देते हैं ना लड़कों को, वदिया कुकड़ है. इट्स जस्ट लाइक अ फन टर्म. कुछ ऐसा नहीं है कि यू हैव टू रियली रीड समथिंग बिटवीन द लाइन, ऐसा कुछ भी नहीं है. देखिए कुछ चीज़ें ना, चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए, फन फैक्टर डालने के लिए ये सब की जाती हैं. और मैं ना सबको अर्ज करना चाहती हूँ एक बात. क्या होता है, हम लोग इतने सेंसिटिव हो गए हैं ना. आजकल देखते हो कई लोग कॉमेडी करते हैं तो उनको लेके हम लोग पीछे पड़ जाते हैं, आपने हमें मोटा कैसे कह दिया, ये कैसे बात होगी, वो कैसे बात होगी. लेकिन पता है अगर इतनी लाइफ में अपटाइट हो जाएंगे ना हम लोग, हाँ ठीक है एक मर्यादा की सीमा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं यू नो लिबर्टी देनी पड़ेगी अगर आपको अपने आप को थोड़ा लूजन अप होना है. अदरवाइज़ तो फिर करते रहो बहस सड़कों पे, करते रहो घर पे, करते रहो ऑफिस में, कर लो स्कूल में, कर लो. आजकल तो यू नो हाउ इट इज़, सबके हाथ में मोबाइल है, एवरीबडी फील्स पावरफुल. हमारी आवाज़ हम दो मिनट में बाहर पहुंचा सकते हैं, लेकिन विद पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये बहुत ही पुरानी सेइंग है लेकिन बिल्कुल एप्ट सेइंग है. अगर आपके हाथ में हथियार आ जाते हैं ना, इसका ये मतलब नहीं कहीं भी गोलियां चलाते रहेंगे. आपको पता है कि निशाना कैसे आपने कहाँ लगाना है, जो कि आपके हित में हो, आपके देश के हित में हो और आपके परिवार के हित में हो.

तो बेसिकली निशाने का मतलब बंदूक से नहीं, आपके एक्शन से है यहाँ पे. तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है हम सबको, बिकॉज दिस इज़ अ जेन ज़ी वर्ल्ड फाइनली, बट वी हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल. आज मैं काफ़ी चीज़ें रिमाइंड कराऊंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी जो एक्टिविटीज़ हो रही है ना, उसमें जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं वो बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं. तो फॉर यू, प्लीज़ प्लीज़, आई एम योर फ्रेंड एंड कन्फाइन इन मी, बट थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबली काम कीजिए, बिकॉज आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स, आपकी अपनी गजब की गीतांजलि सोनी के साथ, ओनली ऑन स्टेशन ऑफ द नेशन. बाकी नेशन और भी बहुत सारी चीज़ें कहना चाह रहे हैं, आप जानते हैं जी, जन्मदिन है आपका, एनिवर्सरी है आपकी, रिमाइंडर्स कौन देगा? मैं दूंगी, मैं, क्योंकि आज है 6 तारीख, आधे लोगों को पता ही नहीं होगा, होता है, स्किप हो जाता है, आज 6 तारीख है. अब ये भी बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, अक्टूबर है भाई, अक्टूबर है ना. तो आज 6 तारीख है, 2026 चल रहा है अभी भी. ये कुछ लोगों को फनी लग सकती है बातें, लेकिन फैक्ट है, दिमाग से निकल जाते हैं लोगों के, नहीं याद रहता. ये तो प्री ऑक्यूपाइड माइंड है, ऊपर से इतने ज़्यादा कॉन्शियस एफर्ट नहीं करते हम चीज़ें याद रखने के लिए, तो इसलिए बताना ज़रूरी हो जाता है. तो अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके काम की है, तो भी आने वाली इन्फॉर्मेशन आपके और भी काम की होगी, क्योंकि वो आपको सुननी पड़ेगी. काफ़ी सारी आपकी भूली बिसरी बातें आपको याद आ सकती हैं, इसलिए डोंट यू गो एनीवेयर, सुनते रहिए अपनी गजब की गीतांजलि सोनी को, ओनली ऑन स्टेशन ऑफ द नेशन.

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
7: जी बिल्कुल, FM रेनबो सुन रहे हैं बहुत प्यार से और बहुत सारी बातें लिख के भी भेज रहे हैं और जानना और चाह रहे हैं। तो देखिए, इतना है कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको सिटी लाइफ में मिलती है ना, दैट इज एब्सोल्युटली फ्रेश, क्रिस्प, ऑथेंटिकेटेड। कोई भी ऐसा गॉसिप वर्क यहाँ हम कर नहीं सकते, इसलिए अगर आप प्रोबेबिलिटी वाली न्यूज़ मुझसे मांग रहे हैं तो वो नहीं मिल सकती है। जो ऑथेंटिकेटेड बात थी वो मैंने आपको बता दी है। तो इसलिए अगर आप आना चाह ही रहे हैं आकाशवाणी की तरफ तो आपकी बिल्कुल फ्री विल है, लेकिन हम आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करेंगे कंसिडरिंग दी एटमोसफियर अराउंड। बस इतनी सी बात है, बाकी स्वेच्छा है आपकी शुद्ध हिंदी में। अच्छा, एक बात मुझे ये बताइए, कितनी सारी हम चीज़ें होती हैं ना प्रिकॉशनरी, आपको बताते हैं कि आप प्रिकॉशनरी ऐसा ना करें। प्रिकॉशनरी का मतलब ये होता है कि अगर आप वो बात नहीं मानते हैं तो मुहावरा जो होता है ना, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, तो फिर बाद में वो मुहावरा सुनना पड़ता है। जैसे कि कितनी बार मैंने कहा है कि अगर आपके पास कोई अननोन मैसेज आता है, कोई कॉल आती है, वे टू गुड अपॉर्चुनिटी आती है आउट ऑफ द ब्लू, है ना, तो उसको एकदम से दबोचना और ये करने बिना सोचे समझे उसमें घुस जाना, चाहे उसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो, कोई भी चीज़ हो, ये हमेशा नुकसान पहुंचाती है। बार बार हम कहते हैं और फिर बहुत सारे लोगों के साथ इंसिडेंट हो जाते हैं, लोगों के बैंक अकाउंट्स खाली हो रहे हैं, लोग ऐसे जॉब, फेक जॉब के रैकेट्स में फंस रहे हैं, तो बाद में उनको पता चलता है ओ माय गॉड ये क्या हो गया। तो अभी रिसेंटली एक और फेक जॉब का रैकेट पकड़ा गया और मुझे लगा कि ये देखिए फिर से वही चीज़ें हो रही हैं, चाहे कितने रैकेट पकड़े जाएं। लेकिन जैसे होते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि जैसे आप नींद की गोली खाते हो ना जब, तो आपको थोड़ी देर के लिए नींद आती है लेकिन उसके बाद आप अपने यूजुअल सेल्फ में आ जाते हो। तो जब ये ग्रुप पकड़े जाते हैं ना, तो थोड़ी सी नींद की गोली खा के सो जाते हैं। जब इनको लगता है हाँ सारी चीज़ें स्लो डाउन हो गई, वो किसी ना किसी नए तरीके से कहीं ना कहीं नई जगह जाके अपना ग्रुप चालू कर देते हैं। लेकिन जो परमानेंट बात है वो हमारी समझ है ना। तो अगर आप लोगों के पास कोई भी ऐसी कॉल आती है, आपके प्रोफाइल के लेके अपॉर्चुनिटी आती है कि यहाँ पे ये जॉब है 100% मिल जाएगी, 1.5 लाख की जॉब है, आपको 50,000 हमें देना पड़ेगा और 1.5 लाख आपको पहले दिन ही आपको एडवांस में सैलरी मिल, ऐसा कहीं नहीं होता, ऐसा कहीं नहीं होता, बिलीव यू मी। इतने साल हो गए हमें नौकरी करते हुए कि आपको कोई जाके, हाँ ये ज़रूर होते हैं जो जॉब कंसल्टेंट होते हैं, वो आपकी जब जॉब लग जाती है, सारी आपकी फॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं, प्राइवेट कंपनीज़ की बात कर रही हूँ मैं, तो उसके बाद वो आपसे कई लोग डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो हमारे कंसल्टेंट्स थे हमारे टाइम में, वो 1 मंथ की सैलरी लेते थे। तो कई बार वो कंपनीज से उनका टाई अप होता था, उनसे लेते थे, कई बार वो हमसे लेते थे। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो अभी आपको देखना है कि आप कितनी डेस्परेटली चीज़ों को बिना ऑथेंटिकेट किए करना चाहते हैं, उससे हमेशा नुकसान होता है। हाँ, हो सकता है कभी आपको, मेरे एक फ्रेंड का तो सही बैठ गया था, नहीं हो सकता है, ये लैंग्वेज आप लोग यूज़ करते हैं इसलिए मैं कर रही हूँ, नहीं तो अदरवाइज जस्ट टू कनेक्ट विद जेंजीज मैं ये बोल रही हूँ, बट अदरवाइज आई डोंट यूज़ सच थिंग्स। तो मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि सही चीज़ें बैठ सकती हैं आपके लिए, लेकिन वंस इन अ वाइल वाली बात होती है। इसलिए कुछ भी कर रहे हैं, आपके पास कोई OTP इंस्टेंट मांगने के लिए आ जाता है, कोई कॉल आ जाती है कि आपकी मदर ने, आपके फादर ने इंस्टेंटली, वो कहीं फंस गए हैं, उनका मोबाइल नहीं चल रहा, उन्होंने कहा इस नंबर पे फटाफट पेटीएम कर दो, उनका चलान कट गया, ऐसा कोई इमरजेंसी काम मत कीजिए। अगर आपके आपके घर वालों से बात नहीं हो पा रही है, रिश्तेदार हैं उनसे बात कर लीजिए, किसी भी अनयूजुअल नंबर पे आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए. दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट यू. अदरवाइज़ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत देती हैं लोगों को, और व्हेन यू डोंट रियली सी थिंग्स फ्रॉम द राइट पर्सपेक्टिव तो आगे जाके दिक्कत होती ही होती है. सो प्लीज़ ये सबको मैं बताना चाहती हूँ. बाकी सी बहुत सारी डिटेल मैं अभी यहाँ पे दे ही नहीं सकती हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं. बस आपको इतना करना है, यू हैव टू बी वेरी सेफ एंड साउंड, और कोई भी ऐसी चीज़ ना करें जो जल्दबाजी की हो, और शुड नॉट फॉल इन टू प्लेस. अभी जो चीज़ है फॉल है वो साड़ी का ही है, बस दैट्स इट.

0: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
1: ऑल राइट, देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लगातार आपको बताते रहते हैं, लेकिन वही है कि रिमाइंडर करत करत अभ्यास्ते जड़मति होत सुजान और रसरी आवत जातते सिल पर पड़त निशान, विच मीन्स रिमाइंड कराते रहते ना, इसलिए चीज़ें याद रहती हैं वरना दिमाग से निकल जाती है। कभी आपने रियलाइज़ किया कोई बहुत पुराना आपकी ट्रैवल हो, उसको अगर आप बार बार फोटोग्राफ्स नहीं देखें या फिर रीविजिट ना करें अपने दिमाग में, या फिर नहीं लिखी होगी ना कहीं अपनी डायरी में क्या क्या क्या किया था, तो जब आप काफ़ी सालों बाद वहाँ जाते हैं ना तो आपको वाकई बिलीव नहीं होता, अच्छा ये किया था क्या हमने, आई फॉरगॉट। आई डोंट नो अबाउट रेस्ट ऑफ यू, मेरे साथ ऐसा बहुत होता है। मुझे एक पर्टिकुलर एज तक की जो चीज़ें हैं ना वो अपने फ्रेंड्स के साथ की वो फिर भी याद रहती हैं, लेकिन उसके बाद की मुझे ऐसा लगता है अगर बार बार उसको रिमाइंड ना करूँ आधी चीज़ें उसमें से स्किप हो जाती हैं। सो ये ज़्यादा व्यस्तता के कारण है और बहुत सारी चीज़ें जो हम अपने आप को ओवरबर्डन कर लेते हैं ना तो ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से इम्बाइब नहीं कर पाते हैं, बस वही एक प्रॉब्लम है। लेकिन बाकी किसी चीज़ की प्रॉब्लम हम आपको होने ही नहीं देंगे, पॉसिबिलिटी नहीं है ना, क्योंकि हम आपको बताते रहते हैं। तो देखिए जी, अगर आज किसी का बर्थडे है और बाय चांस भूल गए हैं तो याद करवा दीजिए, आज 6 तारीख है, बहुत लोगों का बर्थडे होगा, एनिवर्सरीज होगी। अगर कोई ऐसी पेमेंट है जो आपने नहीं की, आज आपकी डेडलाइन थी कोई अपना क्रेडिट कार्ड का बिल देने का, या फिर स्कूल के बच्चों की फ़ीस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, कई बार आपको उसकी पेमेंट करनी होती है, रह गई हो सोसाइटी की, आपको मेंटेनेंस के बिल पे करने हैं वो रह गए हैं, देन मेक श्योर दैट यू हैव डन इट, ताकि कोई उसका सरचार्ज ना लगे, आपको दिक्कत ना हो। मेरी मेमोरी में जितनी जितनी चीज़ें आती हैं वो मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करती हूँ, बाकी आप उसको निभाने की कोशिश कीजिए। हमेशा आप लोग कहते हैं कि सबको नाम लेके बर्थडे विश किया कीजिए, वो पॉसिबल ही नहीं है ना, कैसे करेंगे। तो इसलिए मैं सबकी तरफ से कलेक्टिव विश कर देती हूँ सबको।

Yay! So this is happy birthday to everybody, जिनका भी आज बर्थडे हमारी आकाशवाणी फैमिली की तरफ से. सभी बहुत प्यार से आप सबको विशेस देते हैं फॉर गुड हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस. और जिनकी एनिवर्सरीज हैं ओहो ऑल द वेरी बेस्ट. ये भी मैंने भी गंदा जोक मारा है. एक्चुअली ये लोग अक्सर कहते हैं कि शादी 7 ईयर इच हो गई है, ये हो गई है, चलो जी कितने साल शादी को हो गए, मजाक की बातें. बट इट्स अ गुड बॉन्डिंग, इट्स अ गुड सपोर्ट, इट इज़ अ गुड एसोसिएशन. इन्जॉय इट. खट्टी मीठी तो एक्सपीरियंसेस होती हैं, बट वी ऑल हैव टू इन्जॉय इट इन अ बेस्ट पॉसिबल मैनर. फिलहाल आप इन्जॉय कर रहे हैं हमारा शो सिटी लाइट्स या नहीं, मैं नई की बात ही नहीं बोलूँगी ना. मैनिफेस्टेशन माई जेंजीज 100% इन्जॉय कर रहे हैं क्योंकि आप हैं मेरे साथ, आपकी अपनी गजब की गीतांजलि सोनी के साथ. ओनली ऑन वेयर आकाशवाणी, वेयर एल्स. ये गाना आपको अच्छा लगेगा, इट्स अ फंकी सॉन्ग.

0: है बबल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

कैसी लगी, शांत सी टोन। कई बार पता है क्या होता है ना, जो इतनी आपाधापी भीड़ भाड़ है हमारी लाइफ में, उसमें कई बार हमें ना वो जो एक पीसफुल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है ना, उससे घबराहट होने लगती है। आपने कभी नोट किया होगा, जब आप घर में अकेले होते हो ना, यू डोंट फील लाइक आपको कुछ ना कुछ चाहिए। या तो टीवी चलता रहे, या फिर आपका मोबाइल हमेशा आपके हाथ में रहे, आप बात करते रहें किसी से, खाना खाना है तो टीवी देखना है, बात करनी है तो फ्रेंड से वीडियो कॉल कर लेनी है। अगर आप अकेले हैं, यू कैन नॉट हैंडल द लोनलीनेस। यू मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, हम सब की ये हालत हो गई है। इसका कारण पता है क्या है? द इंटरनल फियर ऑफ बीइंग द एम्प्टीनेस।

आपके साथ कोई बैठा नहीं, बात नहीं कर रहा, फ़ोन भी नहीं है, टीवी भी नहीं है, घर शांत है, तो आपको जों जों अजीब सा लगता है. मतलब ऐसा लगता है जल्दी खाओ, कैसे खाओ, क्या खाओ. सो दिस इज़ समथिंग क्वाइट कंसर्निंग ऑल्सो. मैं डेंजरस कहने वाली थी, फिर मुझे लगा कि नहीं, लाइफ में इतना कोई डेंजर क्या है, इट्स कंसर्निंग. तो ये अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो करके बताना, अगर आज तक आपने एक्सपीरियंस नहीं किया. कई बच्चों ने तो एक्सपीरियंस किया भी नहीं होगा, उनको लगेगा ओ माई गॉड, अच्छा, क्योंकि दे आर ऑलवेज सराउंडेड बाई फ्रेंड्स, चाहे वो फ़ोन पे हो, चाहे वीडियो कॉल पे हो, चाहे उनके साथ घूम रहे हो, दे आर ऑलवेज सराउंडेड, दे आर नेवर अलोन. तो अगर कभी ऐसा है तो ट्राई करना और फिर मुझे बताना हाउ वाज योर एक्सपीरियंस. बट मेरा एक्सपीरियंस तो ये कहता है कि भाई जितना अपने आप को बैलेंस रखने के लिए, तो दिन में एटलीस्ट 5 मिनट से स्टार्ट करो. टेक योर ओन टाइम, अपने आप को थोड़ा सा मी टाइम दो, अकेले, बिना फ़ोन, बिना मोबाइल, बिना टीवी, बिना म्यूजिक, बिना कॉन्वर्सेशन, जस्ट क्वाइट लाइक दिस, ट्राई करना. अच्छा, कार्बन, आपने कार्बन गार्डन्स के बारे में सुना है कभी? जो लोग यूनिवर्सिटीज़ में हैं उनको तो पता होगा, बिकॉज़ इसकी शुरुआत ही यूनिवर्सिटी में हुई थी. तो बेसिकली कार्बन गार्डन्स होते हैं जो कि पॉल्यूशन को कम करने में मदद करते हैं, बट इन अ वेरी स्पेशल वे. ह्यूज जगहों पे अगर गार्डन नहीं बन सकते तो इनकी स्पेशलिटी होती है कि ये ना एक हाई एफिशिएंसी गार्डन्स बनते हैं स्मॉल प्लेसेस में. जैसे आपने कई बार देखा होगा ना, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी होता है, तो वो कैसे बॉटनी के ब्यूटिफुल से गार्डन छोटे छोटे बताते हैं. तो सो दिस इज़ समथिंग विच यू हैव टू रियलाइज़ कि जब चीज़ें हमारे पास स्पेस नहीं होती तो क्रिएटिविटी पैदा करनी पड़ती है, जिसमें यू कैन श्योरली मेक अ डिफरेंस. हमें लगता है अरे इसमें क्या होगा, बट बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा अपने घरों के ऊपर, चाहे छोटा सा घर हो, सोलर पैनल्स लगा के बिजली बचा लेते हैं, अपने घरों में छोटे से गार्डन्स बनाते हैं, छोटे से किचन गार्डन्स, मतलब गार्डन भी कहना उनको मैं क्या ही कहूँ, लंबे लंबे गमलों में वो मिर्ची, बैंगन, भिंडियाँ तक उगा लेते हैं, एंड दे एक्चुअली वो कहते हैं इससे हमारी हफ्ते की सब्जी निकल आती है. कैन यू बिलीव इट? तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं. और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी को खासकर बधाई देना चाहती हूँ, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं, किस किस का नाम लूँ, बिकॉज वो ये ऐसे इनिशिएटिव लेते रहते हैं, स्पेशलाइज ग्रीन गार्डन बनाते हैं. और अभी भी एक हमारे जो कॉलेज है मिरांडा, उन्होंने बहुत अच्छा कार्बन गार्डन बनाया है, एंड ये एक्चुअली इट्स गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, क्योंकि इसमें बच्चे, हाँ, कल को उनके भी अपने घर होंगे, अपने घरों में स्पेस होगी, तो वो भी इस चीज़ से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. बिकॉज घर में आप जो लगाते हैं ना अपने साफ करने के लिए, आजकल वो यंत्र आते हैं, हिंदी में मैं बोल रही हूँ उसको ऑक्सीजन प्योरीफायर्स, तो उनकी जगह आप ऐसे बायोडाइवर्सिटी छोटे छोटे अपने घर में आप प्लांट्स लगा सकते हैं, चाहे वो एल्गे के हों, फंगी के हों, उसमें बड़े अच्छे ना सॉयल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के साथ मिक्स करके चीज़ें बनती हैं. सुनने में शब्द बड़े लगते हैं लेकिन इतने डिफ़िकल्ट है नहीं टू मैनेज. तो ट्राई एंड मैनेज समथिंग, लाइक आई एम मैनेजिंग एवरीथिंग विद माई फ्रेंड्स लाइक यू. प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ साथ मिलके आगे बढ़िए, चीज़ें बेटर करिए, बिकॉज आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स. समय होने वाला है भैया समय समाप्ति की घोषणा अभी नहीं होगी, थोड़ी देर में होगी. अभी तो सुन रहे हैं आप अपनी गज़ब की गीतांजलि को, इंडियन स्टेशन ऑफ द नेशन.

ना ना जी, थम तो बावड़े ना हो कती भी बोल लेती हूँ। कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो यूनिवर्सल लैंग्वेजेस में आनी चाहिए, मुझे ऐसे लगता है, जिसमें ऑब्वियसली हिंदी है, इंग्लिश है, उसमें हमारे हरियाणा की भाषा भी होनी चाहिए भाई, क्योंकि इसमें जो एक दबंग, एक एक पर्सनैलिटी है ना, वो अलग ही लेवल की है। सो वेल, वैसे तो सारी लैंग्वेजेस बहुत ही, बंगाली इतनी स्वीट, इतनी प्यारी, बहुत ही अफेक्शनेट लैंग्वेज लगती है, सारी भाषाएं बहुत ही जिसमें अपनत्व है उस तरीके की लगती हैं, इसलिए आई लव माई इंडिया, वॉट टू डू, बट राइट नाउ आई लव माई नेशन, बट आई लव यू गाइज मोर देन एनी थिंग एल्स। इसलिए आपकी सेफ्टी, आपकी सुरक्षा का हमेशा बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ना केवल हमें, आपको तो रखना ही चाहिए। तो प्लीज़, इफ़ यू आर ऑन रोड, प्लीज़ बी वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल। अगर कोई डाइवर्जन्स है उनको फॉलो करें, ये मत बाइक खास कर, हेलो आप सुनो जो बाइक चला रहे हो, सुनो मेरी बात, ये ना ना ये नहीं करना कि हम तो जी अपनी बाइक कहीं पे भी मोड़ के गलत तरफ, रॉन्ग साइड लेके जाएंगे, पेडेस्ट्रियन पे चला देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा नहीं करना भाई, ऐसा नहीं करना, बिकॉज आपका एक एक गलत जो टर्न होता है ना, वो बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करता है, फिर वहाँ पर जाम लग जाते हैं, गलत टर्न्स की लाइन लग जाती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सो जस्ट अवॉइड इट, डू नॉट क्रॉस द रेड लाइट, येलो लाइन पे आप थोड़ा सा पीछे ही खड़े रहो तो अच्छा है, क्योंकि आजकल बहुत स्ट्रिक्टनेस है, फिर चलान मोटे मोटे दो, और हमेशा जैसे मैं कहती हूँ, देश के जो है धन कुबेर में योगदान दो, अगर आप ऐसे ही देना चाहते हो। फिलहाल मेरा योगदान स्टूडियो में इतना ही था आपके साथ अभी के लिए, क्योंकि गीतिका आ गई हैं एंड शी इज़ गोइंग टू टेक यू ऑन द जर्नी ऑफ स्पाइसी मैसेज मसाला मिक्स। तो आपके सारे मैसेजेस पढ़े जाने वाले हैं, जो शिकायत आपको सिटी लाइट्स में रहती है ना कई बार, वैसे अब समझदार हो गए, अब इतनी नहीं करते, पहले बहुत करते थे, वो नहीं होगी। अभी आपको मुझे कहना है, जाने दो मुझे जाना है, जी वादा वादा बिल्कुल अभी सड़कों से करना है, मुझे जाके मिलना है वहाँ पर क्या हाल है उसका जायज़ा भी लेना है। फिलहाल खुश रहिए, अपने आसपास वालों को खुश रखिए, अपना ध्यान रखिए, जल्दी मुलाकात होती है। अपने गज़ब की गीतांजलि सोनी को टाटा बाय बाय कह दो, बाय।

नमस्कार दोस्तों, लीजिए सुनिए एफएम रेनबो पर मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश की समुद्री शक्ति को और बढ़ाने तथा रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए एक मजबूत और एकीकृत समुद्री इकोसिस्टम की आवश्यकता है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा है कि वो बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से 8 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली परामर्श का आंकड़ा पार कर लिया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने आज स्वदेशी हाई ऑल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म फ्लाइट का सफल परीक्षण किया। वस्त्र मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में वस्त्र उद्योग विकास परिषद की पहली बैठक में उत्पादन, नए प्रयोग और वैश्विक बाजार तक पहुंच बढ़ाने के लिए पूरी मूल्य श्रृंखला के स्तर पर मिलकर काम करने पर जोर दिया है। भारत ने आज ओमान के तट के पास पनामा के झंडे वाले वाणिज्यिक जहाज एम्प्टी ऑन पीस पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरते समय जहाज पर हमला किया गया। दिल्ली पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी और निर्माण करने वाले अंतर्राज्यीय नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। ये नेटवर्क राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उत्तर प्रदेश में सक्रिय था। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की 2020 श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। और मौसम विभाग ने आज केरलम माहे दक्षिण आंतरिक कर्नाटका तमिलनाडु पुदुचेरी और कराई इलाक में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये थे अब तक के एफएम रेनबो पर मुख्य समाचार। स्टे ट्यून्ड।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: वेल दोस्तों, टाइम हुआ है ऑन द डॉट फ्रॉम माय स्टूडियो क्लॉक 6:04। मैं हूँ गीता और आप सुन रहे हैं 102.6 एफएम रेनबो। आजकल जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा करवट ले रहा है। कभी गर्मी, दिन में तो अमूमन बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, और कई बार जब हम सुबह उठते हैं तो ठंडी ठंडी हवा हमारा स्वागत करती है। और दोस्तों, इसी बदलते मौसम का असर है कि बहुत सारे लोगों को कोल्ड कॉफ और ये जो वायरल है आजकल जो चल रहा है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और आज तो मेरा भी गला कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, इसलिए अगर आज मैं आपके मैसेजेस थोड़े से कम लूँ या मेरी आवाज़ थोड़ा सा साथ कम दे तो प्लीज़ नाराज़ मत होइएगा, राइट? आपका साथ और आपकी जो समझदारी है ना, वो मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखती है। लेकिन गला चाहे दोस्तों कितना भी ख़राब हो, आपसे बातें करने का जो मन है ना, वो बिल्कुल फंटास्टिक है, बिल्कुल अच्छा है। तो चलिए, इसी प्यार के नाम आज का जो ट्रिपल है मैं, जिसे आप और हम कहते हैं मैसेज मसाला मिक्स, शुरू करते हैं। आज की हमारी बात भी कुछ ऐसी ही होगी, हम टाइम ज़्यादा नहीं लूँगी, फटाफट से आपका जो आज का मैसेज है ना वो बता देती हूँ, जो शायद आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है।

तो जनाब सवाल ये है मेरा कि हमारा जो फ़ोन होता है ना, हमारी ज़िंदगी है ना, हम सभी की ज़िंदगी है हमारा फ़ोन। हमारे फ़ोन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे पिक्चर्स हो गई, वीडियोस हो गए, या मैसेजेस हो गए, या हमारे जो स्क्रीनशॉट्स हो गए, लेकिन इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम चाहकर भी डिलीट नहीं कर पाते। किसी अपने की तस्वीर हो गई, कोई पुराना मैसेज हो गया, या फिर हमारा जो बच्चे होते हैं उनके बचपन की कोई वीडियो हो गई, बचपन का कोई ऐसी पिक्चर्स हो गई जो हम डिलीट नहीं करना चाहते, माँ बाप की आवाज़ का कोई वीडियो हो सकता है, या फिर किसी ख़ास दिन की एक बहुत ही सिंपल सी साधारण सी पिक्चर हो सकती है। तो जनाब आज का सवाल सिर्फ छोटा सा आपसे यही है कि आपके फ़ोन में ऐसी कौन सी चीज़ है, ध्यान से सुनिए सवाल, आपके फ़ोन में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप चाहकर भी डिलीट नहीं कर पाते, और उसके पीछे कौन सी कहानी है आपको मुझे बताना है। कहाँ बताएंगे, मेरा तो नंबर वही है पुराना, आपको पता है 9868107070 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। हो सकता है आपके फ़ोन में पड़ी वो छोटी सी चीज़ किसी और की भी एक बहुत ही खूबसूरत याद बन जाए। तो बताइए आपके फ़ोन में वो क्या है जिसे आप डिलीट नहीं करना चाहते, फटाफट से मैसेज कीजिएगा। राइट

वेल एक बात तो है दोस्तों, हम अपने फोन की गैलरी में सिर्फ तस्वीरें नहीं रखते, कई बार तो पूरा इतिहास जमा कर लेते हैं कि तस्वीर की कई बार देखते हैं 15 कॉपीज, ब्लरी सेल्फीज, गलती से क्लिक हुई सीलिंग की पिक्चर, किसी दुकान का स्क्रीनशॉट, किसी चीज़ का प्राइस देखकर लिया हुआ स्क्रीनशॉट, और मज़ेदार बात यह है कि स्टोरेज फुल होने के बाद भी इन्हें हम डिलीट नहीं करते या डिलीट करने का मन नहीं करता है। तो चलिए इस पर मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे मैसेज किए हैं, और सबसे पहला मैसेज किसका आया है, ये है नीलम दिल्ली बरवाला से। लिखते हैं कि गीता मैम नमस्कार, आपको भी प्यारा सा नमस्कार, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। और ये लिखती हैं आगे कि मेरे लिए ख़ास मेरे बच्चों की बचपन की पिक्चर्स हैं। बिल्कुल सही बात है, सभी के लिए है। कई बार हम अपने फ़ोन की गैलरी में जाते हैं तो अपने बच्चे की कोई बहुत ही पुरानी फ़ोटो निकल आती है, तो उसको देखकर बहुत अच्छा लगता है। तो वाकई में वो हम कोई भी हम उस पिक्चर को डिलीट करना नहीं चाहते हैं। थैंक यू सो मच नीलम जी। ये मैसेज आया है, लिखती हैं कि क्योंकि फ़ोन में जो होता है ना वो महत्वपूर्ण जानकारी होती है, इसलिए वो हम डिलीट नहीं कर पाते हैं। कुमार गौरव लिखते हैं नेशनल पार्क तालुका चेमूर डिस्ट्रिक्ट से। थैंक यू सो मच। जी हाँ, फ़ोन की गैलरी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं, और लेकिन उसके अलावा कचरा भी बहुत होता है, कचरा ज़्यादा होता है, इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी होती हैं बट कचरा बहुत होता है फ़ोन में। प्रवीण चौहान जुड़े हैं खरगोन मध्य प्रदेश से, लिखते हैं वैसे मैं तो सब डिलीट कर देता हूँ लेकिन कुछ फैमिली फ़ोटोज़ हैं उसे कभी भी डिलीट नहीं करता। जी थैंक यू सो मच, ये सभी का जवाब है, और सभी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं तो वो पिक्चर तो हम कोई भी डिलीट नहीं करता। हरीश गौर मेरठ से जुड़े हैं, FM रेनबो का व्हाट्सएप नंबर डिलीट नहीं करना चाहता। जी हाँ, थैंक यू सो मच, वो डिलीट करेंगे तो मैसेज कहाँ करेंगे। थैंक यू सो मच हरीश कौर जी। और एक और मैसेज मेरे पास आया, ये है सौरभ अनिजा गाज़ियाबाद से। ये वैसे हमेशा यही लिखते हैं वेलकम बैक, और नीचे अपना नाम लिखते हैं सौरभ अनिजा फ्रॉम गाज़ियाबाद। आज इन्होंने कुछ लिखा है, लिखते हैं दोस्त मेरी आपको यही एडवाइस है कि आप आज सॉन्ग्स ज़्यादा प्ले करें और मैसेजेस कम लें। हाउ स्वीट। वैसे ये बात अलग है कि मुझे आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुनकर खुशी होती है, सॉन्ग्स तो FM पर 24/7 आते ही रहते हैं। हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच सौरभ अनिजा जी। आपने इतना सोचा कि आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो आपने इस बारे में सोचा, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। और एक और मैसेज मेरे पास आया है, लिखने वाले हैं हीरा मणि वर्मा छत्तीसगढ़ से। ये लिखते हैं कि कार्यक्रम मैसेज मसाला मिक्स मुझे पसंद आ रहा है। आगे लिखते हैं मेरे फ़ोन में मेरी बचपन की पिक्चर्स और फैमिली की यादगार फ़ोटोज़ हैं जिसे मैं चाहकर भी डिलीट नहीं कर सकता, हालांकि सभी की दूसरी कॉपी भी रखता हूँ। थैंक यू सो मच मेरे दोस्त।

एक और मैसेज मेरे पास आया है नवाब अहमद भारती, कहाँ से लिखते हैं ये जगह का नाम, शायद इन्होंने नहीं लिखा। लिखते हैं आरजे साहिबा जी, नमस्कार, आपको भी बहुत ही प्यारा सा नमस्कार। मेरे फ़ोन में 20 अगस्त रेडियो लिसनर्स डे की कुछ बहुत ही यादगार तस्वीरें हैं जो मैं चाहकर भी डिलीट नहीं कर सकता, क्योंकि वो प्रोग्राम दिल्ली रेडियो लिसनर्स क्लब ने ऑर्गेनाइज किया था। थैंक यू सो मच टीम मैसेज करने के लिए, और कुछ

फोटोग्राफ्स, कुछ पिक्चर्स इतनी यादगार बन जाती हैं किसी कार्यक्रम की कि उनको हम चाहकर भी डिलीट नहीं करते, और वो हमारी एल्बम की बहुत ही ख़ास एक मतलब एक जगह ले लेते हैं एल्बम में। थैंक यू सो मच। हाँ, किशन वंजानी, नीलम, स्वाति और किशु रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से मेरे तमाम दोस्त जुड़ गए हैं। गुड इवनिंग, वेलकम टू द शो। हमारे मोबाइल में हमारे बचपन की बहुत ही यादगार तस्वीरें हैं और कुछ नटखट सी कोई शरारत भरी, उन्हें हम डिलीट नहीं करना चाहते। नाइस प्रेजेंटेशन, थैंक यू सो मच।

वेल दोस्तों, टाइम हुआ है ऑन द डॉट फ्रॉम माय स्टूडियो क्लॉक 6:16। प्रोग्राम चल रहा है ट्रिपल एम, जी हाँ, जिसे कहते हैं मैसेज मसाला मिक्स। ये है 102.6 एफएम रेनबो। मैं हूँ गीता और आज का जो हमारा सवाल है वो यही है कि आप अपने फ़ोन की गैलरी और व्हाट्सएप के पुराने मैसेजेस पर एक नज़र डालें तो आपके फ़ोन में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप डिलीट नहीं कर पा रहे हैं, और सबसे मज़ेदार बात, आपने उसे अब तक संभाल कर क्यों रखा है। अपनी बात मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9868107 हो सकता है आपके फ़ोन में पड़ी वो एक छोटी सी चीज़ किसी और की भी एक खूबसूरत याद बन जाए, राइट।

वेलकम बैक। यशवंत जी जुड़े हैं महाराष्ट्र से, लिखते हैं, नमस्कार, शुभ संध्या। हमारे मोबाइल में हमारे पिताजी की तस्वीर है और हम उसको कभी भी डिलीट नहीं करते क्योंकि उनके स्मरण के लिए हम ये रखते हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने लिखी है। एक्चुअली हमारे फ़ोन में सिर्फ तस्वीरें और नंबर नहीं होते, वहाँ हमारी ज़िंदगी के कई छोटे बड़े किस्से भी छिपे होते हैं। किसी पुराने दोस्त की तस्वीर, माँ की आवाज़ की कोई रिकॉर्डिंग, पापा की कोई पिक्चर, किसी अपने का पुराना मैसेज, बच्चे की बचपन की तस्वीर, या फिर कोई ऐसी स्क्रीनशॉट जिसे देखकर आज भी दिल थोड़ा सा भावुक हो जाता है। और आज का सवाल भी ऐसा ही जुड़ा है, ऐसा ही मैंने पूछा है कि आपके फ़ोन में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप चाहकर भी डिलीट नहीं कर पा रहे हैं और क्यों। तो बहुत सारे मैसेजेस इस वक्त मेरे पास आ गए हैं। ये अंशी शर्मा जी जुड़ी हैं हस्तिनापुर मेरठ से, लिखती है कि गुड इवनिंग डियर गीतू मैम, थैंक यू सो मच, आपको भी प्यारा सा नमस्कार, कैसी हैं आप। मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। आगे लिखते हैं कि मैं आज के टॉपिक पर यही कहना चाहूँगी कि जब बात मोबाइल में कुछ ऐसी पर्सनल डिटेल्स की हो तो मैम सबसे ज़रूरी हमारे लिए हमारी पिक्चर्स हैं, क्योंकि जब हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो वहाँ की जो मेमोरीज़ हैं वो उनको हम कैमरे में कैप्चर कर ही लेते हैं। तो हम इसलिए रखना चाहते हैं कि जिससे कुछ नई पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हम बड़े होते जाते हैं, लाइफ इज़ फ्लाइंग, लाइफ नहीं रुकती है, समय कभी नहीं रुकता है, लेकिन आज की खींची हुई जो तस्वीर है कल वो पुरानी हो जाती है और वो हमारी याद बन जाती है। थैंक यू सो मच अंशी शर्मा जी।

मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी हैं। वाह, बहुत अच्छा लगता है जब इतनी दूर दूर से मैसेजेस आते हैं। इनका नाम है जोया। ये लिखती हैं कि मेरे मोबाइल में मेरे बहन का नंबर, उसकी और उसके परिवार की वीडियोस, उसकी ऑडियोज़ हैं, मेरे अपनी फ़ोटोज़ हैं। जहाँ जहाँ पर मैं लॉन्ग ड्राइव पर गई थी, मैं ये सब नहीं डिलीट कर सकती। थैंक यू सो मच जोया। मेलबर्न से आप सुन रही हैं इस वक्त हमें, और बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है कि आप सुन ही नहीं रही प्रोग्राम, बल्कि सुनकर अपने विचार, अपनी फीलिंग्स हमारे साथ शेयर कर रही हैं। थैंक यू सो मच। मोहम्मद सरफराज आलम, जो कि हर दर्शना बाजार अररिया बिहार से मेरे साथ जुड़ गए हैं, लिखते हैं कि आरजे गीतू जी, मेरे फ़ोन में ऐसी चीज़ है जिसे मैं चाह कर भी डिलीट नहीं करता। जब एफएम रेनबो के मैसेजेस, मैसेज शो ट्रिपल एम आता है, या किसी अन्य कार्यक्रम में मेरा मैसेज, शेर व शायरी, कविता ऑन एयर होता है, तो मैं उसे रेडियो रिकॉर्डर से रिकॉर्ड कर लेता हूँ। वाह, क्या बात है। उन रिकॉर्डिंग्स को मैं कभी भी डिलीट नहीं करता, क्योंकि उनमें मेरी यादें जुड़ी हैं। वाह, क्या बात है। वाह, तो आपकी, आपके मैसेज के साथ साथ तो हमारा नाम, हमारा प्रोग्राम भी जुड़ जाता है। थैंक यू सो मच। देखो, ऐसे ऐसे भी लिसनर्स हैं जो इतने पुराने पुराने रिकॉर्ड्स रखते हैं। थैंक यू सो मच सरफराज जी। आगे लिखते हैं, आपकी आवाज़ की रिकॉर्डिंग भी मेरे फ़ोन में है, उसे मैं भी चाहकर डिलीट नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच।

न्याय पारा भिरई से, लेकिन इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा। लिखते हैं गीता जी, सबसे पहले तो आपको गुड इवनिंग, आपको भी प्यारा सा नमस्कार। और हमारे मोबाइल पर गूगल के ज़रिए हमें सब कुछ ज्ञान मिलता रहता है, हम सब कुछ सीखते रहते हैं जिसे हम डिलीट नहीं करते, जो कि दूर दूर से मोबाइल के माध्यम से बात होती है जी। थैंक यू सो मच। मोहल्ला हलवाइन शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मुझे रिश्तों की लंबी कतार से मतलब नहीं है। वाह, मुझे रिश्तों की लंबी कतार से मतलब नहीं है, कोई दिल से मेरा हो तो एक शख्स ही काफ़ी है। वाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत। आप सुन रहे हैं 102.6 FM रेनबो, मैं हूँ गीता। प्रोग्राम MMM यानी मैसेज मसाला मिक्स।

0: रजनी शर्मा जुड़ी हैं मेरे साथ बागपत से, और ये लिखती है मेरे फ़ोन में मेरे पापा की फ़ोटो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो डिलीट हो जाती है ना तो मुझे बहुत दुख होता है। मेरे पापा इस दुनिया में अब हैं नहीं, इसलिए कभी भी अपने पापा की डीपी चेंज नहीं करती। अपने पापा की लाडली बेटी हूँ ना। रजनी जी, आपकी बात पढ़कर सच में आई स्वेयर मेरे दिल भर आया है। पापा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें आज भी हम लोगों के साथ रहती हैं, ताज़ा रहती हैं उनकी यादें, उनकी आवाज़, उनकी बातें, उनके साथ बिताया हुआ वो वक्त, सब कुछ बहुत ज़्यादा करीब लगता है। और शायद इसलिए फ़ोन में रखी उनकी कुछ तस्वीरें या मैसेजेस हम लोग डिलीट नहीं कर पाते, वो हिम्मत ही नहीं कर पाते कि उस पिक्चर को, उस फोटो को डिलीट कर दे, तो ऐसा लगता है दिल पे छुरी चल जाएगी। वो तस्वीर सिर्फ तस्वीर नहीं होती मेरे दोस्त, उनमें मेरे पापा और मेरा पूरा बचपन बसता है। आपकी याद ने आज एक बहुत खूबसूरत और एक भावुक एहसास फिर से जगा दिया। दिल से शुक्रिया दोस्त अपनी बात हमारे साथ शेयर करने के लिए।
1: है चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए तो जिंदगी में रंग भर दे।
2: मेरी जैसी मेरी अपनी पताका,
1: पताका चाय, गजब का स्वाद।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

वेलकम बैक। कभी कभी दोस्तों हम फ़ोन की स्टोरेज खाली करने के लिए बहुत कुछ कचरा डिलीट कर देते हैं, बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें भी डिलीट कर देते हैं, पुराने स्क्रीनशॉट्स, वीडियोस, व्हाट्सएप मैसेजेस, बेकार की पिक्चर्स। लेकिन कुछ चीज़ों पर जैसे ही उंगली जाती है तो डिलीट के ऑप्शन तक पहुँच कर रुक जाती है, क्योंकि वहाँ पिक्चर्स नहीं होती, वहाँ डेटा नहीं होता, वहाँ पर होते हैं हमारे इमोशंस। गुड्डू धाकड़ जुड़ गए हैं उज्जैन ज़िले के बेडावन गांव से। लिखते हैं कि मेरा एक बहुत ही प्रिय मित्र है और मेरे उस फ्रेंड से मेरा झगड़ा हो गया था करीब 2 साल पहले, और हम दोनों की दोस्तों की साथ में बहुत सारी पिक्चर्स हैं, उनको मैं कभी भी डिलीट नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्त उनके साथ तुम्हारी यादें और वो साथ बिताए हुए पल, वो सब कुछ जुड़ा हुआ है। आप चाहकर भी वो चीज़ डिलीट नहीं कर सकते। मोहल्ला अलवाइन शेरकोट ज़िला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी जुड़ गए हैं। आपको मेरा प्यार भरा सलाम। कैसी हैं आप? आपको मेरा प्यारा सा नमस्कार। मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, परफेक्ट हूँ। गीता जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। मेरा फ़ोन में कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हैं जो मेरी यादें हैं, जिनको मैं डिलीट नहीं करना चाहता। हमें भी शामिल कर लीजिए प्लीज़। तो जनाब, आपका जो मैसेज है वो हमारे प्रोग्राम में शामिल हो गया, और मैसेज करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बहुत सारे दोस्त नाराज़ भी हो जाएंगे, लेकिन मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ आपको, चाहे मेरी आवाज़ अच्छी लग रही हो या ना लग रही हो, क्योंकि मेरा गला बहुत ख़राब है। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से हमारे ये बहुत रेगुलर लिसनर हैं। कभी कभी थोड़े से नाराज़ हो जाते हैं, पर मैं मना लेती हूँ इनको। लिखते हैं ये लोग, आदरणीय गीता जी, गीतू जी, जब मेरे दोस्त, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो मेरे लिसनर्स हैं, गीतू लिखते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। लिखते हैं, सादर प्रणाम, आपको भी प्यारा सा नमस्कार, प्रणाम, शुभ संध्या, कार्यक्रम सुन रहे हैं हम, और हम अपने फ़ोन से प्रभु के परिवार की और अनमोल बातों को कभी भी डिलीट नहीं करना चाहते या करेंगे, ऐसा कुछ लिखा है। आपकी मंगल की संध्या बहुत बहुत मंगल में हो, कोटि कोटि धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ये भी आस्था की बात है ना, क्योंकि हम अपने प्रभु को इतना चाहते हैं कि अगर हम उनका कोई पिक्चर, कोई वीडियो, कोई अगर हम उनकी डीपी लगा लेते हैं तो हम उसको डिलीट नहीं कर सकते, ये हमारी आस्था है। थैंक यू सो मच आप सभी का। गीता जी नमस्कार, आपको भी मेरा नमस्कार। मेरे फ़ोन में बहुत सारे आरजे और लिसनर्स की फ़ोटो हैं जो कि 20 अगस्त रेडियो पर जो प्रोग्राम हुआ था उस दिन, उसकी बहुत सारी रेडियो लिसनर्स क्लब की तरफ से बहुत सारे फ़ोटोज़ खींचे गए थे, ऑर्गेनाइज़ किया गया था ये प्रोग्राम, और बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं उस प्रोग्राम की जो कि मैं डिलीट नहीं करना चाहता। आई थिंक सूफिया नवाब बल्ली मारान से, अच्छा, एक ऐसा ही मैसेज और आया था, वो मैंने अपने प्रोग्राम में शामिल किया था। थैंक यू सो मच आपका, आप जुड़े हैं बल्ली मारान दिल्ली से, थैंक यू। गुन्नौर जुड़ गए हैं, गुन्नौर से आदिल कमर तस्दीक अली और मुजफ्फर अली, सभी लोग जुड़े हैं। लिखते हैं कि मैसेज मसाला मिक्स में आरजे गीता साहिबा जी को बहुत ही प्यार भरा नमस्कार, आदाब, आपको भी प्यारा सा नमस्कार मेरी तरफ से। लिखते हैं कि खुदा भी हर कलर की तस्वीर बनाता है, वाह, खुदा भी हर कलर की तस्वीर बनाता है जिसे दिल हमारा अच्छा बुरा समझता है। मेरे फ़ोन की गैलरी में वो तस्वीरें हैं जिन्हें मैं बहुत प्यार करता हूँ, जिनसे मैं प्यार करता हूँ उन्हें अपने दिल की गैलरी में सजा कर रखता हूँ। वाह वाह वाह वाह, ये जो आपका मैसेज है मेरे दिल की गैलरी में जाकर ये सेव हो गया, थैंक यू सो मच। बहुत ही खूबसूरत आपने मैसेज लिखा है, और अब एक गाना सुन लेती हूँ, उसके बाद मैं लौट कर आती हूँ। स्टे ट्यून्ड।

निखिल जुड़ गए हैं मेरे साथ नागपुर से, लिखते हैं एक हमारा फोटो है हमारी पहली गर्लफ्रेंड के साथ, अब तो हम साथ में नहीं हैं मगर वो फोटो हमारे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है और उसे मैं कभी भी डिलीट नहीं कर सकता। वाह, आपकी पहली गर्लफ्रेंड की पिक्चर, अभी तक आपने उस पिक्चर को संभाल के रखा है, बहुत अच्छी बात है। वो तो एक ऐसी याद है जिसे हम चाहकर भी कभी भी नहीं भुला सकते, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर अब आपकी जो शादी हो चुकी है, पता नहीं मुझे, अगर शादी हो चुकी है तो उसे ज़रा संभाल कर रखिएगा, कहीं आपकी ये पुरानी याद आपकी नई वाली को ना मिल जाए, तो थोड़ी सी मुसीबत हो जाएगी, है ना।

मोहम्मद सरफराज आलम जोकीहाट दर्शना बाजार जिला अररिया बिहार से, पूरा एड्रेस हमने आपका पढ़ लिया है। ये खुद ही कविता लिखते हैं और आज भी जो लिखी है उन्होंने खुद ही लिखी है। ये लिखते हैं कि तेरी याद का मौसम कभी ढलता ही नहीं है, तेरी याद का मौसम कभी ढलता ही नहीं है, बिछड़ने का जख्म आज तक भरता भी नहीं। मुलाकात की उम्मीद लिए बैठे हैं हम, मगर तेरा इंतज़ार कभी ख़त्म होता ही नहीं है। बहुत ही खूबसूरत आपने लिखा है मोहम्मद सरफराज जी, थैंक यू सो मच। एक और मैसेज आया है मेरा, मेरे पास ये हैं, मेरे फ़ोन में बहुत सारे, नहीं ये मैसेज मैं पढ़ चुकी हूँ। एक मैसेज आया है, नमस्कार गीता जी, आपका गला भले ही ख़राब हो रहा है लेकिन फिर भी आवाज़ बहुत अच्छी आ रही है, थैंक यू सो मच। ये तो आपका प्यार है, आपका बड़प्पन है, आप इस शो को बहुत पसंद करते हैं। आगे लिखते हैं, मेरे मोबाइल फ़ोन में भी बहुत से श्रोताओं की ग्रुप फ़ोटो है, श्रोता सम्मेलन के अवसर पर श्रोताओं से मुलाकात होती रहती है, इन्हीं में से इन्हें मैं कभी भी डिलीट नहीं करता। भेरूलाल वाकतरिया धाकड़, ज़िला उज्जैन मध्य प्रदेश से इस प्रोग्राम में जुड़े हैं, थैंक यू सो मच आपका।

विजेंद्र गहलोत अकोला महाराष्ट्र से जुड़े हैं, लिखते हैं गुड इवनिंग मैसेज मसाला मिक्स में दीदी, हमारे फ़ोन की गैलरी में हमारी पूरी फैमिली की फ़ोटोज़ हैं और दोस्तों की भी हैं जो हम कभी भी डिलीट नहीं करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, आपने नीचे प्लीज़ प्लीज़ गीता जी मेरा मैसेज अपने प्रोग्राम में शामिल कर लीजिए। तो चलिए जनाब, आपका जो मैसेज है हमने अपने प्रोग्राम में शामिल कर लिया, थैंक यू सो मच।

वेल दोस्तों, टाइम हुआ है ऑन द डॉट फ्रॉम माय स्टूडियो क्लॉक 6:56 और लिपिका आ चुकी हैं प्रोग्राम लेकर। मैं चलती हूँ, टाटा बाय बाय, फिर मिलूंगी। आप अपना ख्याल रखिएगा, बाय।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, cada, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

नमस्कार दोस्तों, लीजिए सुनिए एफएम रेनबो पर मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश को समुद्री शक्ति को और बढ़ाने तथा रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए एक मजबूत और एकीकृत समुद्री इकोसिस्टम की आवश्यकता है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा है कि वो बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से 8 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने आज स्वदेशी हाई ऑल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म फ्लाइट का सफल परीक्षण किया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सेवा उत्पादन सूचकांक के दायरे को बढ़ाने के लिए कार्य योजना का मसौदा जारी किया है। राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली परामर्श का आंकड़ा पार कर लिया है। वस्त्र मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में वस्त्र उद्योग विकास परिषद की पहली बैठक में उत्पादन, नए प्रयोग और वैश्विक बाजार तक पहुंच बढ़ाने के लिए पूरी मूल्य श्रृंखला के स्तर पर मिलकर काम करने पर बल दिया है। दिल्ली पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी और निर्माण करने वाले अंतर्राज्यीय नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। ये नेटवर्क राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उत्तर प्रदेश में सक्रिय था। भारत ने आज ओमान के तट के पास पनामा के झंडे वाले वाणिज्यिक जहाज एमटी ऑन पीस पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते समय जहाज पर हमला किया गया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की 2020 श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में जारी है। और मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल्लाल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये थे अब तक के एफएम रेनबो पर मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: हाँ जी दोस्तों, की हाल चाल है थोड़े। टाइम हुआ है ऑन द डॉट फ्रॉम माय स्टूडियो क्लॉक 8:03। प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती, ये है 102.6 FM रेनबो। मैं हूँ गीता एंड आई होप इस प्रोग्राम को भी आप उतना ही प्यार देंगे जितना कि मैसेज मसाला मिक्स को दिया था। वो अलग बात है कि आज मेरी आवाज़ बहुत ख़राब है, लेकिन आपने बहुत बहुत प्यार दिया था उस प्रोग्राम को। थैंक यू सो मच वंस अगेन।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
3: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबा। आहा, अरे

नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

वेल दोस्तों, टाइम हुआ है ऑन द डॉट फ्रॉम माई स्टूडियो क्लॉक 8:56। स्टूडियो की घड़ी अब बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दे रही कि आपसे और बात करूं, क्योंकि खुर्शीद आलम आ चुके हैं बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम आपकी याद आती रही। आप उनके साथ रहिएगा, मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी। गुड नाइट, टेक केयर, शब खैर।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: आकाशवाणी के रेनबो चैनल पर वक्त है मुख्य समाचारों का। सरकार ने बहुआयामी योजना को सुव्यवस्थित करने के लिए एकीकृत परिवहन और रसद प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी। लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के लिए बड़ा प्रोत्साहन बताया। मंत्रिमंडल ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए 660 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि वे बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से 8 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की नगांव लोकसभा सीट के उपचुनावों के लिए मतदान संपन्न। मतगणना शुक्रवार को। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने आज स्वदेशी हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म फ्लाइट का सफल परीक्षण किया। सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सेवा उत्पादन सूचकांक के दायरे को बढ़ाने के लिए कार्य योजना का मसौदा तैयार किया है। भारत ने आज ओमान के तट के पास पनामा के झंडे वाले वाणिज्य जहाज एमटी ऑन पीस पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। हॉर्मोज जलडमरू मध्य से गुजरते हुए समय जहाज पर हमला किया गया है। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसीसी हालजेन को खगोलीय भौतिकी मूल के उच्च ऊर्जा न्यूट्रोनों की खोज के लिए 2026 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की 2020 श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में जारी। और मौसम विभाग ने आज केरलम माहे दक्षिण आंतरिक कर्नाटका और तमिलनाडु पुदुचेरी और काराईकाल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी के रेनबो चैनल पर ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: जैन साहब आकाशवाणी का रेनबो चैनल आपने ट्यून किया है। इस वक्त खुर्शीद आपके साथ है। प्रोग्राम आपका अपना पसंदीदा है जिसका नाम है आपकी याद आती रही। और साहब कभी कभी रातें सिर्फ रातें नहीं होती हैं, वो यादों का समंदर बन जाती हैं जिसमें हम तन्हाई की नाव लेकर उतर जाते हैं पर किनारे तक पहुँचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हर सांस हर लम्हा बस उसकी कमी को बयां करती है। खैर आगाज़ करते हैं इस खूबसूरत प्रोग्राम का जिसका नाम है आपकी याद आती रही।

और जब बशीर बद्र साहब कहते हैं कि ये कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नई मिजाज का शहर है, ज़रा फांसले से मिला करो। बहरहाल इस शहर में अब आंखों से बात नहीं होती, लोग हाथ मिलाने से भी कतराते हैं, यानी वक्त बदलता है और रिश्तों के मायने भी खुद ब खुद बदल जाते हैं। बहरहाल कभी कमरा लोगों से भरा हुआ करता था हमारा, लेकिन फिर भी दिल के कोने में एक खामोशी बसी रहती है, वो खामोशी जो यादों को चुपके से साथ में ले जाती है। और कुछ यादें रंगीन हंसती मुस्कुराती हैं और कुछ धुंध की तरह जो आंखों को बिल्कुल नम कर देती हैं। इनका कोई शोर नहीं होता, बस खामोशी होती है और हम होते हैं। इस पर जावेद साहब ने कहा है कि कुछ इस तरह तेरी यादों का असर छोड़ गया, कुछ इस तरह तेरी यादों का असर छोड़ गया, नींद आए भी तो औरों में कहर छोड़ गया, औरों में कहर छोड़ गया।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: जब आकाशवाणी का रेनबो चैनल आप रेडियो में क्या है प्रोग्राम है आपकी याद आती रही, उस वक्त खुर्शीद आपके साथ है। वैसे कुछ शामें वक्त से बाहर होती हैं जो धड़कनों में दर्ज हो जाती हैं। दो आंखें बरसों की बात एक पल में कह जाती हैं और कुछ मुस्कान सब कुछ बयां कर देती है। ये मुलाकात की शाम जो जिंदगी को नया सुर देती है, और कभी पुरानी कैफे की टेबल पर और कभी बारिश की बूंदों के बीच में ये शामें जो होती हैं दिल में बस जाती हैं। गुलजार साहब ने इस पर कहा है कि तेरा मिलना किसी मौसम का गुजर जाना, तेरा मिलना किसी मौसम का गुजर जाना, या तेरे जाने के बाद मौसम बहुत याद आता है। बहरहाल इस शेर में एक पल को जीने की ख्वाहिश भी है और उसे खोने की खलिश भी है। यादें कुछ ऐसी तो होती हैं।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती,

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: जैसा आकाशवाणी का रेनबो चैनल आप सुन रहे हैं, प्रोग्राम है आपकी याद आती रही। और यकीन मानिए ये वक्त ही ऐसा है कि हमें अपनों की याद आ ही जाती है। बहरहाल तन्हाई वो साया है जो भीड़ में भी साथ चलता है, न रात के अंधेरे से डरता है और ना उसमें घर बसाता है। कभी हालात से तन्हा होते हैं और कभी अपने ही अंदर। ये वो गुंजन है जो सबको अपना मानने के बाद भी अकेलेपन का एहसास देती है। जी हाँ, क्या है वो? तन्हाई। बहरहाल शायर कहता है कि ये सर्द रात ये आवारगी ये नींद का बोझ, ये सर्द रात ये आवारगी ये नींद का बोझ, हम अपने शहर में होते तो घर गए होते। वैसे जब बात करने वाला कोई ना हो ना तो हम खुद से बातें करने लगते हैं और वही हमारी तन्हा दास्तां बन जाती है।

और साहब आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल, मैं हूं आपके साथ खुर्शीद। और साहब जिंदगी कभी बंद कमरा बन जाती है हमारी, और जहां सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता है, लेकिन किसी कोने में एक छोटी सी लौ जलती है, वो होती है उम्मीद की लौ। वो कहती है कि अभी सब खत्म जिंदगी में नहीं हुआ है। ये लौ बिखरे इंसान को फिर से समेटने की ताकत देती है। इस पर शायर कहता है कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। यानी उम्मीद हो तो अंधेरे में सुकून जो है वो हमें मिल जाता है, और कहीं ना कहीं रास्ता भी जिंदगी का निकल जाता है। इसलिए हमेशा उम्मीद का दामन थामे रखना, क्योंकि जिंदगी में अगर उम्मीद है तो फिर आपकी जिंदगी गुलजार है।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल, मैं हूं आपके साथ खुर्शीद। प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना, आपकी याद आती रही, और धीरे धीरे वक्त जो है अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। और वैसे वक्त की अगर बात करें तो वक्त कभी हमें जख्म देता है और कभी ये वक्त मरहम बन जाता है। यानी फासले कभी लफ्ज़ों से मिट जाते हैं और कभी ज़िंदगी भर नहीं पाटे जाते। लोग ज़िंदगी में नहीं बदलते हैं, बस वक्त जो है।

वो बदल जाता है। रिश्ते हमेशा वही रहते हैं जहाँ कभी हंसी थी, और अब सिर्फ वहाँ यादें मुस्कुराती हैं। इस पर बशीर बद्र साहब ने कभी बड़ा खूब कहा है कि शायद मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, वक्त के साथ चलना पड़ा होगा उसे, वरना फासला तो दिलों में नहीं होता। वक्त ने फासले बनाए और सिखाया कि दिल यादों में भी जिंदा रहता है। कई प्रोग्राम ही ऐसा है जहां सिर्फ और सिर्फ यादें होती हैं और हम उसको याद करते हैं जिसका चेहरा देखकर हम खूब मुस्कुराया करते थे। लेकिन कहते हैं ना कि हर मुस्कुराहट भी मुस्कुराहट नहीं होती, उस मुस्कुराहट में भी कुछ छुपा होता है।

जी साहब, मोहब्बत कभी लफ्ज़ों में बयां नहीं होती बल्कि खामोशियों में बहती है, और कभी आंखों में तैरती है तो कभी दिल के कोने में चुपके से बैठ जाती है। कई मोहब्बतें अधूरी रहती हैं पर मुकम्मल लगती हैं क्योंकि उन्हें जिया गया शिद्दत से। बहरहाल गुलजार साहब ने भी कहा है मोहब्बत को लेकर कि मोहब्बत भी ज़रूरी थी, ज़माना भी ज़रूरी था। मोहब्बत भी ज़रूरी थी, ज़माना भी ज़रूरी था, हम दोनों के हिस्से में कोई एक तो आता। बहरहाल ज़िंदगी और मोहब्बत में कोई एक ही रुक जाता है और अनकहीं बातें जो होती हैं वो सबसे गहरा एहसास देती हैं। बहरहाल ये अगला कलाम आपके लिए, प्रोग्राम आपकी याद आती रही।

आकाशवाणी का रेनबो चैनल आपने ट्यून किया है 102.6 FM पर। प्रोग्राम है आपकी याद आती रही और इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ हूँ खुर्शीद। बात अगर मोहब्बत की करें, इश्क की करें, तो कभी कभी इश्क जो है खामोश रहता है और सिर्फ आँखों से बयां होता है, और वो ना कहा जाए तो भी दिल तक पहुँच जाता है। और ये वो दास्तां है ज़िंदगी की जो अधूरी रहकर भी शायद पूरी लगती है। कहते हैं कि तेरी आँखों में कुछ ऐसी बात थी, तेरी आँखों में कुछ ऐसी बात थी जो ना लफ्ज़ों में थी ना जज्बात में थी। बहरहाल खामोश इश्क की बातें दिल के गहरे, सबसे गहरे कोने में उतरती हैं। और अब इस प्रोग्राम से हम इजाज़त लेते हैं आपसे प्रोग्राम से, लेकिन 11 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी प्रोग्राम रंगे महफिल में। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, ठीक 11 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो चैनल, क्योंकि ये आपके साथ 24 घंटे है। सुनते रहिए।

आकाशवाणी के रेनबो चैनल पर वक्त है मुख्य समाचारों का। सरकार ने बहुआयामी योजना को सुव्यवस्थित करने के लिए एकीकृत परिवहन और रसद प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी। लघु और मध्य उद्यम विकास कोष के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के लिए बड़ा प्रोत्साहन बताया। मंत्रिमंडल ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए 660 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने आज स्वदेशी हाई एल्टीट्यूड पर प्लेटफॉर्म फ्लाइट का सफल परीक्षण किया। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 0.5% बढ़ाकर 7.1% किया। विपक्ष के विरोध प्रदर्शन को लेकर निर्वाचन आयोग ने स्पष्टीकरण दिया। आयोग ने कहा कि आज शाम 4 बजे तक किसी भी राजनीतिक दल ने आयोग से मिलने का समय नहीं मांगा था। राजस्व खुफिया निदेशालय की भारत बांग्लादेश सीमा पर कड़ी कार्रवाई। करीब 12 करोड़ की कीमत का लगभग 8 किलो 300 ग्राम विदेशी सोना बरामद। और बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को खगोल भौतिकी मूल के उच्च ऊर्जा न्यूट्रॉन की खोज के लिए 2026 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। और भारत ने 5 मैचों की T20 श्रृंखला के पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। आकाशवाणी पर ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

जी हाँ साहब, FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ प्रोग्राम शुरू हो चुका है रंग महफिल। और जैसा कि आप इस बात से वाकिफ हैं कि ये वक्त है गजल्स का, गजल आप इस वक्त सुनते हैं। और गजल की बात करें तो सिर्फ गजल सिर्फ शायरी का फॉर्म नहीं है, बल्कि ये दिल की ज़ुबान है जो अक्सर वो कह देती है जो हम खुद से भी नहीं कह पाते। इसमें एक रवानगी होती है जो हर दर्द को नगमा बना देती है और हर तन्हाई को मौसिकी में बदल देती है। शेरों में छुपे जज्बात मोहब्बत की दस्तक भी होती है और बिगड़ने की आवाज़ भी। और गज़लें सिखाती हैं कि कैसे आंसू मुस्कुरा सकते हैं और कैसे दिल टूटकर भी किसी महफिल में गा सकता है। निदा फाजिल साहब ने बड़े बेहतरीन अंदाज में कहा है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जब भी उसे देखें कई बार देखें। और यही वजह है कि हर बार गज़ल सुनने का एक नया एहसास होता है, कभी खुद की कहानी और कभी किसी और की खामोशी। तो आइए आगाज़ करते हैं आज की इस शबे एहसास को एक ऐसी गज़ल से जिसमें हर मिसरा रूह कुछ हो जाए।

अजहबा आकाशवाणी का रेनबो चैनल आपने ट्यून किया है 102.6 FM की लहरों पर। इस वक्त खुर्शीद आपके साथ है। अजहब, रात जब चुप हो जाती है तो दुनिया अपनी खामोशी में बोलने लगती है। आवाज़ नहीं, सिर्फ खामोशी। ऐसी रातें जब कोई पास नहीं होता सिवाय दिल की धड़कनों के। हर सन्नाटा किसी अधूरी बात को कहने की कोशिश करता है और हर तारा किसी याद का टुकड़ा बनकर टिमटिमाता है। और कुछ यादें सवालों जैसी बिल्कुल नहीं होती, कुछ जवाबों की तरह आती हैं और कुछ बस खामोशी की चादर ओढ़कर दिल के सबसे गहरे हिस्से में उतर जाती हैं। अहमद फराज साहब की कुछ अशार हैं। उनका कहना है कि शबे तन्हाई में अक्सर ये ख्याल आता है कि हमें भूल गया है कोई, जो याद आता है। बहरहाल, क्या आपको भी कभी किसी रात किसी की याद ने चुपके से दिल में दस्तक दी है? कोई लम्हा, कोई आवाज़, कोई वादा जो रात के सन्नाटे में जिंदा हो जाता हो? रातें बोलती हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए जो खामोशी सुनना जानते हैं।

कल इस चुप्पी भरी रात को एक गजल की नरमा आँच में सजाते हैं और ये कलाम आप तक पहुंचाते हैं। मैं हूं खुर्शीद।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: जैसा आप आकाशवाणी का रेनबो चैनल आपने ट्यून किया है 102.6 FM के लहरों पर, इस वक्त खुर्शीद आपके साथ है और प्रोग्राम रंगे महफिल। जिंदगी रंगों से बनी है और कुछ देखे हुए और कुछ महसूस किए हुए और कुछ अनकहे जज्बात जो दिल में छुपे होते हैं। रंग सिर्फ गुलाल नहीं है बल्कि वो एहसास है जो हर रिश्ते, हर लम्हे और हर ख्वाब को एक पहचान देते हैं। मोहब्बत का रंग लाल, तन्हाई का स्याह, उम्मीद का पीला और यादों का फीका नीला। और हर दिल का अपना रंग होता है जो वक्त के साथ बदलता नहीं है बल्कि गहराता चला जाता है। बशीर बद साहब ने इस जज्बाती रंग को खूबसूरती से बयां किया है। कहते हैं कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। और जिसमें उजाला सिर्फ रोशनी नहीं है बल्कि बीते हुए लम्हों की गर्माहट का एहसास है। कभी मोहब्बत का रंग चढ़ता है और कभी बिछड़ने का रंग उतर जाता है। बहरहाल दोनों दिल के कैनवस पर अमिट रह जाते हैं। तो चलिए आज दिल के इसी रंगीन कैनवस पर एक रंगीन मगर गमगीन या कहें कि थोड़ा सा दिल को छू जाने वाला कलाम आप तक पेश कर रहा हूँ। बेहद खूबसूरत है मखमली आवाज़ के सरताज जगजीत साहब की आवाज़ में।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
6: आज की रात मजा,
5: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
4: म्यूजिक मस्ती।
7: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
8: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
4: म्यूजिक मस्ती।

ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले और बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। ये शेर नहीं है बल्कि एक जिंदगी है जो हर किसी को अपनी लगती है, क्योंकि हमारे दिल में हमेशा कुछ अधूरी ख्वाहिशें होती हैं। बहरहाल लोग जिंदगी में वक्त की तरह हमारे आते हैं और कुछ शायरों की तरह आते हैं जिन्हें ना वक्त भुला पाता है ना हालात मिटा पाते हैं। शायर वो होते हैं जो सिर्फ लिखते नहीं हैं बल्कि महसूस करते हैं और दर्द को अल्फाज में ढालते हैं और मोहब्बत को मिसरों में बसा देते हैं। और वो जानते हैं कि एक कभी कितना भारी होता है और एक काश कितनी गहराई रखता है। शायरी कोई तालीम नहीं है बल्कि टूटी हुई चीज़ों को संवारने और छूटे हुए लम्हों को पकड़ने का तजुर्बा है। बहरहाल अगला कलाम आप तक पहुंचा रहा हूं और बेहद खूबसूरत है। आंखें बंद करके महसूस कीजिएगा।

जिंदगी में कुछ चीज़ें हम चुनते हैं और कुछ चीज़ें हमें खुद चुन लेती हैं। हालात वो मेहमान हैं जो बिना दस्तक के एक दिन दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। कभी वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है और कभी हालात के साथ हम खुद को बदल लेते हैं। और किसी के लिए हालात इम्तहान बनते हैं और किसी के लिए तामीर का रास्ता। पर जो हालात से नहीं डरता वो अपनी तकदीर खुद लिखता है। जब लफ्ज़ मुंह फेर लेते हैं तो शायर खामोशी से बोलता है। जैसे निज़ा फ़ाज़ली साहब ने कहा था कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसे भी देखिएगा कई बार देखना। हर हालात में हम अलग हो जाते हैं, कभी खुद से अनजान हो जाते हैं, कभी मजबूत हो जाते हैं और कभी टूटकर भी मुस्कराने लगते हैं। आज हम इन उलझे हुए हालातों को एक सुर, आवाज़ और एहसास दे रहे हैं इन कलाम के साथ। आइए सुनते हैं।

रंगे महफिल 102.6 FM की लहरों पर सवार हैं आप और मैं हूं खुर्शीद। कुछ लम्हे होते हैं जो हम जीते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो हमें जी लेते हैं। वो अचानक आई मुस्कान या फिर कहें कि चुपचाप गिरा हुआ आंसू और एक शख्स के साथ बिताई छांव और उसके जाने के बाद फैली धूप, ये लम्हे घड़ी में बंधते नहीं हैं बल्कि दिल की तरह तह में छिप जाते हैं कहीं पर। पुराने खतों की महक या अधूरे ख्वाब के रंग। गुलजार साहब ने कहा है कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। इस नाजुक एहसास को बयां करती है कि एक पल की भूल कैसे उम्र भर की तन्हाई बन जाती है। और शायद यही जिंदगी है हमारी, जहां एक पल सब कुछ जिंदगी दे भी देती है और एक पल में जिंदगी उस चीज को छीन भी लेती है। बहरहाल अगला कलाम आप तक पहुंचा रहा हूं, इसे बड़ी संभाल कर रखिएगा, बहुत खूबसूरत है।

वक्त कभी रुकता नहीं है, मगर कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे किसी पुराने लम्हे में वक्त जो है वो ठहर गया है। ये वक्त जो ना दिखाई देता है ना छू सकता है कोई, लेकिन हर रिश्ता, हर एहसास, हर कहानी में मौजूद होता है। कभी मरहम बनकर और कभी ज़ख्म बनकर, और कभी हमें आगे बढ़ा देता है तो कभी बीते कल में हमें लौटा भी देता है। शायरों ने भी इसे गहराई से महसूस किया है। वक्त अच्छा भी आएगा फराज, वक्त अच्छा भी आएगा फराज, गम न कर जिंदगी पड़ी है अभी। जैसे फराज की ये अशार

जो है उम्मीद की रोशनी बिखेरते हैं ना, वाकई जब बुरा वक्त होता है तो लगता है कि कभी बदलेगा नहीं, कभी नहीं बीतेगा, और जब अच्छा होता है तो चुपचाप निकल जाता है, सिर्फ यादें छोड़ जाता है। आइए इस वक्त के जादू को मौसीकी के जादू में जोड़ते हैं, और पेश है ये अगला कलाम, बेहद खूबसूरत है और जिंदा

साहब, वक्त जो है वो बड़े इतरा के चल रहा है, क्योंकि वक्त कह रहा है कि अब आपसे इजाज़त मुझे लेनी होगी, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल गज़ल के प्रोग्राम रंगे महफिल से मुझे खुर्शीद को यही इजाज़त दीजिए, और अपना ख्याल रखिए और उनका भी ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। खुदा हाफिज़।

नमस्कार, एफएम रेनबो से प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। सरकार ने बहुआयामी योजना को सुव्यवस्थित करने के लिए एकीकृत परिवहन और रसद प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी। लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए बड़ा प्रोत्साहन बताया। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन की गारंटी यानी VBG रामजी के तहत किए जाने वाले कामों की सूची जारी की। कामों की संख्या में करीब 41% की बढ़ोतरी हुई। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए 660 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान 0.5% बढ़ाकर 7.1% किया। विपक्ष के विरोध प्रदर्शन को लेकर निर्वाचन आयोग ने स्पष्टीकरण दिया। आयोग ने कहा किसी भी राजनीतिक दल ने आयोग से मिलने का समय नहीं मांगा था। असम में BJP ने सिलचर नगर निगम चुनाव में बहुमत हासिल किया है। 40 वार्डों में 30 वार्डों में जीत दर्ज की। राजस्व खुफिया निदेशालय की भारत बांग्लादेश सीमा पर बड़ी कार्रवाई। करीब 12 करोड़ की कीमत का लगभग 8 किलो 300 ग्राम विदेशी सोना बरामद। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजिन को खगोल भौतिकी मूल के उच्च ऊर्जा न्यूट्रिनो की खोज के लिए

2026 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। और भारत ने 5 मैचों की T20 श्रृंखला के पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसी के साथ मुख्य समाचार समाप्त हुए।

FM Rainbow 102.6 पर रात के इस खूबसूरत पहर मैं हूँ योर्स वेरी ओन दीप्ति पाठक अपने लवली लिसनर्स के लिए लेकर हाजिर हूँ जीरो आर शो, जहाँ आज की रात होगी कुछ खास, कुछ बेहद चुनिंदा नगमों के नाम, कुछ ऐसी धुनें जिनके साथ मन भी गुनगुना उठे। तो आइए शुरू करते हैं आज की रात का ये सुरीला सफर FM Rainbow के संग।

0: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तिरछी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर। मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

धन्यवाद दीप्ति, एक खूबसूरत शो के लिए, और बड़ा ही खूबसूरत शो रहा, यही कहना चाहूँगा। जीरो आर आपके ज़रिए और आकाशवाणी रेनबो 102.6 102.6 पर अब आप जुड़ चुके हैं सुहानी रात के साथ। एक बज चुका है, प्रोग्राम का समय भी हो चुका है, लेकिन उससे पहले हमें एक और परंपरा का निर्वहन करना है, और वो है हिंदी में समाचार बुलेटिन, अब तक की न्यूज़ हेडलाइंस जिन्हें कहना चाहिए। आइए लेते हैं एक जानकारी अब तक के मुख्य समाचारों से। सरकार ने बहुआयामी योजना को सुव्यवस्थित करने के लिए एकीकृत परिवहन और रसद प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी है। लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के लिए बड़ा प्रोत्साहन बताया। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन की गारंटी यानी बीवीजी रामजी के तहत किए जाने वाले कामों की सूची जारी की है। कामों की संख्या में करीब 41% की बढ़ोतरी हुई है। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के जहाज़ों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए 660 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। विपक्ष के विरोध प्रदर्शन को लेकर निर्वाचन आयोग ने स्पष्टीकरण दिया। आयोग ने कहा किसी भी राजनीतिक दल ने आयोग से मिलने का समय नहीं मांगा था। असम में बीजेपी ने सिलचर नगर निगम चुनाव में बहुमत हासिल किया है। 40 वार्डों में से 30 वार्डों में उसने जीत दर्ज की है। सीबीआई ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्याधिकारी राजबीर घुम्मन और उनके साथियों के खिलाफ तबादले और तैनाती में कथित पैसे के लेनदेन और भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में एफआईआर दर्ज की। राजस्व खुफिया निदेशालय की भारत बांग्लादेश सीमा पर बड़ी कार्रवाई। करीब 12 करोड़ की कीमत का लगभग 8 किलो 300 ग्राम विदेशी सोना बरामद। और भारत ने 5 मैचों की T20 श्रृंखला के पहले मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर, और जैसा कि हमने वादा किया था कि इसके ठीक बाद आप जुड़ेंगे कार्यक्रम सुहानी रात में मेरे यानी रजत के साथ, तो हम अपना वादा पूरा करने की ओर बढ़ रहे हैं हुजूर, और बस आप

मुस्तैद हो जाइए खूबसूरत 90s के दिल अजीज गानों की सौगात के लिए। इसके अलावा 102.6 के अलावा आप हमारे साथ उपलब्ध हैं, हम आपके साथ उपलब्ध हैं, ये कार्यक्रम आपके साथ उपलब्ध है न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी। तो मेरा बहुत बहुत अभिवादन स्वीकार है, नमस्कार स्वीकार है और आने वाले दिन के लिए शुभकामनाएं स्वीकार है। इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए अपनी स्वागत को स्वीकारें मेरे जरिए। आप जुड़े हमारे साथ, प्रोग्राम है सुहानी रात।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती। सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
6: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

कुछ हो सकता है या नहीं, लेकिन वक्त का दस्तूर जरूर ये कहता है कि हमें एक समय के बाद नमस्कार कहना होता है और दूसरे समय के बाद विदा लेनी होती है। फिलहाल शो का ही विराम देने का समय आ गया, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद।

नमस्कार, रात्रि के 2 बजे हैं। FM रेनबो से प्रस्तुत हैं मुख्य समाचार। सरकार ने बहुआयामी योजना को सुव्यवस्थित करने के लिए एकीकृत परिवहन और रसद प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी। लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन की गारंटी यानी VVG रामजी के तहत किए जाने वाले कामों की सूची जारी की है। कामों की संख्या में करीब 41% की बढ़ोतरी हुई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और विपक्ष के नेताओं ने कल नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। आकाशवाणी परिसर में कई घंटे धरने पर भी बैठे। विपक्ष के विरोध प्रदर्शन को लेकर निर्वाचन आयोग ने स्पष्टीकरण दिया, कहा किसी भी राजनीतिक दल ने आयोग से मिलने का समय नहीं मांगा था। असम में BJP ने सिलचर नगर निगम चुनाव में बहुमत हासिल किया है। 40 वार्डों में से 30 वार्डों में जीत दर्ज की। CBI ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी राजवीर घुम्मन और उनके साथियों के खिलाफ तबादले और तैनाती में कथित पैसे के लेन देन और भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में FIR दर्ज की। राजस्व खुफिया निदेशालय की भारत बांग्लादेश सीमा पर बड़ी कार्रवाई। करीब 12 करोड़ की कीमत का लगभग 8 किलो 300 ग्राम विदेशी सोना बरामद। और भारत ने 5 मैचों की T20 श्रृंखला के पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसी के साथ मुख्य समाचार समाप्त हुए।

FM Rainbow 102.6 पर एक बार फिर आपके साथ हूँ मैं, योर वेरी ओन दीप्ति, और हम हाजिर हैं लेकर वो नगमे जो भुलाए ना बने।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
3: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

खूबसूरत और संजीदा गानों से सजा एक और शो आप तक पहुंचा, भुलाए ना बने में दीप्ति के रास्ते। अब 3 बज चुके हैं और नया प्रोग्राम फिर आने वाला है मिडनाइट मेलोडीज के नाम से, लेकिन उससे पहले अब तक के मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। सरकार ने बहुआयामी योजना को सुव्यवस्थित करने के लिए एकीकृत परिवहन और रसद प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी। लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि इस योजना के लिए स्वीकृत की गई है। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन की गारंटी यानी VBG रामजी के तहत किए जाने वाले कामों की सूची जारी की है। इन कामों की संख्या में करीब 41% की बढ़ोतरी हुई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और विपक्ष के नेताओं ने कल नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। आकाशवाणी परिसर में कई घंटे ये सभी लोग धरने पर भी बैठे। विपक्ष के विरोध प्रदर्शन को लेकर निर्वाचन आयोग ने स्पष्टीकरण दिया, कहा कि किसी भी राजनीतिक दल ने आयोग से मिलने का समय नहीं मांगा था। असम में बीजेपी ने सिलचर नगर निगम चुनाव में बहुमत हासिल किया है और 40 वार्डों में से 30 वार्डों में जीत दर्ज की है। CBI ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्याधिकारी राजबीर घुमन और उनके साथियों के खिलाफ तबादले और तैनाती में कथित तौर पर पैसे के लेन देन और भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में FIR दर्ज की है। राजस्व खुफिया निदेशालय की भारत बांग्लादेश सीमा पर बड़ी कार्रवाई। करीब 12 करोड़ की कीमत का लगभग 8 किलो 300 ग्राम विदेशी सोना बरामद। और भारत ने 5 मैचों की T20 श्रृंखला के पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसी के साथ मुख्य समाचार समाप्त हुए। आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल पर हैं इस वक्त आप और 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा आप हमसे जुड़े हैं न्यूज़ ऑन एयर ऐप के जरिए भी। देश और दुनिया के हर कोने हर हिस्से से जुड़ने के लिए अगर ये ऐप आपके पास नहीं है तो आज ही डाल लीजिए। स्वागत है आपका कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज में, मेरे यानी रजत के साथ। खूबसूरत गानों की झड़ी एक बार फिर आपका इंतजार करिए बस कुछ ही पलों में।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को

फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी, सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

नमस्कार, एफएम रेनबो से प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। सरकार ने बहुआयामी योजना को सुव्यवस्थित करने के लिए एकीकृत परिवहन और रसद प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी। लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.6% से बढ़ाकर 7.1% किया। सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी ग्रामीण के तहत किए जाने वाले कामों की सूची जारी की। कामों की संख्या में करीब 41% की बढ़ोतरी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और विपक्ष के कई नेताओं ने कल नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आकाशवाणी परिसर में कई घंटे धरने पर भी बैठे। विपक्ष के विरोध प्रदर्शन पर निर्वाचन आयोग का स्पष्टीकरण, कहा कि किसी भी राजनीतिक दल ने आयोग से मिलने का समय नहीं मांगा। राजस्व खुफिया निदेशालय की भारत बांग्लादेश सीमा पर तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, करीब 12 करोड़ की कीमत का लगभग 8 किलो 300 ग्राम विदेशी सोना जब्त। बेल्जियम के में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को खगोल भौतिकी मूल के उच्च ऊर्जा न्यूट्रिनो की खोज के लिए 2026 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के में तेज बारिश का अनुमान जताया। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में तेज हवाएं चलने की संभावना। और भारत ने 5 मैचों में की T20 श्रृंखला के पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसी के साथ मुख्य समाचार समाप्त हुए।

एक बार फिर स्वागत कर रही हूँ मैं दीप्ति आपका FM रेनबो 102.6 पर। चलिए गुनगुनाते हैं जीवन की सरगम को सारे गामा में।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दिल के तराने गाने नए पुराने नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: कोयल सी तेरी बोली
3: हाय
2: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

ठीक है। सरकार ने बहुआयामी योजना को सुव्यवस्थित करने के लिए एकीकृत परिवहन और रसद प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी। लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.6% से बढ़ाकर 7.1% किया। सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी ग्रामीण के तहत किए जाने वाले कामों की सूची जारी की। कामों की संख्या में करीब 41% की बढ़ोतरी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और विपक्ष के नेताओं ने कल नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आकाशवाणी परिसर में कई घंटे धरने पर भी बैठे। विपक्ष के विरोध प्रदर्शन पर निर्वाचन आयोग का स्पष्टीकरण, कहा किसी भी राजनीतिक दल ने आयोग से मिलने का समय नहीं मांगा। राजस्व खुफिया निदेशालय की भारत बांग्लादेश सीमा पर तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। करीब 12 करोड़ की कीमत का लगभग 8 किलो 300 ग्राम विदेशी सोना जब्त। बेल्जियम में जन्म वैज्ञानिक फ्रांसिस हाउजेन को खगोल भौतिकी मूल के उच्च ऊर्जा न्यूट्रिनो की खोज के लिए 2026 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान जताया। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में तेज हवाएं चलने की संभावना। और भारत ने 5 मैचों की T20 श्रृंखला के पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल पर 102.6 पर। जल्दी हाजिर होते हैं, शीघ्र मिलते हैं तो कुछ ही सेकंड्स बाद अपने भक्ति संगीत पर आधारित प्रस्तुति आराधना के साथ। आप सभी का स्वागत, मैं हूं रजत।

आज के सारे गामों को देते हैं विराम और शुरू करते हैं इंतजार भक्ति संगीत पर आधारित हमारी नियमित प्रस्तुति आराधना का। लेकिन उससे पहले मुख्य समाचार इस घंटे

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: कोयल सी तेरी बोली,
4: हाय
3: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
5: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
6: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।